zumindan drumadale şobini suhasini sumaduram haşini.

एफएम बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज गुरुवार है, शक संगत 1948 के अश्विन माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 सितंबर 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप समय अब सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 6:05 पर चिंतन व 6:10 पर वंदना आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।
1: सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉ जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर

0: बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रूपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7 मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है सर्व मंगले। तो सुनते हैं चिंतन।
2: आद्याशक्ति के 9 रूपों की आराधना करने वाले 700 श्लोकों का ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। इसके 700 श्लोकों में एक माँ दुर्गा के नारायणी स्वरूप का है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी भगवान नारायण अर्थात श्री विष्णु की शक्ति का सात्विक स्वरूप है। शक्ति का तामस और सात्विक स्वरूप वंदन अर्चन सब पुरुषार्थों का हेतु है। इसीलिए पंचांग के वर्ष में 9 दिवस रात्रि मिलाकर चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र उत्सव मनाकर गृहस्थ देवी दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की उपासना करते हैं। मांगल्य जीवन की अभिलाषा है। इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए सनातन धर्मी नवरात्र में तप और साधना करके मांगल्य को आमंत्रित करने का अनुष्ठान करते हैं। गृहस्थ आश्रम 4 आश्रमों का कारक है, इसलिए गृहस्थ को वर्ष में 2 बार नवरात्र उत्सव मनाकर नारायणी अर्थात पालक शक्ति को अर्जित करना होता है, ताकि सबका मांगल्य हो सके। यही सीख महर्षि मेधा ने राजा सुरथ को देते हुए कहा था, ताम उपहि महाराज शरणम परमेश्वरी आराधिता सैव नाम भोग स्वर्गापवर्गदा। अर्थात आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण लीजिए, वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग स्वर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती हैं।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं जयपुर अजमेर का आमेर चैनल। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

एफएम बैंड 103.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्रीराम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्रीराम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे हमारी प्रातःकालीन सभा में शेष व सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती नी बात। 6:50 पर समय रहेगा लोक संगीत का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बातायन। 7:30, 10 बजे व 12 बजे समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कुछ दिल से कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 9:10 व 11 बजे समय रहेगा सुगम संगीत का। 9:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

सायंकालीन सुबह में 5:05 पर आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम 5:30 और 9:00 समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 7:00 समय रहेगा किसान वाणी कार्यक्रम का। 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या। 11:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 10:00 समय रहेगा जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण, अब आप सुनेंगे खेती में बात कार्यक्रम।
1: खेती में बात कार्यक्रम हमारा आ रहा सब बहन बहनों ने सोरा देखे रिता बहनों राम राम राम राम बहनों बहनों आज सोरा ऊपर अपने बात करो। वर्षा ऋतु में अपने खेतर में जाओ तो घना प्रकार ना जहर जानवर ने आना मौसम में अपने खेत्र में जाओ तो हूँ सावधानी रखे पड़े इन बार हम चर्चा करो। भाई बहन है खेत्र में काम रहने जाए से अपने अपने फसलें भी अच्छी थे रही। बारिश में अपने सोयाबीन मक्का कपास दलहनी फसलें करी थी है कि बरसात के मौसम में घना प्रकार ना जीव जानवर थे रहे। आने बिला में बरसात में पानी भरा जा रहा है कि जहरीला जानवर है जिनके सांप है बिच्छू है इन वगैरह बाहर तो निकले अभी अपने जान अगर ध्यान नहीं रखा गलती थी कि ऊपर पोक पड़ी गया तो अपन कल भी शकी घना घना प्रकार की दुर्घटना थी जाए ने आने समय में अपने होना में भी आवे कि घना जहरीला जानवर है खेत्र में रहे ने किन काटी लीधुत मृत्यु थे की एवं समाचार आम थी गया है तो एने बदले अपने थोड़ा विशेष ध्यान रखो पड़े कि जेवी रीते अपने खेत्र में जाऊ तो एक तो अच्छा जूता पहन जाओ जो बरसाती जूता आवे पहन जाओ है बीजो अपने ईंडी रहो तो हेड़ा ऊपर ईंडू है अगर खेतर महीने अपने जाओ पड़े तो ध्यान थे कि हम बारे में जाओ जो है इन अलावा पा एक लाकड़ी रखो जिनते की है रस्तो बनाते जाए इन पर जाओ है जाड़िया वगैरह रही इन्हें ध्यान रखो है कि अपनो पोग नहीं पड़ी जा पोग मिला तो भी ध्यान रखो कि इनमें कोई प्रकार का जानवर वगैरह अपने तेल लकड़ी तीखी घास फूस हटावे पसे अपने अगड़ी बढ़ू है बीजो एक ध्यान रखो कि कहीं भी जाड़िया हो या फिर अपने खेत्र में फसल वैसे घास उगी हो तो इन्हें भी ध्यान रखो है कि सावधानी की हटा भी है वना देखिए डायरेक्टर में आप तो नाखी ना पड़े घास वगैरह उखड़वा जाऊंगा या खरपतवार उखड़वा जाऊंगा थे या कोई प्रकार नो जानवर हो कोई प्रकार बिच्छू वगैरह हो ये भी काटी सके तो होने बात में अपने विशेष ध्यान रखी ने कार्य करो है। बीजू आ समय में अगर मौसम थोड़ा अगर कोरो हो तो खरपतवार उखड़वा काम भी कर लेव है अपने खेत्र में अपनी फसल हाथे हाथे खरपतवार समय समय पर उखाड़ाती पड़ी थती जाते जे अपने खेतर में अपने फसलों में उर्वरक मिलो खाद मिलो इन पोषण खरपतवार प्राप्त करते करी ले ने अपने फसल कमजोर रही जा खरपतवार बड़ी थी जा तो समय समय पर उखाड़वा काम करव है। बीजो अपने घर ने आसपास बागवानी वगैरह भी करो तो बागवानी भी विशेष ध्यान रखो है कि भी अगर जाड़िया हो खरपतवार वगैरह उगी हुई तो इन्हों भी ध्यान रखो है नहाते घर ने आसपास खुली जगह पर भी करो तो इन भी अगर कोई बड़ी बड़ी घास थी जा तो इनमें भी जहरीले जानवर वगैरह आई नाम पाई सके तो इन्हें भी समय समय पर सफाई करते रहो है अपने घर ने आसपास भी देखो है कि कई प्रकार ना जहरीले जानवर वगैरह छुपानी जगह नहीं हो। बीजो बरसात के समय में जगह जगह ऊपर अपने बरसाती पानी इकट्ठे थी रहे इनके ये मच्छर वगैरह भी पनपे जाए तो इन्हें भी समय समय पर साफ सफाई करते रहो है घर में आसपास कहीं नाली वगैरह

0: हो, फिर इनमें पानी इकट्ठा तो ही रहो, तो सफाई करन करना हुआ है, या फिर इनमें मच्छर ना लार्वा मर जाए, भी दवाई ना छिड़काव करो है, इन्हें हाथी आप घर में आसपास काय भी खाली बर्तन पड़ो है, जमीन बरसाती पानी इकट्ठा थे तो इन्हें भी ध्यान रखो कि वो बर्तन वगैरह नहीं पड़ेला रहे, जमीन बरसाती पानी इकट्ठा थी रहे, खड्डा वगैरह हो तो इन्हें भी भर दे वही, इन चीजों ने ध्यान रखो है ताकि अपने दुर्घटना थी बची ले। हाँ, घर में बाहर अपने जूते वगैरह मिलो तो इनमें भी घना बहुत एम था कि जानवर वगैरह मैं आगे कोई रही सके ने अपने बना दे के पैर लंगा तो अपने काटी भी सके, तो ये ध्यान रखो है कि जूते वगैरह अपने पैर बारते तो इन्हें अच्छी तरह थी कि कंकी रही साफ सफाई करें पसे पैर वो है, तो आ कुछ चीजें जो बरसात के मौसम में अपने ध्यान रखनी जरूरी है। इन अलावा अपने बिजली में उपकरण है इन्होंने भी अड़वा में अपने विशेष सतर्कता बरती है, और बरसात के मौसम में अपने थोड़ी सावधानी कार्य करेंगे तो अपने दुर्घटना थी बची ले रही सको। सौरा ऊपर अपने बरसात के मौसम हूँ सावधानी रखो इन बारे में बात करी, बात ऐसी कर रही थी पर सौरा ना समय है पूरा थी गया तो अस्तरिता बेन ने आज्ञा लो।
1: राम राम
2: राम राम।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना खेती की बात कार्यक्रम, ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। अब पेश है लोक संगीत घनश्याम वसाथियों के स्वर में।
4: सावरा थारी माया को।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ,
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील हुई।
0: हेलो,
1: हाँ हाँ,
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं।

दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना घनश्याम वसातियों के स्वर में लोक संगीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, और वार्ताकार हैं भावना सुथार।
1: मेरी वार्ता का शीर्षक है साहित्य आकाश के दिनकर। आज हिंदी साहित्य के प्रखर हस्ताक्षर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी दिनकर का जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस पर आइए उन्हीं के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से आकाश में सूर्य अपनी रश्मियों से संपूर्ण संसार को आलोकित करता है, उसी तरह से क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी काव्य रश्मियों से साहित्य जगत को दीप्तिमान किया है। 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक सामान्य किसान के घर जन्मे दिनकर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी कवि थे। जब दिनकर 2 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। विधवा माँ ने उनका और उनके भाई बहनों का लालन पालन किया। आपने प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक संस्कृत पंडित से प्राप्त की। वहीं मिडिल स्तर की शिक्षा राष्ट्रीय मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल की शिक्षा मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। ग्रामीण अंचल में उनका बचपन और किशोर्य बीता, और यही कारण था कि उनके काव्य में नैसर्गिक सौंदर्य और जीवन की कठोरता का दर्शन होता है। गुलाम भारत में जीवन बिताते हुए जब उन्होंने सरकारी शिक्षा के विरोध में खोले गए राष्ट्रीय मिडिल स्कूल में प्रवेश लिया तो धीरे धीरे इनके मानस पर राष्ट्रीयता का विकास होने लगा, जो बाद में उनकी काव्य सर्जनाओं पर स्पष्ट दिखाई दिया। वर्ष 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। अगले ही वर्ष एक स्कूल में वह प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। इसी प्रकार 1934 में बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार पद पर नियुक्त हुए। लगभग 9 वर्ष तक वह इस पद पर रहे और उनका समूचा कार्यकाल बिहार के देहातों में बीता। राजकीय कार्यकाल में जीवन के पीड़ित रूप को देखकर उनका कवि मन बहुत व्यथित हुआ, और इसी व्यथित मन से रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंद्व गीत रचे गए। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं जब प्रकाश में आई तो अंग्रेज शासकों को बगावत का एहसास हुआ और दिनकर के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ हो गई। कवि मन पर अंकुश लगाने के लिए कई सारी सरकारी चेतावनियों के बीच 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला भी किया गया। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो वे बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वे दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। दिनकर की काव्य रचनाओं की बात करें तो सर्वप्रथम काव्य संग्रह 1935 में रेणुका, 1938

1935 में हुंकार और 1939 में रसवंत की मानस पटल पर प्रकट होते हैं। ये तीनों ही काव्य संग्रह उनके आरंभिक आत्म मंथन के युग की रचनाएं हैं। रेणुका में अतीत के गौरव के प्रति कवि का सहज आदर और आकर्षण परिलक्षित होता है। वहीं इसमें वर्तमान परिवेश की निरस्ता से त्रस्त मन की वेदना का परिचय भी दिखाई देता है, जैसे भावों की

रागिनी गांव में, दूसरी तरफ हुंकार में कवि दिनकर अतीत के गौरवगान की अपेक्षा वर्तमान दैत्य के प्रति आक्रोश प्रदर्शन की ओर अधिक उन्मुख जान पड़ते हैं। इधर अस्वंती में कवि की सौंदर्यान्वेषी वृत्ति काव्यमय हो जाती है। इसी प्रकार 1947 में रचित सामदेनी में दिनकर की सामाजिक चेतना स्वदेश और परिवेश के परिधि से बढ़कर विश्व वेदना का अनुभव करती जान पड़ती है। कवि के स्वर का ओज नए वेग से नए शिखर तक पहुंच जाता है जब वे कहते हैं, विश्वासी बन तुम खड़े रहो, कंचन की आज समीक्षा है, यह और किसी की नहीं स्वयं सीता की अग्नि परीक्षा है। दुनिया भी देखे अंधकार की कैसी फौज उमड़ती है, वो एक अकेली किरण व्यूह में जाकर कैसे लड़ती है। वैसे तो रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे, तथापि उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे पी मेरी भ्रमरी बसंत में अंतर मधु जी भर पी ले, कुछ तो कवि की व्यथा सफल हो, जलू निरंतर तू जी ले। दिनकर ने अपने मुक्तक काव्य संग्रह के अतिरिक्त कई प्रबंध काव्यों की रचना भी की है, जिनमें 1946 में प्रकाशित कुरुक्षेत्र, 1952 में प्रकाशित रश्मि रथी तथा 1961 में प्रकाशित उर्वशी प्रमुख है। कुरुक्षेत्र में महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति के विषय, गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भीष्म और युधिष्ठिर के संलाप के रूप में प्रस्तुत किए हैं। दिनकर के काव्य में विचार तत्व इस तरह उभर कर सामने पहले कभी नहीं आया जैसा कुरुक्षेत्र में दिखाई देता है। वे कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। कुरुक्षेत्र के साथ ही उनके नवीनतम काव्य उर्वशी में फिर हमें विचार तत्व की प्रधानता मिलती है। उर्वशी जिसे कवि ने स्वयं कामाध्याय की उपाधि प्रदान की है, दिनकर की कविता को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। दिनकर के इसी का खंड काव्य के लिए 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उर्वशी के प्रथम भाग में ही कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है, स्वच्छ कौमुदी में प्रशांत जगती और दमक रही है, सत्य रूप तज कर जैसे हो समा गई दर्पण में, शांति शांति सब और मंजू मानो चंद्रिका मुकुर में, प्रकृति देख अपनी शोभा अपने को भूल गई हो। 1955 में नील कुसुम दिनकर के काव्य में एक मोड़ बनकर आया। यहाँ यह काव्यात्मक प्रयोगशीलता के प्रति आस्थावान है, स्वयं प्रयोगशील कवियों को अजमाल पहनाने और राह पर फूल बिछाने की आकांक्षा उन्हें विभल कर देती है। नवीनतम काव्यधारा से संबंध स्थापित करने की कवि की इच्छा तो स्पष्ट हो जाती है, पर उसका कृतित्व साथ देता नहीं जान पड़ता है। उर्वशी के प्रकाशन के साथ हिंदी साहित्य संसार में एक और उसकी कटु आलोचना तो दूसरी और मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। इस काव्य नाटक को दिनकर की कवि प्रतिभा का चमत्कार माना गया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। इसकी एक मिसाल 70 के दशक में संपूर्ण क्रांति की दौड़ में मिलती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हजारों लोगों के समक्ष दिनकर की पंक्ति सिंहासन खाली करो की जनता आती है का उद्घोष करके तत्कालीन सरकार के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किया था। मशहूर कवि प्रेम जन्मेजय भी मानते हैं कि दिनकर ने गुलाम भारत और आजाद भारत दोनों में अपनी कविताओं के जरिए क्रांतिकारी विचारों को विस्तार दिया। जन्मेजय ने एक अवसर पर कहा था कि आजादी के समय और चीन के हमले के समय दिनकर ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया। उन्होंने यह भी कहा था कि भूषण के बाद दिनकर ही एकमात्र ऐसे कवि रहे जिन्होंने वीर रक्स का खूब इस्तेमाल किया। वह एक ऐसा दौर था जब लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना जोरों पर थी। दिनकर ने उसी भावना को अपनी कविता के माध्यम से आगे बढ़ाया। वह जन कवि थे, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया। पद्म भूषण से सम्मानित दिनकर का 24 अप्रैल 1974 को देहावसान हो गया, तथापि वे अपनी कई सारी कालजयी रचनाओं के माध्यम

से आज भी साहित्य रसिकों और हिंदी साहित्य के सभी पाठकों के दिल में जिंदा है। आइए आज 23 सितंबर को हम सब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्म तिथि के मौके पर उन काव्य पंक्तियों के माध्यम से याद करते हैं जिनसे उन्होंने समूचे मानव जगत को एक नया संदेश प्रदान किया है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते इतिहासों में लिख। धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आपने सुनी वार्ता, और वार्ताकार थी भावना सुथार। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।

विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। अगला गीत हम किसी से कम नहीं फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। लिखा इसे भी मजरूह सुल्तानपुरी ने है और संगीत पर किया है आर.टी. बर्मन ने।

0: के जाने माने गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम हम है राही प्यार के। अगला गीत अदालत फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना की है गुलशन बावरा ने, संगीत पर किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं आनंद आश्रम फिल्म से, यशुदास और प्रीति सागर की आवाजों में। इंदीवर के बोल हैं, धुन बनाइए श्यामलाल मित्रा।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
4: पेंटर बाबू
3: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम।

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की।
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी।

हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज में पहली फिल्म का गीत सुनिए, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

महबूबा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हम है राही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: कुछ ही क्षणों में 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशू में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गाँवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
3: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
4: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
3: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
5: बहुत अच्छी बात जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
3: भारत

0: सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258.07 करोड़ रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रूपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
3: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर

0: आ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रूपये मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रुशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रुशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रुशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गयी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM बैंड 106.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कुछ दिल से कार्यक्रम।

सभी कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को खुशबू जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, मिट्टी माँ है। जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही मिट्टी हमें पालती है। इसी से हम पैदा होते हैं और इसी में मिल जाते हैं, इसलिए इसे धरती माँ कहते हैं। कहा गया है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है।

कौन जग में किसी का होता है, मुफ्त में क्यों जन्म गवाता है, कोई रिश्ता न कोई नाता है, इस जहां से अकेला जाता है। सुनहरा ख्वाब है दुनिया सितम के डेरे हैं, न कोई मेरे है जग में न कोई तेरे है, तू समझता है जिनको मेरे हैं, तेरे घर के यही लुटेरे हैं, बदला ये तुझसे तेरे बस एक बार ले।

को तू भूल गया, अपनी औकात को तू भूल गया, मौत की बात को तू भूल गया और सकरात को तू भूल गया। एक झटका अजल का आएगा, वो तुझे खाक में ले जाएगा, फिर न धन तेरे काम आएगा, अपनी करनी पे तू पछताएगा, ये घमंड ये गुरूर टूटेगा, फिर घड़ा पाप का ये टूटेगा जब

आएगी, माल दौलत पे फूलता है तू, अपने कमरे को भूलता है तू। कह दिया जो भी तुझको कहना था, हश्र तक उस जगह में रहना है तेरा।

आप कतरो ही से बना है तू, मत अकड़ इतना के आदमी फना है तू। अपने ऐबों को न देखा न किया गौर, मगर दूसरे ऐबों पे क्यों है तेरी नापाक नजर। तू समझता है कि सब मुझसे वफा करते हैं, वफा की आड़ में ये तुझसे जफा करते हैं। तेरी दौलत को तेरे माल को पाने के लिए रात दिन ये तेरे मरने की दुआ करते हैं। जब तुझे शहर खमोशा में ले जाएंगे, लगे चुपचाप अंधेरे में चले आएंगे, फिर तेरे होशो हवासो

उस जगह रोएगा, चिल्लाएगा, घबराएगा, अंधेरी कब्र में सर खाक से टकराएगा। तेरी आवाज ना फरियाद सुनेगा कोई, ना तेरे हाल पे अफसोस करेगा कोई। फिर नकीरैन बसत गैज़ गज़ब आएंगे और बौछार सरानों की वो बरसाएंगे। आँख खुलते ही तू पूछेगा कौन लाया है, अंधेरे में मुझे किसने यहाँ सुलाया है। खास अपनी जगह को भूल गया, ऐश में क्यों न ये घर याद किया। अब ये कहता है कौन छोड़ गया, तूने जिसके लिए दुनिया में यह धन जोड़ा है, उन्हीं ने तुझको अंधेरे में ला के छोड़ा है। अब मदद को तेरी कोई नहीं आने वाला, इस मुसीबत से नहीं कोई छुड़ाने वाला। तेरी ताकत है क्या, तेरी दौलत है क्या, तू है क्या और तेरी हकीकत है क्या। खाक में कैसे कैसे

0: सुनो सुनो, गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। श्रोतों, मिट्टी से अनाज उगता है जिससे हमारा पेट भरता है। किसान सुबह शाम इसी मिट्टी में मेहनत करता है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो खाना नहीं होगा, और खाना नहीं

होगा तो जीवन नहीं होगा। श्रोताओं, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश। अंत में हम सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए कहते हैं मिट्टी से बना

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, मिट्टी के दिए से दिवाली रोशन होती है, गणेश जी मिट्टी के बनते हैं ताकि पर्यावरण बचे, मिट्टी के घर सबसे ठंडे होते हैं। श्रोताओं, आज हम इसी मिट्टी को खराब कर रहे हैं, प्लास्टिक, केमिकल,

बच्चियों का कचरा सब मिट्टी में डाल रहे हैं। मिट्टी बीमार हो रही है। अगर मिट्टी बीमार होगी तो हम भी बीमार होंगे। हमें इको फ्रेंडली बनना होगा। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के गणेश जी, जैविक खेती, यही उपाय है हमारे लिए। श्रोताओं, मिट्टी हमारी माँ है, हमारी पहचान है। मिट्टी को बचाना देश को बचाना है।

0: स्वतंत्र का संग्राम नहीं, वो बगावत थी, म्यूटिनी, यही इतिहास कहता है। इतिहास
1: जला दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जुलम वो तुम्हारे सितम।

श्रोताओं, काली मिट्टी मेहनत का प्रतीक है जिसमें किसान का पसीना होता है। लाल मिट्टी प्यार का प्रतीक है जो दुल्हन की मेहंदी सी लगती है। पीली मिट्टी खुशी का प्रतीक है, सरसों के लहलहाते खेत जैसी। भूरी मिट्टी सुकून का प्रतीक है, गांव की यादों सी। सफेद मिट्टी शांति का प्रतीक है, गणेश जी की मूर्ति की तरह।

आवाजें सुन के बहकती हवा।

श्रोताओं, पहली बारिश में जो खुशबू आती है उसे वैज्ञानिक भाषा में पेट्रिकोर कहते हैं। दुनिया की सबसे महंगी परफ्यूम से अच्छी खुशबू।

श्रोताओं, मिट्टी है तो हम हैं, मिट्टी नहीं तो कुछ भी नहीं। श्रोताओं, इसी के साथ इजाजत दीजिए खुशबू जोशी को कार्यक्रम समाप्त करने की।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत मधुरा फड़के के स्वर में।

0: खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

एफएम बैंड 106.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत मधुरा फड़के के स्वर में। प्रातः के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत आज प्रदेश के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। विकसित भारत जनसेवा अभियान से अब तक प्रदेश भर के 1,37,00,000 से अधिक लोग जुड़े। प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आज आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत आज प्रदेश के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। बीकानेर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 500 लाभार्थी शामिल होंगे। टू वे संवाद प्रणाली के जरिए लाभार्थियों को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में वडनगर से वाराणसी जल जन और सेवा संकल्प यात्रा में शामिल लोग भी शामिल होंगे। ये यात्रा कल बीकानेर पहुंची थी। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कल जयपुर दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि वे सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल पर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद श्री नवीन बगरू के दादिया गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे दादिया से ही पंचायत चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और 90 प्रचार रथों को रवाना करेंगे। इसके बाद उनका जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में युवाओं से संवाद का कार्यक्रम है। उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कल जयपुर के धानक्या स्थित राष्ट्रीय स्मारक परिसर में 3 दिन के दीनदयाल मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने परिसर में लगी विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। डॉ बैरवा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन राष्ट्र सेवा, सामाजिक समरसता और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के प्रति समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि उनके विचार राष्ट्रहित के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। विकसित भारत जनसेवा अभियान में अब तक प्रदेश भर में 1,37,00,000 से अधिक लोग भाग ले चुके हैं। ये जानकारी मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में अभियान की समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने अधिकारियों को पात्र और वंचित लाभार्थियों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण सेवा शिविरों में लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने और प्राप्त आवेदनों का तुरंत निस्तारण करने को कहा। बैठक में बताया गया कि अभियान के तहत प्रदेश भर में 12 प्रमुख गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुख्य सचिव ने अभियान की नियमित निगरानी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक से जुड़े। देश में छोटे कारोबारियों को आर्थिक संबल देकर आत्मनिर्भरता की राह आसान बनाने वाली महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आइए जानते हैं इसके बारे में।
1: अप्रैल 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY का उद्देश्य गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि क्षेत्र के छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध करवाकर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। पहले इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध था। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई, जो अक्टूबर 2024 से प्रभावी हुई। साथ ही तरुण प्लस नाम की नई श्रेणी शुरू की गई। इसके तहत तरुण श्रेणी का ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले उद्यमी 10 से 20 लाख रुपए तक के ऋण के लिए पात्र हो सकते हैं। इन बढ़े हुए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट्स के माध्यम से गारंटी कवरेज भी उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे उद्यमियों को पूंजी के साथ साथ अपने सपनों को आकार देने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है। न्यूज डेस्क से

0: सालेहा गाजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए आज सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी संबंधित उपखंड अधिकारी मुख्यालय पर होगी। इसके बाद ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पदों का आवंटन किया जाएगा। इससे पहले कल जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बढ़ाया जाएगा। ये जानकारी जयपुर में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण आजीविका, बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। योजना के तहत अमृत पोषण वाटिका और अमृत ग्रामीण हाट बाजार विकसित किए जा रहे हैं। इनके जरिए विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को फल और सब्जियों की आपूर्ति तथा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत उदयपुर के राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से वरिष्ठ नागरिकों का जत्था असम की कामाख्या देवी की यात्रा के लिए रवाना हुआ। यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह देखा गया। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन कुमार गांधी ने बताया कि यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
2: इसमें उदयपुर संभाग के 570 यात्री यहां से सवार हो रहे एवं 400 यात्री अजमेर रेलवे स्टेशन से अजमेर संभाग के सवार होंगे। इस तरह से इस ट्रेन में कुल 970 वरिष्ठ नागरिक होंगे एवं 30 का पूरा स्टाफ रहेगा जो इनके सहयोग में रहेगा और एक राजपत्रित अधिकारी को ट्रेन प्रभारी बनाया गया। यह माता कामाख्या देवी के लिए दर्शन के लिए जाने वाली विशेष ट्रेन है और इसका समस्त भार जो राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
1: जोधपुर में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में केमिकल से भरे ड्रम में धमाका होने से 14 फायर कर्मी झुलस गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों के लिए एम्स अस्पताल में अलग से आईसीयू की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। आग बुझाने के दौरान फायरकर्मी झुलस गए। इधर जयपुर के कुकस क्षेत्र में कल 90 फीट गहरे सूखे कुएं में फंसे 4 लोगों को सिविल डिफेंस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। नागरिक सुरक्षा विभाग के उपनियंत्रक अमित शर्मा ने बताया कि कुएं में एक पुरुष और एक महिला गिर गए थे। उन्हें बचाने के लिए उतरे 2 अन्य लोग भी कुएं में फंस गए। सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से इस महीने की 28 से 30 तारीख तक बुलाई गई 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट को पूरी तरह से चालू रखने को मंजूरी दे दी है। आवश्यक बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल नहीं करने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। विकसित भारत जनसेवा अभियान से अब तक प्रदेश भर के 1,37,00,000 से अधिक लोग जुड़े। प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आज आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

एफएम बैंड 106.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे मेहंदी हसन के स्वर में कुछ गजलें।

0: तो भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदें। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं मेहंदी हसन के स्वर में कुछ गजलें।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुनी मेहंदी हसन के स्वर में कुछ गजलें। प्रातः के 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
1: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
0: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
1: राजानगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: तो श्रोताओ, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं।
1: जी,
0: पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
1: जी,
0: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
1: श्रोताओ, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
0: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
1: जी,
0: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
1: लेकिन श्रोताओ, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
0: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी।
1: जी,
0: फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था।
1: बिल्कुल।
0: और तो और, गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
1: तो श्रोताओ, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
0: तो श्रोताओ, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए।
1: जी,
0: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा, अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो। विचार तो अच्छा था, लेकिन
1: एक नई समस्या सामने आई। वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं? और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
0: जी, कल्पना कीजिए श्रोताओ, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती।
1: जी,
0: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
1: जी,
0: यही तो है नवाचार।
1: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
0: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
1: जी,
0: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दी।
1: बिल्कुल।
0: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
1: जी, आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी।
0: जी, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों, याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
1: तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800044055 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं
0: और मैं आपका मित्र अजीत आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल।

0: nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए सीआईटी एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
1: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 33 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
4: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाए हम अक्षरों की रेल।
5: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है। किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली। जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
2: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए। जरा सोचिए, सोचिए, सोचिए।
3: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
2: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
3: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की सातवीं संतान थे।
2: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
3: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
4: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
3: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
5: माँ, ये चिट्ठी।
3: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
2: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
5: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
2: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
5: अच्छा,
2: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
5: अच्छा,
2: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
3: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर

0: काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
1: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहाँ आग लग गई, भगदड़ मच गई।
0: इतने में रेल अधीक्षक वहाँ भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी माँ उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी माँ के कारण ही उत्पन्न हुई।
1: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
0: मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
1: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थी। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
0: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी।
1: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी के कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
0: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
1: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
0: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
1: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
0: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
1: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
0: लगभग 10,000 बार।
1: 10,000 बार?

0: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
1: अच्छा?
0: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
1: अरे वाह।
0: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
1: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
0: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे दो लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
1: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
0: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
1: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
0: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं मराठी फिल्म के जाने माने संगीतकार अप्पा वढ़ावकर से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे साथ संगीत की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद हैं। ये हैं मराठी फिल्मों के जाने माने म्यूजिशियन, अरेंजर और संगीतकार अप्पा वढ़ावकर। बहुत बहुत स्वागत अप्पा जी आपका।
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: ये बताइए, विविध भारती के स्टूडियो में आके आपको क्या अनुभूति हुई?
2: बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, थैंक यू सो मच।
1: अच्छा मुझे ये बताइए कि रेडियो से तो आपका बड़ा पुराना नाता है, आप बचपन में रेडियो के कार्यक्रम करने जाते थे, उसकी क्या याद है आपकी?
2: मेरे ख्याल से 8-9 वर्ष का था।
1: किस साल की बात होगी?
2: 68-69 की होगी।
1: ओ
2: तो उस टाइम एक मराठी में एक छोटा प्रोग्राम रहता था छोटे बच्चों का,
1: जी
2: गम्मत जम्मत नाम।
1: अरे बहुत ही मशहूर प्रोग्राम।
2: कि उधर मैंने वायलिन बजाए एक्चुअली।
1: वाह वाह।
2: ज्यादा से ज्यादा वायलिन बजाए तो मैं वायलिन सीखता था। मेरे वायलिन के गुरु प्रभाकर पंडित जी, जो फिर बाद में रेडियो पर कंपोजर वगैरह थे
1: जी,
2: तो उनसे वायलिन सीख के मैं पहले थोड़े से प्रोग्राम वो गम्मत जम्मत में बजाए थे।
1: क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपके पिताजी भी एक बड़े संगीतकार रहे हैं, तो अपने पिताजी और अपनी माँ के बारे में हमें बताइए।
2: मेरा पिताजी वैसे अच्छे हारमोनियम बजा लेते थे
1: जी,
2: ऑर्गन बजा लेते थे,
1: राम वढ़ावकर जी,
2: और शायद पियानो भी बजाते थे।
1: अच्छा।
2: क्योंकि मेरी शुरुआत की जो ट्यूशन हुई उनके पास ही हुई
1: जी।
2: और जैसे हारमोनियम में हम बोलते हैं ना, जो सारे गम समझो कि एक टेक्निकल बात है ये
1: जी,
2: कि वो सफेद एक सुर से सारे गम अगर हम बजाएंगे तो हमारी फिंगर होती 1-2-3-4, 1-2-3-4,
1: राइट।
2: लेकिन वो दो प्रकार की फिंगर्स मुझे बताते थे जो पियानो में यूज करते हैं कि 1-2-3, 1-2-3-4-5। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है वो पियानो भी अच्छा बजाते होंगे।
1: वाह।
2: फिर वो पहले प्रभात कंपनी की थी
1: जी, शांताराम जी की।
2: हाँ, स्टाफ पे वो म्यूजिशियन करके थे, वसंत देसाई के वाद्य वृंद में थे वो, क्योंकि उस टाइम 3-4 म्यूजिक डायरेक्टर वहां रहते थे, वो तो सैलरी पे रहते थे, यानी कि गोविंद राव टेम्बे या तो मास्टर कृष्णराव, ये वसंत देसाई
1: जी,
2: तो वो वसंत देसाई के वाद्य वृंद में थे।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ बहुत सारा काम किया उन्होंने।
1: वसंत देसाई तो महाराष्ट्र के राज्य संगीतकार का दर्जा उन्हें प्राप्त था।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आगे हम बात करेंगे कि कैसे आपका और उनका साथ जो बना है। अप्पा जी, पिताजी ने कई बड़े बड़े कलाकारों के गाने रिकॉर्ड किए हैं और कई प्रभात कंपनी में उनके साथ जो अनुभव हुए हैं, कुछ कुछ उन्होंने आपको बताया?
2: बाद में एक आह्लाद चित्र नाम की एक संस्था थी
1: जी,
2: दत्ता धर्माधिकारी
1: जी
2: नाम के प्रोड्यूसर थे, जिनको हम दत्ता मामा कहते थे। तो उनके जो बहुत सारे पिक्चर का म्यूजिक डायरेक्शन मेरे पिताजी ने वसंत पवार के साथ किया था।
1: अच्छा, अच्छा।
2: वसंत पवार, राम वड़ावकर, ऐसा वो जोड़ी आती थी।
1: जोड़ी।
2: जैसे कि पुराना चिमनी पाखर है, अबोली है।
1: हाँ।
2: और कुछ 2-3 हिंदी भी थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मराठी 9-10 पिक्चर्स किए हैं
1: जी, जी।
2: फिर बाद में मेरे याद में जो है, जो रिकॉर्डिंग में गया था मैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: आशा भाई के 2-3 गाने थे, फकीरा नाम का चित्रपट है
1: जी,
2: वो 62-63 में आया था।
1: ये हिंदी फकीरा की बात नहीं हो रही है?
2: नहीं नहीं, मराठी फकीरा, मराठी फकीरा, वो 62-63 का आया। और बाद में एक 64 में आया चित्रपट आया था मराठी, शोधा म्हणजे सापडेल, जिसमें सुमन कल्याणपुर ने 2-3 गाने गाए थे।
1: तो आपने आशा भाई और सुमन जी को देखा?
2: देखा है, बिल्कुल देखा है। उस टाइम मुझे इतना मालूम नहीं था, इतने बड़ा कलाकार है मुझे नहीं मालूम था।
1: आप तो छोटे थे,
2: 12-14 साल का था
1: जी।
2: तो उनके साथ मैंने बजाया भी है, सुमन ताई के साथ।
1: हाँ।
2: उनके जो रिहर्सल चलती थी
1: जी,
2: तो रिहर्सल्स में मुझे बजाने को बोलते थे। जिस चित्रपट में सुमन ताई गाई थी, वो चित्रपट का संगीत संयोजन

0: मोहिली जी ने किया था। तो अनिल जी मुझे बोलते थे रिहर्सल में तुम बजाओ, तो उस हिसाब से मैंने उनसे साथ बजाया।
1: अच्छा, आपके हाथ में वायलिन किस बरस की उम्र में दे दिया गया था?
0: मैं शायद 12-13 बरस का था,
1: तब से बजा रहे हैं।
0: हाँ, क्योंकि जो मेरे मास्टर जी थे वायलिन के, वो मेरे पिताजी के असिस्टेंट थे, प्रभाकर
1: जी।
0: तो मेरे पिताजी ने उनको बोला, अरे इसको हारमोनियम में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा वायलिन भी सीखना चाहिए उसने, और कुछ सीखना चाहिए। तो उनके साथ मैंने वायलिन उनके पास मैंने सीखा।
1: कितने साल तक सीखते रहे?
0: 7-8 बरस तक मैंने सीखा। 70-71 तक मैंने वायलिन का रियाज चालू रखा था।
1: और पिताजी हारमोनियम सिखा रहे थे?
0: हाँ, तो ये पहले गुरु जी मेरे पिताजी।
1: कितने सख्त थे वो?
0: नहीं, बहुत प्यारे थे
1: जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया हारमोनियम का जिक्र, वायलिन का जिक्र, पर आप तो अकॉर्डियन भी बजाते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ?
0: ये एक्चुअली क्या हो गया, मैं 72 में बीए जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया। और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए, तो फिर पूछा घर में कि ये क्या करता है। तो मेरे मास्टर जी थे, वो बोले हारमोनियम बजा लेता है, मेरे पास वायलिन सीखता है। तो फिर वसंत देसाई बोले कि हाँ हारमोनियम बजा लेता है, तो उसको फलाना फलाना डेट को मेरे पास भेजो। और फिर उधर गया, मैं पास हो गया, उनके हिसाब से पास हो गया। फिर 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: गजब।
0: हाँ, तो उधर क्या हुआ कि लोग आते थे, यानी जयवल कुलकर्णी है या तो शरद जांबेकर, प्रमिला दातार, फैया जी, वाणी जयराम। तो जयवंत कुलकर्णी, उनके साथ, जयवंत जी के साथ मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया। और उनके साथ जो अकॉर्डियन बजाता था, सूरज साठे नाम का,
1: सूरज साठे बहुत
0: बड़े बजाने वाला
1: जी, जी।
0: तो जब मैंने उसको देखा तो बोली ये साज बढ़िया है, उसमें क्या इफेक्ट मिलता है प्रोग्राम में, ये वो, तो मन में कुछ ले लिया। तो फिर मैं 74 को अकॉर्डियन खरीद लिया।
1: अरे बाबा।
0: तो फिर 78 से मैं बार बजाने लगा सीख के।
1: अच्छा,
0: पहले मैंने ऑडिशन भी दी थी रेडियो की।
1: अरे बाबा।
0: 78 में मैं ऑडिशन पास हो गया रेडियो की।
1: जी जी।
0: हाँ, तो वहां से फिर अकॉर्डियन शुरू किया। तो शायद 80-82 तक, जब तक मैं कीबोर्ड नहीं मेरे पास आया तब तक अकॉर्डियन बजा रहा था।
1: मैंने एक और चीज जो पढ़ी है आपके बारे में कि कॉलेज रुइया में पढ़े आप, और पढ़ाई करने तक आपके मन में ये तय नहीं था कि जीवन में आगे क्या करना है।
0: बिल्कुल, जब मैं 72 में वसंत देसाई के आ गया,
1: हाँ,
0: तो मेरा फाइनल हो गया कि मैं करियर करूंगा तो इसमें करूंगा।
1: और ये बैंक वाला मामला क्या था?
0: बैंक की परीक्षा देनी पड़ती थी ना।
1: हाँ, तो आपने बहुत मेहनत की, तैयारी की उसकी?
0: तैयारी की थी, लेकिन बिकॉज मेडिकली अनफिट हो गया मैं।
1: जी जी।
0: मेडिकली तो 2-3 बैंक में ट्राई किया, तो बोले ये तो गड़बड़ है, कुछ होने वाला नहीं इधर। और ये मौका मिल गया वसंत देसाई जी के उधर जाने का, तो वहां से फिर हो गया कि मैं म्यूजिक करूंगा।
1: वाह, वसंत देसाई का जिक्र हो रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ 2 आंखें 12 हाथ फिल्म का एक गाना अपने सुनने वालों को सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल,
1: वसंत देसाई की याद के नाम।
0: बिल्कुल।
1: ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: ठीक है।

0: अप्पा वढ़ावकर जी से बातें हो रही हैं और अप्पा आप बता रहे हैं कि वसंत देसाई जी ने आपको अपनी निगेबानी में ले लिया और आप कुछ साल तक वहां बजाते रहे। वसंत देसाई से जुड़ी कुछ यादें हमें बताइए, क्योंकि आपकी उम्र तो कम थी उस वक्त और वो बहुत बड़े संगीतकार थे।
1: तो मैं एक कैंपेन था गवर्नमेंट का, एक सुर एक ताल नाम।
0: हाँ,
1: ये उसका ये तो मोटो ऐसा था कि समझो कि पाठ्य पुस्तक के जब मराठी पाठ्य पुस्तक है, ये तो समझो एक कविता है देवा तुझे कितनी सुंदर आकाश। तो ये जो कविता है तो उस टाइम क्या होता था कि समझो कि बालमोहन स्कूल का म्यूजिक टीचर है, वो अपने हिसाब से उसकी ट्यून बनाता था। पार्ला का एक आधा स्कूल है तो उसके हिसाब से वो मास्टर ट्यून बनाएगा। ठाणा पूना ऐसा जो अलग अलग ट्यून बनते थे, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कुछ। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वो गाने में गवर्नमेंट ने ये स्कीम चालू की है, कैंपेन चालू किया कि एक सुर एक ताल, यानी कि किधर का बच्चा भी एक साथ आए और एक कविता गाने को बोले, तो एक ही ट्यून में गाए एक ही ताल में गाए।
0: क्या बात है।
1: तो ये कैंपेन में मैंने 8 बरस काम किया उसमें।
0: और वसंत देसाई के साथ फिर महाराष्ट्र के गांव गांव
1: जिले जिले गांव गांव में हम लोग घूमते थे
0: जी।
1: और उधर क्या होता था कि वो क्या बोलते हैं शिविर कैंप जो होता था वो समझो कि सोलापुर में गए हम लोग, तो उस एरिया के म्यूजिक टीचर्स उधर बुलाते थे
0: जी,
1: समझो 2-250 लोग होंगे, वो गाने सीखेंगे 3 दिन में, जो कुछ होगा 3-4-5 गाने जो होगा वो आप अपने स्कूल में जाके सिखाएंगे अपने बच्चे को, और फिर एक बड़ा सेमिनार लेके वो गाने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और कैसा क्या हो रहा है। और ये बहुत अच्छा कैंपेन था एक्चुअली, मास सिंगिंग बोलते हैं उसको।
0: वाह वाह। और
1: समूह गान
0: पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र में ये एक
1: मेरे ख्याल से मेरे इसमें वही मालूम है कि महाराष्ट्र में ये हुआ था।
0: उसी दौरान क्या वसंत देसाई ने महात्मा गांधी का एक भजन कंपोज किया था, हे नम्रता के सागर, आपको कुछ याद है?
1: वो एक्चुअली भजन नहीं है
0: जी,
1: वो एक्चुअली कहावत है ऐसे कि वो गांधी जी ने जेल में एक पत्र लिखा था।
0: यस।
1: और पत्र को वसंत देसाई जी ने वो ट्यून बना के जैसा लगता है गाना ही है,
0: मन्ना डे ने गाया
1: था। बहुत अच्छा तर्ज उसका हुआ था।
0: तो आप उस वक्त वसंत देसाई के साथ थे?
1: नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं था
0: जी।
1: मैं जाने के पहले वो रिकॉर्ड हुआ था।
0: अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि वसंत देसाई के साथ इतना ज्यादा अनुभव आपका है और वो एक बहुत ही अप्रतिम संगीतकारों में से रहे हैं, उनसे जुड़ी कुछ घटनाएं याद आती हैं जिनका जिक्र आप करना चाहें?
1: एक्चुअली एक बात मेरे बारे में, इतना मैं लकी हूं
0: जी
1: कि मेरे जो चित्रपट के जो पहला गाना, यानी समझो कि हिंदी का पहला गाना जो मैंने बजाया
0: जी
1: एज अ म्यूजिशियन
0: जी,
1: वो वसंत देसाई का म्यूजिक।
0: वाह।
1: शक नाम का चित्रपट था।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: शबाना आजमी विनोद खन्ना वगैरह काम।
0: हाँ हाँ। वो गाना कौन सा था?
1: वो अभी ना पर्दा गिरा करके।
0: वाह वाह वाह। जेके बैनर्जी ने गाया था।
1: यस, काका जी हम लोग उसके बोलते थे
0: जी।
1: तो वो गाना बजाने का मुझे मौका मिल गया, वो वसंत देसाई का था।
0: गुलजार साहब के बोलते अभी ना पर्दा गिराओ ठहरो की दास्तां अभी और भी है।
1: क्या बात है। मराठी का पहला

0: चित्रपट गाना मैंने वसंत देसाई साहब का बजाया।
1: क्या बात है।
0: और वो गायक कौन था तो पंडित भीमसेन जोशी जी।
1: ओ
0: भारत रत्न।
1: वाह वाह वाह।
0: इतना अभी ये आते कांटा रोंचे आते मुझे
1: जी। तो जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तनाव था।
0: तनाव तो था क्योंकि इधर का भी पहला रिकॉर्डिंग उधर। अच्छा पहले वो हिंदी का इतना तनाव ना था क्योंकि हमें रिहर्सल बहुत किए थे वो काका जी के साथ।
1: जी
0: कम से कम 15 रिहर्सल किए थे।
1: वाह।
0: लेकिन और क्या वो रिकॉर्डिंग ऐसा हेडफोन लगा के मैंने बजाया था
1: जी
0: काका जी का। पर लेकिन पंडित जी का जो गाना बजाया मराठी का वो ऐसा सामने पंडित जी बैठे हैं मैं इधर बैठा हूँ।
1: अरे बाप रे।
0: वो गा रहे हैं और क्या उनका आवाज
1: कंठ क्या गजब था।
0: बढ़िया बढ़िया
1: है ना। गाना याद है कौन सा था वो।
0: वो रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: आप गा के बताइए।
0: रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग। रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग। आगे का वर्ड्स आता नहीं। ये चंद्रकोश में बांधी हुई चीज थी।
1: वाह।
0: और बढ़िया गाया था।
1: क्या बात है। सुंदर याद आपने हमारे साथ साझा की है। और चूंकि शक फिल्म के गाने का जिक्र किया है
0: हाँ।
1: तो वो गाना सुन लेते हैं।

0: बहुत सुंदर बातें आपके साथ हो रही हैं अप्पा जी, और आप आगे चलकर म्यूजिशियन से म्यूजिक अरेंजर कैसे बने ये कहानी हमें बताइए।
1: पहला म्यूजिक अरेंजर ऐसे काम किया तो मैंने स्टेज पे किया था
0: जी।
1: तब क्या हुआ कि मैं एक ग्रुप कर रहा था, सब वैसा मैं थोड़ा सा इधर काम किया, वसंत देसाई के साथ, उसी रामचंद्र के साथ काम किया, तो थोड़ा सा मैं सीनियर था उनमें, और नोटेशन मुझे आती थी और उन लोगों को कुछ नोटेशन नहीं आता था। तो अचानक वो जिम्मेदारी मुझे पड़ गई कि इनको सब संभालो एक साथ, तो अरेंजर उधर ऐसे ही बन गया। तो फिर बाद में क्या होगा कि मैं सोचता था कि अरे मतलब क्रेडिट्स में मेरा नाम नहीं आता था, और सिंगर्स के नाम आते, वो इधर इसका नाम आया उसका नाम है, म्यूजिक अरेंजर का नाम नहीं। तो मैंने सोचा कि चार सिंगर है, वो पांच पांच छह छह गाने बिठाएंगे गाएंगे, लेकिन मेरे को 25 गाने बिठाने पड़ते हैं
0: जी,
1: और वो सब म्यूजिशियन से काम करना लेना, तो मेरा काम भी ज्यादा है ना।
0: हाँ।
1: तो क्रेडिट्स में आना चाहिए नाम, तो मैं करते गया कि हमारा भी नाम आना चाहिए आना चाहिए, तो तब से वो नाम आने लगा। तो ये क्रेडिट मैं लेता हूँ कि ये मेरे से शुरू हुआ,
0: म्यूजिशियंस के नाम आने जो उसकी कोशिश
1: अरेंजर का
0: बहुत बड़ी बात।
1: वहां से फिर किसी ने सुना कि ये लड़का अच्छा काम करता है, तो किसी ने मेरे को, पहला तो दूरदर्शन मैंने बहुत बजाया
0: जी जी,
1: और वहां तक कुछ नाम नहीं, लेकिन क्या समझो कि

0: युनिस भाई आए तो समझो शब्दांच्या पलीकडे का कार्यक्रम होता था, पांच गाने हैं तो आपने दो गाने का किया है अरेंजमेंट और तीन गाने का फिर वो प्रोड्यूसर बोलेगा अरे अप्पा जरा याचे करून टाकना अरेंजमेंट जरा, तो फोकट का अरेंजमेंट करतो अलग का पैसा नहीं मिलता वो फोकट का, तो ऐसा अरेंजर बन गया था मैं 77 को।
1: अच्छा एकदम
0: दूरदर्शन का पहला प्रोग्राम मैंने 74 में बजा है वसंत देसाई के साथ।
1: अच्छा वहां उन्होंने क्या परफॉर्म किया?
0: वो एक शिवराज्यभिषेक हुआ था 300 शिवराज्यभिषेक 74 में 6 जून 74
1: जी।
0: तो रायगढ़ पर वसंत देसाई जी ने एक गाना सादर किया था उसका रिकॉर्डिंग उधर हुआ था
1: दूरदर्शन
0: दूरदर्शन, तो वो पहला उधर भैया है मैंने
1: जी। और उसके बाद आप धीरे धीरे अरेंजर बनते हैं।
0: पहला कैसेट मैंने बजाया होगा जब कैसेट का जमाना आएगा 79-80 को
1: जी,
0: तब से मेरा वो चालू हो गया काम।
1: अच्छा अब मुझे ये बताइए कि सुधीर फड़के हो या स्नेहल भाटकर हो या फिर वसंत देसाई हो यशवंत देव हो, इन सब के साथ आपने काम किया है तो कुछ यादें हमारे साथ बांटिए।
0: एक तो वसंत देसाई के साथ मैंने अरेंजमेंट का काम कुछ नहीं किया, उनके पास सेबेस्टियन जी
1: वहां पर बजाते थे
0: लेकिन उनका मैं देख रहा कि उनका जो पेशेंस था ना
1: जी
0: बढ़िया पेशेंस था, यानी कि समझो गाना सिखाया और अभी आशा जी और ये छोड़ दो लेकिन जो स्कूल में हम लोग जाते थे ना सिखाने को एक सुर एक ताल एक गाना वो एक लाइन 10 बार 12 बार बोलते थे कि मैं सिखाने को तैयार हूं तुम सीखने को तैयार हो जाओ। वो कंटालते नहीं थे, वो बहुत पेशेंस था। वो पेशेंस जो चीज है और वक्त पे जाना,
1: वाह
0: 9 बजे का रिकॉर्डिंग होता था उस टाइम, वो 8:45 बजे वसंत देसाई जी स्टूडियो में हाजिर थे।
1: वाह
0: वो एक अच्छा मुझे ये लगा कि टाइम पे जाना चाहिए, ये दो चीजें वहां से अच्छी मिल गई मुझे। यशवंत देव के पास मैं जब गया जब उनका पहला अरेंजमेंट का काम मैंने किया तो उनका एक आदत था कि वो गाने का नोटेशन लिखते थे और वो ताल में 12 बार लिखते थे नोटेशन, तो सब गाने मैंने उस टाइम क्या करता था मैं थोड़ा सा आग की वजह से मैं उधर लिखता नहीं था, वो कैसेट पे रिकॉर्ड करके लेता था सब गाने, तो उनके गाने मैंने रिकॉर्ड कर लिए तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट भी दे दी गाने की, अब तुम्हारे लिरिक्स की और उसके नीचे नोटेशन लिखा हुआ
1: जी।
0: तो मैं बोला कि मेरे पास अभी गाने है ना रिकॉर्ड किए तो ये क्यों चाहिए मुझे, तो बोले नहीं जब तुम समझो कि 4 अंतरे का गाना है पहला तीसरा इसके ट्यून सेम है 1-3 और 2-4 ट्यून सेम है लेकिन ऐसा मत करना कि फर्स्ट अंतरे का जो म्यूजिक बजाएंगे आप वही थर्ड को बजाना क्योंकि फर्स्ट अंतरे का कंटेंट और थर्ड का कंटेंट अलग हो सकता है। फर्स्ट में हैप्पी होगा तो थर्ड में दुखी भी हो सकता है।
1: लेकिन आमतौर पर लोग यही करते थे कि M1 जो है वो M3 में डालते थे, M2 M4 में डालते थे।
0: तो पहले ऐसा ही करता था लेकिन उन्होंने ये बोला कि ऐसा मत करना, स्क्रिप्ट सामने रखो
1: जी,
0: उसका अर्थ मीनिंग समझा लो, अगर सेम जाता है तो ठीक है लेकिन अगर मीनिंग डिफरेंट है तो तुमको दूसरा अगला कुछ करना पड़ेगा।
1: वाह
0: तो तब से जो मैंने मेरे में सुधारणा की जो एज फार एज पॉसिबल
1: ये उनकी बदौलत हुआ।
0: हाँ यस उनका जो एक शब्द प्रदान गायकी यानी शब्दों के हिसाब से उच्चारण होना चाहिए उनका एक खासियत है यशवंत देव साहब का, उस हिसाब से मेरा शब्द प्रदान म्यूजिक अरेंजमेंट ऐसा हो गया उस टाइम से।
1: क्या बात है, सुधीर फड़के की कोई याद बांटिए?
0: अरे सुधीर फड़के का तो बहुत है, उन्होंने एक ही पिक्चर का हम लोग अरेंजमेंट किया उनका मैं और सुराज साठे। तो ये गाने के अरेंजमेंट हम लोग कर रहे थे उनके घर में ही बैठे थे
1: जी,
0: मैं और उनका बेटा श्रीधर
1: जी,
0: तो गाने का हम लोग के हिसाब से अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो गया ऐसा हम लोग का लगा। तो बाबूजी को बोला कि सुनिए उसको पास कर दीजिए ओके कर दीजिए या तो उसका फाइनल नोटेशन लिखने में जरा, तो उन्होंने आग बंद करके वो हमारे अरेंजमेंट जो कुछ है सुन ली, बोले बहुत बढ़िया किया है। हमको लगा कि यार क्या शाबाश की मिल गई हम लोग को, लेकिन बाद में बोले इसमें मेरा गाना किधर है?
1: अरे बाप रे
0: तुम्हारी अरेंजमेंट ऊपर जा रही है मेरे गाने
1: पे। गाने के ऊपर चढ़ गई है,
0: चढ़ गई है ना, मेरा गाना गया किधर?
1: अरे अरे अरे
0: तो मेरा गाना नहीं है तो ये गाने के लिए ये नहीं चलेंगे, और किसी के गाने को लगाओ आप।

0: इसके लिए अलग टाइप को थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया, ये टाइप करो, तो फिर बाद में हम लोग
1: पूरा काम फिर से किया।
0: तो ये मिल गया ना
1: हाँ।
0: कि बाबा गाने पे चढ़ना नहीं चाहिए,
1: सपोर्टिंग चाहिए। क्या बात,
0: तो इतने बड़े आदमी है वो क्या।
1: बल्कि आपने तो श्रीधर फड़के के साथ भी काम किया है।
0: हाँ, उनका ओंकार स्वरूप सुरेश वाडकर ने गाया हुआ
1: जी।

0: लेकिन चार गाने को उन्होंने अरेंजमेंट करके हमको दिल लिख के दिया, उधर भी मैं और सूरज।
1: अरे वाह।
0: क्योंकि एक बार मैं भूल गया बोलना, पहला अरेंजमेंट हम लोग ने किया ना जो,
1: जी
0: तो एक साथ किया हम लोग ने उज्जवल सूरज नाम से।
1: अरे वाह वाह।
0: फिर बाद में अलग अलग करने लगे,
1: पर क्योंकि जो आपका मूल नाम है आपको
0: उज्जवल, हाँ मेरा नाम उज्जवल है
1: जी,
0: और उसका सूरज।
1: वाह वाह।
0: तो उज्जवल सूरज नाम से हम लोग ने काफी काम किया।
1: लेकिन कितना सुंदर है उज्जवल सूरज।
0: और ये मौका हम लोग पहला अरेंजमेंट का हमको दिया कवि शांताराम नांदगांवकर, मराठी के जाने माने कवि है
1: जी,
0: शांताराम नांदगांवकर जी।
1: अच्छा।
0: उनका एक कुछ टीवी का काम था जिसमें सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति ऐसे लोग गाने वाले थे, अनुराधा पौडवाल वगैरह।
1: हाँ हाँ।
0: उसमें ये गाना इन्होंने भी गाया था, यशोदास ने भी गाया था।
1: वाह।
0: तो वो पहला मौका उन्होंने दिया, तो ऐसा तो काम चलते रहा
1: जी। बल्कि मुझे ये पता है कि आपके नाम पर एक रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में आपने चार बड़े आयोजन बजाए।
0: चार बड़े फुल प्रोग्राम यानी कि
1: साढ़े तीन घंटे के,
0: साढ़े तीन घंटे के यानी पहला में 11 बजे परेल का दामोदर हॉल है।
1: नहीं लेकिन मुझे इसकी पूरी भूमिका बताइए, ये कैसे हुआ कि एक ही दिन में इतने सारे कार्यक्रम होने लगे।
0: मेरा एक साथी बजाने वाला जो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा बजाता है, रिकॉर्डिंग नहीं बजाता है, अनिल गोसावी नाम, तो मुझे बोलता था आज मैं तीन शो बाजू ले।
1: हाँ।
0: मैं बोला तीन शो कैसा बजा सकता है, रिदम वाला है उसका स्टेमिना क्या होता है, तो मुझे भी कभी मौका मिले
1: जी
0: तो मैं भी बजा लूं। तो एक दिन मौका आ गया कि 11 बजे परेल में, 3 बजे रविन्द्र नाट्य मंदिर, अलग अलग प्रोग्राम।
1: हाँ।
0: यानी कि सप्तरंग नाम का प्रोग्राम 11 बजे बजाया।
1: हाँ।
0: 3:30 बजे अशोक हांडे का मंगल गाणी दंगल गाणी नाम का बड़ा
1: बहुत मशहूर। हाँ।
0: फिर 8:30 बजे अरुण लाते और अनुराधा पौडवाल।
1: हाँ।
0: उनका शुक्र तारा बजाया, और रात को 1:30 बजे वो हमारे पास एक उत्सव होता है साई बाबा का, उधर हिंदोले स्वरांचे नाम का बड़ा प्रोग्राम बजाया
1: एक ही दिन में।
0: हाँ, हाँ, और सबके संगीत संयोजन, तीन प्रोग्राम के संगीत संयोजन मेरे थे।
1: टेंशन नहीं हो रही थी यहाँ से वहां भागना है, ट्रैफिक है ये सब?
0: तब इतनी अभी ये 91-92 की बात है
1: जी जी,
0: तब इतनी सारी भीड़ भी नहीं थी वैसे, और साथ में एक म्यूजिशियन की गाड़ी थी जो कॉमन था मेरे साथ। तो वो आसान हो गए। तो उस दिन एक दिन में मेरे ख्याल से मैंने 130 गाने बजाए।
1: अरे बाप रे, एक दिन में 130
0: गाने बजाए, और वो विदाउट एनी नोटेशन, वो सब। हाँ। बाहर नोटेशन, क्योंकि मुझे का नोटेशन पढ़ने को इतना लंबा का दिखता नहीं है
1: जी जी,
0: तो वो सब मुझे मेमोराइज करना पड़ता है।
1: ये तो और कमाल की बात है कि इतना सारा आपने सब कुछ आपकी स्मृति में रह गया।
0: एक बार तो मैंने हमारे मराठी में विसुभाव बापट नाम के है
1: जी जी,
0: तो एक ही स्टेज पे मैंने एक दिन में 5 बजे फुल घंटे पूर्व।
1: अरे
0: रविन्द्र नाट्य मंदिर में पहला शो सुबह 6:30 बजे।
1: हाँ।
0: दूसरा 9:30 बजे।
1: हाँ।
0: तीसरा 3:30 बजे, चौथा 6:30 बजे, और पांचवा रात्र 9:30 बजे।
1: अरे बाप रे,
0: स्टेज पे फुल।
1: स्टेमिना कहाँ से लाते हैं आप?
0: तब था ये भी 20-30 बरस पहले के बाद।
1: क्या बात।
0: अपने आप को मैं ये देखता था कि मैं बजा सकता हूँ क्या।
1: हाँ, आप चुनौती देते थे?
0: मुझे ही देता था। हालांकि फिजिकली थोड़ा सा थकान होती है
1: जी। हमने सुधीर फड़के जी को याद किया तो उनका एक गाना सुनते हैं,
0: ज्योति कलश। सुनिए।
1: बिल्कुल वही सुनेंगे, ज्योति कलश।

0: बाबा जी, इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं और आपके काम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो शाहिद साबरे के साथ है।
1: बिल्कुल,
0: उसके बारे में बताएं जरा।
1: वो शाहिद साबरे का लड़का मेरा देवदत्त, वो मेरा फ्रेंड।
0: अच्छा,
1: तो उनके पहले तो कुछ काम मैंने किया था
0: जी।
1: और शाहिद साबरे मेरे पिताजी को अच्छा पहचानते थे, क्योंकि पिताजी के पिक्चर का जो मैंने जिक्र किया ना फकीरा, उसका एक फोक का गाना था
0: जी,
1: देवी का गाना, वो शाहिद जी ने गाया था, साबरे जी ने
0: जी।
1: तो उस टाइम तो उनको मालूम था अप्पा ये लाव रामबाव का लड़का है। तो फिर और मेरी उनका एक बड़ा दूरदर्शन ने प्रोग्राम किया महाराष्ट्र की लोकधारा। तो एक तो वो प्रोड्यूसर जी थी किरण चित्रे, उसको हम लोग ताई बोलते थे, किरण ताई। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, साबरे साहब ने, हमने देवदत्त ने भी मेरा नाम सजेस्ट किया अपने पिताजी के पास कि आपका कोई काम देना हो जाएगा अच्छा
0: जी।
1: और तब से उनका बहुत काम किया मैंने और सीखने को खूब मेरा फोक म्यूजिक
0: जी,
1: एक एक जो समझाते थे वो, ये ऐसा है, ये क्यों है, तो ऐसा है, क्यों है, ऐसा है।
0: वाह,
1: तो बहुत सारा मिल गया उधर से।
0: जब फोक म्यूजिक की बात हो रही है तो कोड़ी गीत आपने किए, आनंद शिंदे, मिलिंद शिंदे वाले।
1: हाँ, कोड़ी गीत किए, लेकिन वो जो वैसा होकर के जो कोड़ी गीत ज्यादा पॉपुलर हो गए
0: जी,
1: वो मैंने नहीं किए।
0: अच्छा,
1: वो ज्यादा पॉपुलर हो गए, आनंद शिंदे के वगैरह कोड़ी गीत इतने पॉपुलर नहीं हो गए।
0: हाँ,
1: उनके जो पॉपुलर हुए एक गणपति के गाने पॉपुलर हुए
0: जी, तो एक पूरा दौर था।
1: हाँ, क्या हो गया उस टाइम मुझे कंपनी के 5 कैसेट्स मिलते थे कॉम्प्लीमेंट्री, और बहुत कैसेट उससे सब लाया था मैंने, ओंकार स्वरूपा घर में लाया, बैणा भैया, XYZ।
0: मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप जम्बो जेट गा रहे हैं।
1: हाँ,
0: वो क्या है?
1: आशीर्वाद में एक गाना था
0: जी,
1: रेलगाड़ी नाम का।
0: हाँ,
1: अशोक
0: कुमार, दादा मुनि ने गाया।
1: तो वो सुन के, मेरा एक फ्रेंड है अभी बड़ा पत्रकार है मराठी में, उसका बहुत सारा फॉलोइंग है
0: जी,
1: भाऊ तोरसेकर नाम का, यानी उसके अभी सब्सक्राइबर 9-10 लाख है। हम लोग कॉलेज, वो रूपारेल का लड़का, मैं रोहिया का, लेकिन दोस्ती हो गई। वो गाना रेलगाड़ी सुन के उसको, और तब जम्बो जेट आया था नया नया, 67-68 वो जमाने में, तो उसको वो ये हो गया, कुछ लिखा तो अच्छा गाना हो गया वो। तो पहले वो गाता था, फिर वो जब पत्रकार हो गया तो गाना छोड़ दिया वो, और लास्ट नियरली 50-55 ईयर्स वो मेरे प्रोग्राम में मैं गाना गाता हूँ।
0: अच्छा, तो वो तो हम सुनेंगे आपसे, जब बल्कि आप तो आशीर्वाद का गाना भी बड़े चाव से गाते हैं, आपको क्यों इस गाने से बहुत लगाव है?
1: इतना अलग टाइप का गाना है वो,
0: वसंत देसाई
1: का एक अलग एक्सपीरियंस है वो, यानी कि उसके पहले मैंने कैसा जो रैप सुना नहीं था
0: जी,
1: ये जो रैप

0: गया तो बहुत मजा आएगा सुनने में।
1: अच्छा,
0: और बोलने में वो जो
1: इतना, और आपको पूरे याद भी है?
0: याद भी है, लेकिन क्या है एक ब्रीद में बहुत सारे शब्द बोलने पड़ते हैं।
1: हाँ,
0: ब्रीदिंग का जो उसको मास्टरी चाहिए।
1: जी सुनाइए ना प्लीज।
0: अब इतनी ब्रीदिंग मेरी रहेगी कि मालूम नहीं, ट्राई करता हूँ।
1: यस,
0: रेल गाड़ी को चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक, अरे धड़क भड़क लोहे की सड़क, धड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फुलाए चाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा दान हरा मैदान, बूढ़ा किसान मंदिर मकान चाय को दुकान, अरे पिलपक दंडी केले पे झंडी, पानी का कुंड पंच का चूर्ण, झोपड़ी झाड़ी खेती वाड़ी, बादल दुआ मोटा कुआ, कुएं के पीछे बगीचे, धोबी का घाट मंगल के घाट, हर गांव में मेला भीड़ जे मेला, टूटी दीवार तट सवार रेलगाड़ी। ये बहुत लंबा एक,
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। अब जम्बो जेट सुनाइए।
0: तो जम्बो जेट का थोड़ा सा मराठी होने से वो थोड़ा सा मेरे लिए आसान है। अरे जम्बो जेट स्वयं, जम्बो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्हा भेट, जम्बो जेट सोई, अरे घराला धडक दाराला सडक, पकडली गाडीने निघालो तडक, विमानतळावर ठोकतोय तर आणि भारत सोडून काढतोय पळ, उंच आकाशामधले ढग चमकून पाही सारे जग, भेदून गेले एक विमान पंखावरती होऊन ताण, पंखाला त्या पंखे होते विमानाला शेपूट होते, वायुसागरी तरते बेट, जम्बो जेट।
1: वाह वाह,
0: ऐसे छह स्टाम्स है उसके,
1: शानदार है ये तो, बड़ा लोकप्रिय हुआ,
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। और का प्रोग्राम हो जाए तो एक बार पुणे में प्रोग्राम था सुरेश वाडकर का।
1: जी जी,
0: तो उनका महोत्सव होता था 3 दिन का।
1: हाँ,
0: और 3 दिन अलग आर्टिस्ट, एक दिन रविंद्र साठे था, दूसरे दिन उत्तरा केळकर, तीसरे दिन सुरेश वाडकर।
1: जी,
0: और तीनों में मैं था।
1: हाँ, आप अरेंज कर रहे थे या बजा रहे थे?
0: नहीं, बजा रहा था मैं, तब कीबोर्ड बजाता था।
1: जी,
0: तो उत्तरा केळकर के साथ बजाने को गया तो वो जो पब्लिक है उन्होंने पहले कहीं सुना था वो गाना मैं गाया हुआ, तो फरमाइश आ गई, तो कॉम्पेयर बोला ये गाना है फरमाइश, मैं बोला और लोगों के प्रोग्राम में अच्छा नहीं है, एथिक्स के बारे में थोड़ा सा अच्छा नहीं दे, तो मैं बोला नहीं कुछ भी बोल दो मैं नहीं गाऊंगा। दूसरे दिन रविन्द्र साठी के प्रोग्राम में फिर फरमाइश आ गई,
1: अरे रे,
0: उस टाइम भी मैंने मना कर दिया। सुरेश वाडकर के प्रोग्राम में
1: हंगामा हो गया।
0: हाँ, 2, 5, 10, 15 चिट्ठी, तो सुरेश के पास चिट्ठी दिया वो कॉम्पेयर ने।
1: हाँ हाँ,
0: तो कैसा बोलते, अरे अप्या अप्या बोल,
1: बहुत मजाकिया भी है,
0: मजाकी बिल्कुल अप्या, अरे बाबा काय ते जम्बो जेट जम्बो केवड़ा चिट्ठी आल्या गा बाबा तू गा, वो खुद बोला। हाँ, तो मैंने उस टाइम वो गाया था उधर,
1: क्या नजारा होगा वो,
0: वो खुद खुश हो गया, अरे क्या बात है, बोल तो क्या तेरा दमछा क्या है, बोले यार भी अच्छी है बोला।
1: मुझे एक बात बताइए कि आपने वो स्वरलिपि वाली जो किताब लिखी है उसके पीछे क्या रीजन था?
0: वो मराठी ऑर्केस्ट्रा बहुत करता था मैंने ना।
1: जी,
0: अच्छा अप्पा वड़ावकर एक नाम हो गया उधर स्टेज पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते थे, क्या कर रहे हैं कुछ पूछते भी थे, वैसा मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ, लेकिन जिसको कुछ समझो कि कुछ आया आपको कुछ आया क्या क्या फलन है तो उनको समझ लेना एज अ सीनियर, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कि कुछ नोटेशंस की हम लोग को मालूम नहीं है वो, तो अभी हर एक को मैं कहा लिख के दूं। तो एक प्रपोजल आएगा क्या पुस्तक ये करने का, और वो मेरे गुरुजी के पास गया, प्रभाकर पंडित जी के पास गया कि ऐसा ऐसा आपा को बोलो ना नोटेशन का बुक ये करते है, वो मना कर रहे हैं। तो पंडित जी ने अभी गुरु का ही बोला रे कर दो ना, मतलब मराठी में बोला मास्टर मला लिहायला त्रास होतो, नहीं मैं हेल्प करूंगा, बोले तू लिख इनिशियल मैं चेक करता हूँ पूरा। तो ऐसे हो गया, 30-35 गाने का कुछ किया था
1: जी।
0: उसमें मैंने एक किया था कि और कुछ गाने हो गए समझो, भक्ति गीत भावगीत XYZ, लेकिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होना चाहिए। उसका नोटेशन भी मैंने उसको ऐड किया था।
1: क्या बात है, सुंदर,
0: वंदे मातर और जनगणमन।
1: जी, मुझे लगता है आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
0: बिल्कुल,
1: तो बताइए कौन सा गाना सुना जाए हिंदी?
0: आरडी बर्मन का।
1: हाँ,
0: तो मुझे है ना उनके बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो पड़ोसन का अपन बोलेंगे ना वो
1: एक चतुर्नार।
0: हाँ,

0: 생각.
1: 그 다음.
2: 아이요.
1: 그 다음.
2: 나.
1: 아래 다음, 다음, 다음, 록. 브름, 브름, 야, 에이, 우.

0: घोड़ा चतुर
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला। गाओ।
2: एक चतुर नार करके सिंगार,
3: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
2: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
3: अपने ही जाल में फंसत जात,
2: हम मरत

0: अपा, मैं अब आपसे पूला देशपांडे की याद चाहता हूं। उनके साथ आपने काम किया और एक बड़ी अच्छी याद है आपकी।
1: उनका एक एनसीपीए का प्ले था
0: जी,
1: उन्होंने लिखा हुआ, वामन केंद्र का उसको डायरेक्शन था और उसका म्यूजिक डायरेक्शन था जाने माने हमारे मराठी के अशोक रानडे नाम के
0: जी,
1: बहुत ज्ञानी आदमी। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने के लिए दो ही म्यूजिशियन थे, एक कीबोर्ड्स और इसमें मैं,
0: हाँ,
1: और रिदम में देवदत्त साबड़े, शायर साबड़े का लड़का
0: जी।
1: तो रिकॉर्डिंग में ऐसा हुआ, फ्लूटिस्ट भी एक्चुअली था,
0: हाँ,
1: लेकिन वो थोड़ा लेट आऊंगा ऐसा बोल के, कुछ रिकॉर्डिंग थी सुबह, तो बोले चलो हम लोग इनके पीसेस लेते हैं, ऐसे रिदम का और अप्पा को जो कुछ कुछ है वो लेते हैं। तो हम लोग ने 11 बजे शुरू किया रिकॉर्डिंग, वो एनसीपीए में, वो स्टूडियो में, और 1:30 बज गया, हम लोग कम से कम 12-13 पीस रिकॉर्ड हो गए। और वो अंदर से आवाज आया, चलो अभी थोड़ा लंच करते। अभी ये पहले मुझे मालूम नहीं था कि अंदर पूला देशपांडे बैठे हुए सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग पूरा। और जो अंदर से आ गए तो अरे भोरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी के साथ में, सामने मैंने 2.5 घंटा बजाया, कैसा क्या बजाया मालूम नहीं है। तो आए, वाह अप्पा खूब छान, ऊपर आए, इंस्ट्रूमेंट था मेरा, तो मराठी में बोले, तुमसे है यंत्र हाथाड़ू का थोड़ा सा थोड़ा, तो बोला आपको क्या बोले, थोड़ा सा उनका हाथ मेरे कीबोर्ड के लग गया।
0: वाह।
1: फिर बाद में क्या, लंच के टाइम उसके बाद फिर भी फ्लूटिस्ट आया नहीं
0: जी,
1: तो अशोक जी रानडे जी रुके थे कि फ्लूटिस्ट आएगा, तो पुल देशपांडे बोले रुके क्यों, बोले आया नहीं फ्लूटिस्ट, आपा बजा सकता है क्या इंस्ट्रूमेंट पे है, हाँ आ सकता है, तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो बजवा लो इससे अच्छा बजा
0: रहा।
1: तो पूरा वो नाटक का पूरा जो कुछ बैकग्राउंड का मेलेडी था वो मैंने बजाया था।
0: वाह वाह वाह, कितना अच्छा अनुभव ये।
1: तो और दूसरी एक अच्छी बात है कि उनका जो एक मराठी में, जैसे हम लोग पॉडकास्ट बोलते हैं ना, वो उनकी जो कथा ही है वो खुद बोलते हैं, उनका बहुत सारे वीडियो आए, तो उसके पहले कुछ टाइटल ट्यून चाहिए थी। तो हमारा मित्र है, अभी नहीं है वो, आनंद था मोड़क नाम का
0: जी जी,
1: उन्होंने वो ट्यून कंपोज की और वो पूरा म्यूजिक मैंने कीबोर्ड पे बजाया, वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग हुआ, रिहर्सल चालू हुई और पूला देशपांडे अंदर आ गए और मेरे बाजू के कुर्सी में बैठ गए और मेरे को बहुत टेंशन आ गई, इतना बड़ा एक खुद अच्छा हारमोनियम बजाते थे ना
0: जी जी,
1: और बड़े हारमोनियम
0: जी,
1: तो बोले फिर भी हो गया, मेरा काम अच्छा हो गया, उनकी शाबाश की मिल गई, बड़ा आदमी है।
0: वाह वाह क्या बात है। अच्छा, आप यूट्यूब पर कुछ वीडियोस जारी करते हैं,
1: हाँ,
0: अपांची गप्पा,
1: हाँ,
0: ये आइडिया कहाँ से आया था और इसमें तो आप तकरीबन शतक बना चुके हैं।
1: हाँ, अभी 100 एपिसोड मैंने अभी डाला, एक 4-8 दिन हो गया अभी
0: जी, तो ये तो सेंचुरी हो गई भाई।
1: हो गई वो एक्चुअली कोरोना के टाइम क्या हो गया,
0: हाँ,
1: मेरा एक मित्र है प्रशांत ठाकरे नाम का
0: जी,
1: अच्छा म्यूजिशियन है, म्यूजिक कंपोजर है और टेक्नीशियन अच्छा है, तो वो बोला

0: तेरे पास इतना बोलने के लिए इतना काम किया है, तू ये कर लेना। मैं बोला इसमें से मेरे को 0% आते है, कुछ मालूम नहीं। तो बोला मैं हूँ नसीर, तू आ मेरे घर में आ, मेरा सेटअप है, तू बोलते जा, बाकी पूरा जो पोस्ट प्रोडक्शन जो कुछ होगा अपलोड करने का भी सब मैं करूंगा।
1: अरे गजब।
0: अरे वो पैसा कितना लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। बोला हाँ। तेरे को आने जाने में जितना लगेगा, खाने में लगेगा उतना ही, और तेरा पैसा मेरा पैसा कुछ नहीं है।
1: अरे गजब।
0: तो वो चालू हो गया। फिर अभी 100 एपिसोड हो गए मेरे।
1: देखते,
0: और वो
1: देखते।
0: एक योगा योग की बात है कि मेरे माँ का जन्म शताब्दी वर्ष चालू है अभी।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसका एक प्रोग्राम मैंने किया था सावरकर हॉल में
1: जी,
0: बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, तो वो एपिसोड मैंने 100 एपिसोड है मेरा।
1: हाँ, वो आपने यूट्यूब पे डाला?
0: हाँ, यूट्यूब पे डाला
1: जी। 100 एपिसोड, लोगों का क्या रिस्पांस है?
0: रिस्पांस ऐसा अच्छा है, लेकिन व्यू टाइम मेरा बहुत कम है।
1: जी जी।
0: यानी मेरा अभी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है।
1: अच्छा अच्छा। हाँ, अभी उसका इंतजार है।
0: इंतजार अभी एक्चुअली मेरा क्या है, ये एज ए डॉक्यूमेंटेशन मैं इसको कर रहा हूँ।
1: जी जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप अलग अलग लोगों को उसमें याद कर रहे हैं,
0: जिसको फायदा हो जाए उसको फायदा हो जाए,
1: कहानियां सुना रहे हैं सब चीजें।
0: क्योंकि मैं बोलता हूँ कि बाबा ये गाना अरेंज किया तो उसके वो अरेंजमेंट के लिए मेरी क्या सोच थी।
1: हाँ अच्छा, अभी मैं आपको एक गाना याद दिला रहा हूँ सुरेश वाडकर के एल्बम का, मन है खुड़े कसे।
0: हाँ, वो देव साहब का एल्बम है, यशवंत देव का। पूरा सोलो है, सुरेश का 8 गाने का सोलो है वो
1: जी।
0: उसमें एक तो मुझे 3 गाने में वायलिंस, ग्रुप वायलिंस, क्योंकि हाँ। मराठी के इसमें कैसेट के लिए ग्रुप वायलिंस मिलते नहीं है
1: जी,
0: तो बजट बढ़ जाता है ना, 10-12 वायलिंस लगाने पड़ते हैं, नहीं तो इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन इसमें मिल गए, वो काम करने में बहुत मजा आ गया, कोरस का यूज करने को लिए मजा आ गया। एक तो ट्यून्स बहुत अच्छी है देव साहब की, लिरिक्स अच्छे है जो कवि किया है वो, और सुरेश ने बहुत अच्छा गाया, बहुत
1: लोकप्रिय है।
0: वायलिंस के तीन गाने जो है वो मुझे, तीनों गाने उस पे, एक गाने पे मैंने वीडियो भी बनाया उस पे।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, एक एपिसोड वो गाने पे है
1: जी। अब मुझे ये बताइए कि इतने सालों से आप संगीत की दुनिया में हैं और हारमोनियम पर आपकी उंगलियां बिजली की फुर्ती से चलती हैं।
0: बचती थी अभी एज के हिसाब से थोड़ी सी फ्लुएंसी कम हो गई
1: जी,
0: फिर भी अभी मैं लाइव प्रोग्राम बहुत बजाता हूँ।
1: हाँ,
0: लेकिन पहले क्या, मैं एज ए लीड बजाता था
1: जी जी,
0: तो अभी थोड़ा सा सपोर्टिव।
1: हाँ,
0: वो हो जाता है थोड़ा सा, अभी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं ना
1: जी,
0: कभी अटक जाता है थोड़ा सा।
1: संगीत की दुनिया में जो आधुनिक बदलाव है उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या सब कुछ बहुत कृत्रिम होता जा रहा है?
0: ये तो होना ही था, क्योंकि सब आर्टिफिशियल है। अभी एनालॉग रिकॉर्डिंग और डिजिटल में वो फर्क आएगा। लेकिन जैसे प्लस है उसके माइनस भी है
1: जी।
0: अभी जैसे समझो, पहले में जो कैसेट्स किया उस टाइम 10 गाने करने पड़ते थे, क्योंकि C60 का कैसेट होता था तब।
1: हाँ।
0: 60 मिनट का कैसेट, तो कम से कम ये साइड 5 गाना, वो साइड 5 गाना। लेकिन वो एक एक कैसेट हम लोग ने 4-4 दिन में मास्टर दिया है, मास्टरेटिव, क्योंकि 2 ट्रैक, पहले तो 1 ट्रैक में रिकॉर्डिंग हुआ तो करता था फुल ट्रैक रिकॉर्डिंग, फिर 2 ट्रैक हो गए, फिर 4 ट्रैक हो गए। उसी टाइम जो रिकॉर्डिंग के टाइम में बैलेंस होते, 4 ट्रैक जब हो गए तो 1 ट्रैक पे रिदम पूरा बैलेंस हो जाता था, 1 ट्रैक पे मेलेडी बैलेंस हो जाती थी, तभी 1 ट्रैक वॉइस हो जाता था। तो मिक्सिंग को बहुत कम टाइम लगता था
1: जी जी।
0: अभी ये डिजिटल के हिसाब से क्या करते हैं, एक लाइन है तो उसका ऑप्शन 10 ऑप्शन हो,
1: बहुत सारा पंच करते हैं।
0: हाँ, फिर बाद में उनको ही पता नहीं चलता है कौन सा अच्छा हाथ लगा मेरे को,
1: कोई बात नहीं।
0: तो फिर बाद में म्यूजिक डायरेक्टर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बाबू इसमें से अच्छा कौन सा है। लेकिन मैंने एक म्यूजिक डायरेक्टर को बोला था, तुम्हें 10 ऑप्शन लिए क्यों, 1 लिया 2 लिया 3 लिया
1: जी,
0: लेकिन उसमें से 1 तो अच्छा है ना।
1: हाँ,
0: तो दूसरे 2 हटा दो ना उसी टाइम।
1: हाँ,
0: तो 10 रखेगा, फिर बाद में तेरे को याद नहीं रहेगा कि कौन सा अच्छा है, तू सब सुनते रहेगा। एक गाने के मिक्सिंग को 1.5-2 घंटा लगना चाहिए, तो 6 घंटा 8 घंटा लगता है।
1: कई कई दिन लगाते
0: हैं, फिर एक दिन में ये गाना हो जाता है और क्या।
1: अपा, अब बातचीत जो है वो लगभग आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है और मैं चाहता हूं कि अपनी पसंद का

0: ये गाना हमारे सुनने वालों को समर्पित करें आप।
1: एक तो श्री रामचंद्र जी का, वो मेरे वतन के लोग, लता दीदी का।
0: वाह,
1: श्री रामचंद्र के साथ मैंने काम किया एक बरस। वो हमारे मुख्य थे जब वसंत देसाई गुजर गए
0: जी
1: 75 को। उसके बाद एक बरस अण्णा ने, जिनको अण्णा बोलते थे सब इंडस्ट्री में, अण्णा ने वो उनके जगह काम किया है। और ये गाना यानी कुछ अलग लगते है गाना सुनने के बाद, वो इमोशंस अलग हो जाती है। तो वो गाना सुने
0: जरूर। कवि प्रदीप की रचना है, इसे लता जी ने गाया था।
1: बिल्कुल।
0: और नेशनल स्टेडियम में जब दिल्ली में ये गाना लाइव हुआ था तो वो एक इतिहास है। अपा, आप विविध भारती की स्टूडियो में आए और आपने अपने जीवन की इतनी सारी यादें हमारे साथ बांटी, नई पीढ़ी को चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
1: दो तीन चीजें हैं। एक तो डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, पैसा मिलता है इसलिए काम मत करना।
0: वाह।
1: और काम करते करते पेशेंस चाहिए, टाइम पे आना, जो मैं करते रहा हूं। अरेंजर हो गए तो उस हिसाब से काम करो, सिंगर हो गए तो मेहनत करनी पड़ेगी अलग तरह से, अपने गुरु को याद करो अच्छी तरह से। और सबको मैं शुभकामना देता हूं और विविध भारती के सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहां बुलाया है आपने। जो कुछ मैंने बात की है, हिंदी तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है।
0: अरे, आपने बहुत अच्छे से बात की है,
1: कोशिश की है और आपने सब करवा लिया मुझसे। यूनुस जी तो ग्रेट है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: थैंक्स।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में, अभी आप सुन रहे थे मराठी फिल्म के जाने माने संगीतकार अप्पा बढ़ावकर से यूनुस खान की ये बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट कर ढल लियो बुन सारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
2: भाई वाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: जो है कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन मैं उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: FM बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं अब आप सुनेंगे सुगम संगीत और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे कैलाश खैर के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कैलाश खैर के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

Dinle çıktı ne tadak. Da da. Dinle çıktı ne tadak.

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना कैलाश खैर की आवाज में कुछ गैर फिल्मी गीत। दिन के 11:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं फिल्म उड़ता पंजाब से। दिलजीत दोसांझ और अमित त्रिवेदी की आवाज में गीत। शब्द रचना है शिव कुमार की और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं राजनीति फिल्म से आदेश श्रीवास्तव, शशि और रोजली निकोलसन की आवाज में गीत, बोल हैं समीर के और संगीत दिया है वैन शॉप ने।

श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की आवाज में गीत। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत दिया है प्रीतम ने।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं भूलभुलैया फिल्म से नीरज श्रीधर की आवाज में ये गीत। शब्द रचना है सैयद कादरी की और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं दे दनादन फिल्म से मीका सिंह की आवाज में गीत। शब्द रचना है सैयद कादरी की और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अंतिम पेशकश बेफिक्रे फिल्म से बनी दयाल की आवाज में, बोल हैं जयदीप साहनी के और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।
1: नगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉ एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

0: सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविक भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज यादों की महफिल में हम सुनेंगे उन्हीं गीतों को जिनमें है जिया यानी दिल न लगने की कसक, दिल की बेचैनी और किसी अपने की कमी का एक भरपूर एहसास। तो आइए यादों की इस महफिल में आज दिल की उस बेचैनी को गीतों के साथ महसूस करते हैं। ठीक है, यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, स्वर लता मंगेशकर का। फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। कार्यक्रम में अब सुनिए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में कमर जलालाबादी की रचना, स्वर आशा भोंसले का और फिल्म का नाम फागुन।

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर का ये गीत, गीतकार गुलजार साहब और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था आनंद। इस गीत को गुलजार साहब ने लिखा और धुन बनाई सलील चौधरी ने।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज की जो महफिल हमने सजाई है उन्हीं गीतों के नाम है जिनमें है इंतजार, तन्हाई और बेचैन दिल की आवाज। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम लाल किला। गीत को बहादुर शाह जफर ने लिखा और धुन SN त्रिपाठी की है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जेल यात्रा का गीत। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।
1: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट कर धल लियो भुनसारे अपन नरबदा सपड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: तो भाई वाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत निखिल विनय के संगीत निर्देशन में फैज अनवर का लिखा हुआ, गायिका चित्रा के एस और फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था छोटी सी मुलाकात। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का।

और अब विशाल मिश्रा का संगीत, अक्षय त्रिपाठी के बोल। फिल्म का नाम है नोटबुक। गाने वाले कलाकार विशाल मिश्रा और असिस कौर।

यादों की महफिल कार्यक्रम की यह है अगली पेशकश। रविंद्र जैन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आवाज भूपिंद्र की, फिल्म का नाम दासी।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घूंघट का गीत, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिलन का गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में ये थे कुछ ऐसे नगमे जिनमें दिल की वही बेचैनी सुनाई दी जब किसी के बिना कहीं हमारा मन नहीं लगता, किसी काम में जी नहीं लगता और बस उसकी याद साथ चलती है। तो चलिए, इन्हीं गीतों के साथ आज की ये महफिल यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और एहसास, किसी और कहानी और ऐसे ही कुछ खास नगमों के साथ। और इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अपने अपने शहर में खुश हैं ना, या कहीं और गए हैं घूमने किसी और जगह? बताइएगा जरूर। हाँ, ये बात मैं क्यों पूछ रही हूँ आप समझ गए होंगे। जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो हमारी बात समझ में आ गई है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज पर नहीं है वो सोच रहे होंगे कि भई हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि आप अपने शहर में खुश हैं या नहीं। वैसे तो हम अपने शहर में खुश रहते ही हैं, लेकिन कभी कभी हम नहीं भी रहते। ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन आज हम जो ये सुरीला सफर है उसमें एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां बहुत सारे शहर, बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलने वाली है। आप सभी जानते हैं कि हर शहर की, हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक धड़कन होती है, अपनी बोली, अपना रंग, अपना खान पान, अपना मौसम और अपनी एक कहानी होती है। और जब यही शहर या स्थान फिल्मी गीतों में उतरते हैं तो ये संगीत हमें उन गलियों में, उन चौबारों में, उन जगहों तक ले जाता है जिन्हें शायद हमने कभी देखा भी नहीं होता, है ना? तो आइए सुरों के साथ आज निकल पड़ते हैं शहर दर शहर,

गीत दर गीत। तो अब आप समझ गए हैं कि आज हम क्या लेकर आए हैं। चलिए आज की इबारत पढ़ देते हैं, तो हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज पर नहीं है वो समझ जाएंगे कि आज हम कहां जा रहे हैं। देखिए, सुरीला सफर में आज सफर सिर्फ गीतों का नहीं है, शहरों और जगहों का भी है। तो आज जरा इन जगहों की भी सुनते हैं, कौन किसे अपने यहां बुला रहा है। आज पता है ये शहर ये जगह आपस में बात कर रहे हैं, क्या सुनिए आप भी। अरे सुनिए, इतनी दूर क्यों खड़े हैं, आइए ना मेरे बीकानेर। कभी मेरी गलियों की रौनक देखिए, कभी मेरी हवाओं की गर्माहट को महसूस कीजिए। बीकानेर भाई, अपनी अपनी जगह सब सही है, लेकिन रंग और शान देखनी हो तो मेरे जयपुर आइए। मेरी गलियों में घूमकर मेरे रंग देखिए, और वो जयपुर की। आखिर गीतों में मेरा नाम यूं ही तो नहीं लिया जाता। तुम दोनों की बातें सुनकर तो मन हुआ कि मैं भी कुछ कहूं। आइए कभी मेरी वादियों में, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, झीलें, ठंडी हवाएं। मैं तो गीतों में भी कहती हूँ, कश्मीर की कली हूँ मैं। मुझे देखने के लिए बस दिल में थोड़ा सा मौसम होना चाहिए। अरे भैया, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, कभी बनारस भी आइए, मेरी गलियों में घूमकर देखिए। गंगा किनारे बैठिए और जाते जाते आहा, एक पान तो खाते जाइए। अगर मेरे यहाँ आए और बनारस वाला पान नहीं खाया तो सफर अधूरा ही समझिए। और मेरा क्या, मेरे बाजार में किसी का झुमका भी गिरा था, याद है या भूल गए। भाई तुम्हारे झुमके की बात चली तो मुझे भी याद आया कि ताजमहल की मोहब्बत को देखे बिना आगरा से लौटना मत। हुजूर, आप सबने बुला लिया तो मुझे कैसे भूल गए। कभी लखनऊ आइए, तहजीब से मिलिए, अदब से मिलिए। यहाँ शहर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। दिल्ली कहे मेरे घाघरे की बात ही कुछ निराली है, हर अदा मेरी मतवाली है। और जनाब, इतना सफर जब कर ही लिया है तय, तो मेरे पास भी आइए। समंदर है, सपने हैं, रफ्तार है, और मैं तो बरसों से कहता आया हूँ ये है बॉम्बे मेरी जान। और तभी सब एक साथ बोल पड़ते हैं, तो फिर तय रहा, अगली बार जब कोई गीत बजे और उसमें किसी शहर या जगह का नाम सुनाई दे तो सिर्फ गीत मत सुनिएगा, उस शहर की उस जगह की आवाज भी सुनिएगा, क्योंकि इन गीतों ने हमारी गलियों, बाजारों, रंगों, खुशबू और यादों को भी सभी की जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बना दिया है। तो समझ आई हमारी आज की इबारत। तो चलिए घूमने निकलते हैं इन्हीं शहरों की गलियों में।

जी तो हमने शुरुआत की है बीकानेर से। कभी गए आप इस शहर में? बताइएगा, अगर आप बीकानेर गए हैं तो आपको कैसे लगी वहाँ की आबोहवा, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन? और ये भी बताइएगा कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में आया है, है ना? एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बीकानेर में पला बड़ा हूँ। 1991 के अगस्त माह में बीकानेर आया तो यहाँ के लोगों की सादगी और स्नेह व्यवहार देखकर कतई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर से 250 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। सफर आगे बढ़ा मगर रेडियो का साथ बराबर बना रहा। कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। आकाशवाणी बीकानेर को अपने ट्रांजिस्टर सेट पर सुनते सुनते कब मेडिकल की पढ़ाई यानी MBBS पूरी हुई और PG भी हो गई पता ही नहीं चला। आकाशवाणी बीकानेर पर सन 2000 में जब पहली बार अपनी मौलिक क्षणिकाएं पढ़ी तो मेरा मन कितना पुलकित हुआ था यहां बता पाना बेहद मुश्किल है। इस शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी में टाउन हॉल में अक्सर जाना होता था। आज भी जब उधर से गुजरता हूं तो गला रुंध सा जाता है। आज सफल हूँ, लोगों की सेवा चर्या में खूब व्यस्त रहता हूँ, गाड़ी बंगला सब कुछ है, मगर मन के किसी कोने में बीकानेर से दूर जाने की कसक आज भी है। आगे आप लिखते हैं कि यहाँ के रसगुल्लों, भुजिया, नमकीन के अलावा मेरी जिंदगी में बीकानेर का बहुत महत्व है। और आपने भी ये गाना सुनना पसंद किया है जो अभी अभी हमने आपको सुनवाया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बीकानेर में रहते हैं और आपने अपने शहर के बारे में हमें जानकारी दी है और ये बताया है कि अपना शहर कोई नहीं भूल पाता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह, आज तो हम आपके साथ आपके शहर बीकानेर के साथ साथ शहरों की कई शहरों की सैर करने वाले हैं। बीकानेर की हवाओं में जहां राजस्थान की गर्मजोशी महसूस होती है, वहीं जयपुर के रंगों में राजसी विरासत झलकती है, बनारस की गलियां जीवन का दर्शन कराती हैं, तो लखनऊ की तहजीब मन मोह लेती है, आगरा का ताज मोहब्बत की कहानी कहता है, मुंबई तो सपनों की नगरी है ही, वहीं कश्मीर की वादियां हमें प्रकृति की सैर कराती हैं। यात्राओं से हम अपने घर लौट आते हैं, लेकिन जब कभी किसी गीत में उसी शहर का नाम सुनाई देता है तो हम फिर से उस शहर की यादों में खो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी गीतों में शहरों के नाम सुनकर सबसे ज्यादा खुश उन शहरों के लोग होते हैं, जैसे बरेली, बनारस, जयपुर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कश्मीर, आगरा, चेन्नई, जयपुर, भोपाल से लेकर लुधियाना तक का नाम हमने फिल्मी गीतों में सुना है। ज्यादातर कहानी के मुताबिक गीतकार अपने गीतों में शहरों के नाम इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि बात यह है कि ये गीत बहुत हिट भी हुए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड और संगीत का रिश्ता सदियों पुराना है। फिल्मों में गाने केवल कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं होते बल्कि वे दर्शकों की भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त जरिया भी है। हिन्दी सिनेमा की एक बेहद दिलचस्प और लोकप्रिय परम्परा रही है गानों में शहरों के नामों का इस्तेमाल। कभी किसी शहर की संस्कृति को दर्शाने के लिए तो कभी वहां के बदलते स्वरूप या इश्क को बयां करने के लिए गीतकारों ने शहरों को अपने शब्दों में बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोया है। बहुत सुंदर विचार हमारे श्रोता लिख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद पक्षी का लिखा गीत सुना था। आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था राजा और रंग।

हमारे दो सवाल तो आने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में सुनाई देता है, बताइएगा फटाफट। तो चलिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं, बीकानेर से थोड़ा आगे चलते हैं और वहां आता है क्या, जयपुर। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है गहरी चाल।

ये झटपट होगा फटाफट होगा, मोहब्बत की खातिर फटाफट होगा, चूड़ियों से भर दे

बनवा के सोने का ताजमहल दे दूं, मगर शर्त ये।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे भारत देश का हर शहर निराला और प्यारा है, किसका नाम ले किसका नहीं। वैसे तो हम अवध क्षेत्र के निवासी हैं, पर आत्मिक रूप से तो हम राजस्थान प्रांत से ही जुड़े हैं। राजस्थान के हर शहर की बात ही अलग है। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, क्या बात है। आपने तो बीकानेर की मांड गायकी याद दिलवा दी, जो मांड गायिका पद्मश्री प्राप्त अल्लाह जलाईबाई ने ये रचना गाई थी, केसरिया बालम आहोनी पधारो मारे देश। कभी सुनिएगा इस रचना को और बताइएगा कैसा लगा आपको ये बहुत ही खूबसूरत लोकगीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भुजिया के लिए बेहद मशहूर है बीकानेर।

बीकानेर और बीकानेर भुजिया शहर की वैश्विक पहचान बन गई है, मैं भी इसके स्वाद का दीवाना हूँ। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बीकानेर नहीं गया हूँ अभी तक। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान का मुख्य शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, सर्विस के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले 1990 में मैं बीकानेर पहली बार गई थी, क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बीकानेर के रास्ते जैसलमेर गया हूँ और तनोट बॉर्डर भी घुमा हूँ, ऊंट की सवारी और जीप सवारी भी किया हूँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं दुनिया एक श्रोता लिखते हैं कि वाह, फिर से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत बन पड़ेगा जब हम बहुत सारे शहरों के रास्ते न जाने कहां कहां घूमने निकल पड़ेंगे, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो सुरीले सफर के गीतों के बाजार की रौनक खींच लाई हमें और हम आज इस खास कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाने वाले हैं। तो भाई, हमने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि बीकानेर से जुड़ा और कौन सा गीत आपको याद आता है जहां पर बीकानेर का नाम लिया गया है। और वहीं अब हम आपसे एक दूसरा सवाल ये भी छोटा सा पूछेंगे कि ऐसा कौन सा गीत है जिसमें जयपुर का नाम और आया है इस गीत के अलावा भी। तो ये तो थे हमारे छोटे छोटे सवाल जो हम गीतों के बीच में आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे दो सवाल जो हम हर बार आपसे पूछते हैं वो अब आपके सामने हम रख रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि क्या आपके शहर का नाम किसी फिल्मी गीत में आता है, बताइएगा। अगर आता है तो कौन सा गीत है वो, उसका जिक्र भी कीजिएगा। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि उस जगह के बारे में बताइए जो आपको बेहद पसंद है, या आप किसी खास जगह घूमने जाना चाहते हैं, आगे प्लान कर रहे हैं कि वहां जाएंगे और उस खास जगह को देखेंगे, या फिर कोई एक शहर जो आपको बेहद पसंद है उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ एक शहर, एक जगह का नाम, एक गीत, बस इतना ही, ताकि हम बहुत सारे श्रोताओं को शामिल कर सकें। आप कहें तो सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, आप अपने उस शहर का नाम बताइए या उस गीत का जिक्र कीजिए जिसमें आपके शहर का नाम आता है, कौन सा है वो गीत। अगर नहीं आता है तो उदास मत होइए, बता दीजिएगा नहीं आता। और वहीं दूसरा सवाल यह है कि उस जगह के बारे में बताइए जो आपको बेहद पसंद है, या आप जाने वाले हैं या जाकर आ गए हैं, या कोई खास शहर जो आपको बेहद पसंद आता है या आप जिसे बहुत मिस करते हैं, या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि बाकी का जीवन उस खास शहर में बिताएंगे। तो चलिए निकल पड़ते हैं किसी एक और जगह। इस गीत में संगीत है शंकर जयकिशन का, गीत हसरत जयपुरी का है, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है जंगली।

हमारे एक श्रोता ने बताया है कि आपने पूछा कि जयपुर जिस गाने में और आता हो कौन सा गाना है। बिल्कुल सही लिखा आपने, जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले।

एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे सपनों का शहर है मुंबई नगरिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपके साथ भारत दर्शन हो जाएंगे, हम कोलकाता में रहते हैं पर हावड़ा ब्रिज नामक मूवी बनी है। बिल्कुल बनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, दिल्ली की छलांग लगा के सीधे आप जयपुर से कश्मीर पहुंच गए। अरे दिल्ली वालों का दिल न तोड़े। हम किसी का भी दिल नहीं तोड़ते हुजूर, लेकिन हाँ अभी आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा कि कब आपके शहर में हम आएंगे या कब कहां हम पहुंचेंगे, ये तो गीतों के माध्यम से ही पता चलेगा ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जयपुर वो शहर है जहां बार बार जाने का मन करता है और संजोग से हम वहां पहुंच भी जाते हैं। जयपुर के ऐतिहासिक स्थल हवा महल और आमिर का किला बार बार देखने जाती हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना हमारा शहर है। अच्छा क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आगामी 26 सितंबर से 28 नवंबर तक मैं प्रयागराज, वाराणसी और बोधगया की यात्रा पर जाऊंगा। बहुत सुंदर, आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय हो, ऐसा हम आपसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं आता मेरे शहर ग्वालियर का नाम किसी भी गीत में, लेकिन फिल्मों की शूटिंग यहां बहुत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप खंडवा और कोलकाता के नाम लीजिए, आप पूरे भारतवर्ष घूम लिए। जितना सस्ता कोलकाता जमशेदपुर में भोजन मिलता है किसी शहर में नहीं मिलता, मेरे जमशेदपुर में भारत के हर तरह का वहां पर भोजन मिलता है। तो हम आएंगे ना आपके शहर, बिल्कुल आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने बचपन के शहर मुंबई और मेरी कर्मभूमि अजमेर की खासियत बताना चाहूंगा। अजमेर धार्मिक, ऐतिहासिक और शिक्षा के प्रसिद्ध स्कूल और कॉलेज हैं, धार्मिक सौहार्द की नगरी है, पुष्कर के विश्व प्रसिद्ध संसार का एकमात्र बहुत ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, तीर्थस्थल है, ख्वाजा साहब की दरगाह है, राजस्थान की सबसे बड़े संत की चर्च है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है जहां खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कढ़ी कचौड़ी मिलती है और कढ़ी का ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा, सोन हलवा मिलता है। और मुंबई मेरी जान है, लालबाग चा राजा गणपति बप्पा के दर्शन अद्भुत लगते हैं और मुंबई के लिए जितना कहा जाए बहुत कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बड़ा रोचक विषय है, हम कहीं भी रहें अपने नेटिव प्लेस को कभी नहीं भूलते। यूं तो हिन्दी फिल्मी गीतों में बिहार की राजधानी पटना का जिक्र शायद ही कहीं आया हो, लेकिन एक गाना जरूर मेरे जहन में आता है जहां नायिका अपने सजना को ढूंढते ढूंढते पटना पहुंच जाती है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी, जी हां, बम्बई से गई पूना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि

महसूस होता है कि हम जिस शहर में रहते हैं कुछ समय बाद वो शहर हमें अपना सा लगता है। जितने शहर उतने शहर की खासियत, उतने ही उस शहर के स्वाद। यहाँ स्वाद का मतलब खाने से होकर भी खाने से नहीं है, दरअसल उस शहर की हवा में, मिट्टी में, लोगों में एक अलग ही स्वाद, एक अलग ही नजरिया देखने को मिलता है। जीवन के सबसे गहरे सत्य हम कहीं और से नहीं, अपने शहर में रहने वाले लोगों से पाते हैं और वही सच मनुष्य को परिपक्व भी करते हैं। हम कहीं भी जाएं,

0: है ना? तो चलिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म डॉन का ये गीत सुनते हैं और पहुंच जाते हैं कहां, बनारस। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी, और हाँ, हमारे सवालों का जवाब भी देते जाइए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे।

ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के पान।

गोरी बाबा, अरे कैसी गोरी गोरी गोती की दिखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा बिना

रूमी दरवाजा आदि बहुत प्रसिद्ध जगह हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि नहीं, मेरे शहर का नाम किसी भी गीत में नहीं आता। हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि एक बात तो बताना भूल ही गई, मेरे शहर में भी मशहूर फिल्म बंदिनी मेरे भागलपुर में ही इसकी शूटिंग हुई थी। मैं तो लगभग सारे शहरों की सैर, हर एक जगह की कुछ न कुछ खासियत करके लौटी हूं। जैसे बनारस की चाट भी जो है, और लस्सी और पान बेहद पसंद आता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बॉलीवुड में कई बार चीजें संयोग से हिट हो जाती हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फिल्में मिलने, फेमस होने और यहां तक कि फिल्म में होने वाली तमाम बातों से उनके किस्से जुड़े होते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा अमिताभ बच्चन की सबसे फेमस फिल्म डॉन का है, जो अपने समय की बहुत ही क्लासिक फिल्म है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि न जाने आज आपका प्रवाह किन किन शहरों से गुजरते हुए समुद्र में मिलेगा। तो आप सुनिए ना कार्यक्रम, तब आपको पता चलेगा कि कहां कहां से होते हुए हम अंततः मुंबई पहुंच जाएंगे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कभी गांवों की भी चर्चा कीजिएगा, आपके तमाम श्रोता गांवों में बसते हैं और विविध भारती को बहुत समय से पसंद भी करते आए हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, और हर बार हम एक नई थीम पर काम करने का विचार रखते हैं ताकि हमारे श्रोताओं को हर थीम पसंद आए, और ऐसा ही प्रयास आगे भी होगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आशा और विश्वास रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप में से किसी का झुमका तो नहीं गिरा था यहाँ?

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे जबलपुर का शहर का नाम भी एक गीत में आता है, फिल्म जाने मन। इलाहाबाद में पैदा हुई मैं, जबलपुर में पली। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लिए गीत आना भी बाकी है। अच्छा बताइए, दिल्ली के लिए कौन सा गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए, जरा सोचिएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म है हम है राही प्यार के, बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। ये गाना इन्हें पसंद है और इनके शहर का नाम इसमें आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में घूमने का मन है मेरा। एक श्रोता लिखती है कि मैं लखनऊ की हूं, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और ऐतिहासिक नवाबों का शहर है। यहां का चिकन वर्क देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है, भूल भुलैया बड़ा, इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा।

झुमका किरारे बरेली के बाजार में। तो चलिए बरेली की सैर हो गई है। आशा भोसले की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेरा साया, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और मदन मोहन की धुन थी।

0: तो हमारे सवालों के जवाब हमारे श्रोता लगातार हमें दे रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ साथ आप भी इस यात्रा पर निकल चुके हैं। तो एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लग रहा है और मैं तो सबसे खतरनाक शहर से हूं जहां से अजय देवगन अभिनीत प्रकाश झा निर्देशित फिल्म गंगा जल बनी थी भागलपुर से, और अभी पुणे में हूं यानी मुंबई से गई पुणे, पुणे से गई दिल्ली। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी छत्रपति नगर में से 600 किलोमीटर दूर तेलंगाना राज्य को हैदराबाद शहर में बेटी और जमाई सा के यहां आए हुए हैं। अच्छा, हमारा सवाल था कि आप कहीं बाहर हैं शहर से तो बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि आप अपने घर से कहीं बाहर बेटी के घर गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हम पान नहीं कुछ और खिलाएंगे, पोहा जलेबी और समोसा खिलाएंगे और अपने घर का खाना भी, बस आपको आना होगा और अंत में हमें पान भी खिला दीजिएगा ना। आपके ये हाथ का बना खाना तो हम जरूर खाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर में बजने वाले गीतों में देश के विभिन्न शहरों के नाम शामिल हैं। वैसे तो इस प्रोग्राम में प्रादेशिक फिल्मी गीत शामिल नहीं हुआ करते, फिर भी साल 1963 में आई गुजराती फिल्म अखंड सौभाग्यवती की एक कॉमेडी गीत का उल्लेख कर रहा हूं जो आगा और अभिनेत्री शम्मी जी पर फिल्माया गया था और आवासी कमल बारोट और मन्ना डे जी की। इस गीत में गुजरात के कुछ शहर के नाम शामिल थे। गीत के शब्द में हीरोइन कहती है झट जाओ चंदन हार लावो घूंघट नहीं खोलू, हीरो कहते हैं नाना ना नखरा बदा नाना नासो नाद तू मांगवानू नहीं मुके सुमने मुकविश अहमदाबाद। जवाब में हीरोइन कहती है वडोदरे लावो लऊ न करूं सूरत मालेर हार चढ़ावी डाकमा। अरे वाह क्या बात है। और इसके जवाब में हीरो बोलता है कि भावनगर भागी जईश रखड़ीश हूँ राजकोट पण तारी साथे नहीं रहूं मने मंगाविश तू लोटरे। और इस तरह से आप बताते हैं कि इस गीत में गुजरात शहर का नाम आता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत गहराई से इस गीत को ढूंढा है और हमें अवगत कराया है इस नए गीत से। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब और रोचक विषय है, आज हम ऐसे शहरों का आनंद ले रहे हैं जहां कहीं उठकर जाने का मन ही नहीं कर रहा है घर में, और उस पर सभी श्रोताओं के दिलचस्प संदेशों से कार्यक्रम में चार चांद लग जा रहे हैं, हमारी जानकारी में भी इजाफा होता है। सच मानिए बहुत शानदार माहौल बनता है, मन खुश हो जाता है और बाकी का दिन बड़े अच्छे से बीतता है, बहुत बढ़िया, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम सुनने का बहुत मन करता है और आज भारत के उन कोनों की हम सैर कर रहे हैं जहां की हवाओं में ही रोमांस और खूबसूरती और यादों की मधुर धुनें घुली हुई हैं। सभी सहयात्री अच्छी तरह से तैयारी कर लें क्योंकि आज हमारा सफर भारत के सबसे बेहतरीन और रोमांटिक डेस्टिनेशन पर चल रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब चलते हैं कहां, सुनिए इस गीत में, बताइएगा किस ओर ले जाता है ये गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
0: आगरा के लिए हम ये गीत नहीं लेकर आए हैं भाई, दिल्ली वालों के लिए लेकर आए हैं। अभी हमारे श्रोता ने कहा कि अरे आप तो भूली गई और आगे निकल गई। चलिए सुनते हैं इस गीत में, और प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, रेखा भारद्वाज विशाल ददलानी की आवाज है, फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी।

हमारी श्रोता ने कहा है कि हमारा भारत देश इतना विशाल और महान है, जहां अनेकों तीर्थ स्थल और दर्शनीय स्थल हैं, कि उन सबके दर्शन करने के लिए एक जन्म तो कम ही पड़ेगा, मालूम नहीं कितने जन्म लेने होंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि काम करते वक्त ये प्रोग्राम सुनते हैं आज, क्योंकि मेरे राज्य का जो गाना है वह बहुत प्रसिद्ध है। मैं बरेली यूपी से हूं और वह जो गाना मुझे खाने की बताने की जरूरत नहीं है, इतना प्रसिद्ध है। आपने खाने लिखा है लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए ताकि हमें भी पढ़ने में दिक्कत न हो। और आपने लिख भी दिया है कि मेरा साया फिल्म का जो गीत आपने सुनवाया था वहीं से हैं आप। और वैसे तो मैं महाराष्ट्र मुंबई में जन्मी पली बड़ी हूं और मुझे मुंबई शहर बहुत प्यारा लगता है और गांव तो अपना है ही। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं विदेश में भी कई जगह घूमी हूं और आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन में हूं और जर्मनी के कई शहर में भी घूमी हूं। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पाप और पुण्य में जोधपुर का नाम आता है, जो मावे की कचौरी और मिर्ची बड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहीं एक श्रोता लिखती है, जब मैंने पूछा था कि कहीं आपका झुमका तो नहीं गिरा, और उन्होंने लिखा है कि नहीं, मेरा झुमका तो सही सलामत है। अरे, स्त्रियों को, महिलाओं को, नारियों को अपने झुमके की बहुत चिंता रहती है कि कहीं गिर तो नहीं गया, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं बरेली से हूं, मेरा बरेली में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में ये गीत बहुत मशहूर है। वहीं एक श्रोता लिखा है कि मेरा शहर बड़ौदा, जिसे गुजरात की सांस्कृतिक नगरी और कला नगरी भी कहा जाता है, अपने समृद्ध इतिहास, भव्य वास्तुकला और लाजवाब खान पान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपने बहुत बड़े तरीके से अपनी बात कही है, लेकिन हमने आपके शहर का जिक्र कर दिया है।

और अब हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपने कहा कि जो गीत अभी हमने सुनवाया उसमें दिल्ली का जिक्र था, ये बताइए मुझे कि दिल्ली से जुड़ी और हिंदी फिल्मों के नाम कौन कौन से हैं, है ना? जैसे दिल्ली 6, दिल्ली 6 फिल्म है, ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो दिल्ली से जुड़ी हैं, तो उन हिंदी फिल्मों के नाम हमें बताइए। और तब तक हम सैर करते हैं लखनऊ की। नौशाद साहब की धुन, शकील बदायूनी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, और ये फिल्म है पालकी। कभी आप गई लखनऊ?

तो कैसी लगी आपको लखनऊ की सैर? बताइएगा। हालांकि वक्त बहुत कम है और इतनी टिप्पणियां, इतने विचार हमें मिले हैं कि लगता है कैसे सबको पढ़ें। बहुत मन करता है पढ़ने का, लेकिन समय सीमा को हम लाग नहीं सकते। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्य मई इबारत की इबादत से ये बात सामने आती है कि आज हम लोग अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही नहीं, बल्कि मानसिक मनोरंजन हेतु भी देशाटन पर गीतों के माध्यम से सुरीला सफर करने वाले हैं। और इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम का यह वास्तविक नाम आज भली भांति चरितार्थ होगा, जिसके फलस्वरूप हम शहरों में ही नहीं अपितु पहाड़ की भी सैर कर लेंगे। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं शादी के बाद कानपुर आई। साउथ के बहुत से शहर जैसे बेंगलोर, मद्रास, मैसूर, ऊटी, कोडई कैनाल आदि बहुत से शहर इन्होंने देखे हैं। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई ही देखने की और विविध भारती में आने की बहुत अभी ख्वाहिश बाकी है। और भी आपने लिखा है कि दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु, पुणे देख चुका हूं, कोलकाता में 8 साल रह भी चुका हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे इंदौर शहर का नाम भले ही फिल्म में कम आता हो, पर यहाँ जो आता है वो यहीं का हो जाता है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि मैं तो बहुत छोटे शहर पोरबंदर में रहती हूँ, पर इसका नाम बहुत बड़ी हस्ती से जुड़ा है। जी हाँ, समुद्र के किनारे बसा ये ऐतिहासिक शहर महात्मा गांधी का जन्म स्थान है और यही एक कारण काफी है। लोगों को यहाँ आने के लिए दूसरा शहर से समुद्र काफी नजदीक होने के कारण कभी भी बीच का आप

आनंद ले सकते हैं, लुफ्त ले सकते हैं। खाने में यहाँ की खाजली फेमस है, जिसका स्वाद खाजा से मिलता जुलता है। बहुत सुंदर, आपने तो खाने की याद दिला दी हमें। तो अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम आने वाले हैं। कहां? अपने शहर मुंबई, आमची मुंबई, है ना। तो ओपी नैयर का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज है। फिल्म का नाम CID।

0: मेरी जान।
1: जी हाँ, बॉम्बे मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान। तो आप मुंबई आए होंगे और अपने अनुभव किसी अन्य कार्यक्रम में साझा कीजिएगा और हम उसका जिक्र इस कार्यक्रम में जरूर करेंगे। फिलहाल अब बहुत हो गया, खूब घूम लिए है ना, क्योंकि अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि आपके साथ इस सुरीले सफर को और लंबा ले चलें। तो चलिए यहीं तक आज का ही सफर। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी।

दोस्तों नमस्ते। आज त्रिवेणी में हम बात कर रहे हैं लक्ष्य की। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक कला होती है, जो जितना अधिक कार्य कर लेना चाहता है और जो जितना अधिक पढ़ता है उसमें उतनी अधिक जिज्ञासा होती है। उसे यदि सही समय पर प्रश्नों के उत्तर मिल जाए या उसे क्या करना है इनका व्यावहारिक ज्ञान मिल जाए या ढूंढ लें, तो वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, संवार सकता है अपने सपनों को।

अक्सर हमारे दिलो दिमाग में हजारों प्रश्न चलते रहते हैं। हमारे इतने सारे विचारों में द्वंद होना स्वाभाविक है। इनमें अनगिनत विचारों के बीच हमें अपने उन विचारों को चुनना चाहिए जिन पर हमारी जिंदगी निर्भर होगी। वो विचार हैं अपने लक्ष्य का विचार, जो भी हमारा लक्ष्य है उसका विचार, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

हम अपने लक्ष्य के साथ जीना शुरू करें, हमारा लक्ष्य सोने, खाने, उठने, बैठने में शामिल हो और उस लक्ष्य के अनुरूप स्वयं को ढालना शुरू करें और जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गुण चाहिए उन गुणों को अपने अंदर समाहित करें।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर करके ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से

0: 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
1: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
2: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश सिंह राठौर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
4: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया

0: उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
1: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10 से 15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22 से 23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35 से 40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
3: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया यू से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य

0: पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। पहला गीत एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, युगल स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के, फिल्म का नाम धूल का फूल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दो

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में यह था मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था मेरे सनम।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: फिल्म उजाला का गीत सुनिए, गायिका लता मंगेशकर हैं, शब्दकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी के बोल सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज ये
0: था। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कॉस।

0: हेमंत कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जाल। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
4: पैदा हुआ हूँ।
3: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: धरती पर।
1: सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी की बोल, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम दिल दिया दर्द लिया।

0: मोहम्मद रफी का गाया अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम था दिल दिया दर्द लिया।
1: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बुन सारे अपन नरब दसा पड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: तो है कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: और अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है आरती, तो आरती तुमको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सखी सहेली के मंच पर हो तो बहुत बहुत सभी का और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं।
2: बिल्कुल। और मंजरी जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आपने स्वागत किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: क्या बात है, और बताओ कैसे।
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। और अब आज गणेश चतुर्थी का दिन है तो बस उसकी तैयारियां चल रही थी और अब प्रोग्राम कर रहे हैं आप आके।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि इतने दिन से सब लोग ने भक्ति भाव से गणपति जी की पूजा करी है तो धीरे धीरे उनका विदाई का दिन भी करीब आ रहा है। तो मतलब ऐसी बात ही है दिल की गहराइयों से निकली हुई कि मन उदास सा हो जाता।
2: बिल्कुल, जब कोई जाता है ना जो दिल के एकदम करीब हो जाता है वो जब जाता है ना तो थोड़ा सा दिल दुखता तो है ना।
1: बिल्कुल दुखता है,
2: लेकिन फिर हमें ये भी तो आशा रहती है ना कि अब अगले वर्ष वो जल्दी से आएंगे।
1: बिल्कुल, वो कहीं गए नहीं होते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, हम उन्हें रोज याद करते हैं उन्हें, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी अपने को याद कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो अपने सखी सहेली के विषय लेकर आए उन पर बात कर लेते हैं। हाँ। कि जो हमारे विषय है कि उपयोगी टिप्स, यानी घर में जो हमारा एक फ्रिज होता है
2: सबसे समझ लो उसे कहते हैं स्टोरेज रूम कह सकते हैं।
1: हाँ, खाद्य पदार्थों का स्टोरेज रूम होता है, तो उसमें सामान रखने की भी एक कला होती। तो आप सब हमारी बहनें या भाई लोग भी जो भी हैं अपने फ्रिज में आप कैसे सामान को रखती हैं उसकी छोटी छोटी सी बातें संदेश में लिखकर भेज सकते हैं। तो
2: बिल्कुल लिख के भेजिए कि आप एकदम ठूंस देते हैं जल्दी से सब्जी वगैरह लेकर आए, कुछ भी लाए ठूंस दिया और जल्दी से उसको कस के दरवाजे को बंद कर दिया, ऐसा करते हैं या अच्छे तरीके से उसको लगा के रखते हैं। ये आप हमें बताइए आप कैसे रखते हैं। और साथ ही आज हम बात करेंगे समुद्र के बारे में। सोचो एक अंतरिक्ष है एक समुद्र है, मतलब दोनों अथाह है जिनका कोई पार नहीं। और साथ ही इतनी रहस्यमयी दुनिया है ना ये, चाहे अंतरिक्ष हो चाहे समुद्र हो, पता नहीं कब से शायद हम शुरू से ही इसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो समुद्र है बहुत गहराई में जो है उसकी तो वो हमें भी नहीं पता चल पाया है। अभी भी हम चौंक जाते हैं,
1: इतनी अद्भुत है, मतलब अद्भुत दुनिया ही है। बिल्कुल, और उसमें समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो भी बड़ी अद्भुत है। कई सारी चीजें उसमें अंदर छुपी होती है और बहुत गहरा होता है। जैसे हम ही लोग इंसान ही है तो हर इंसान का मन भी बहुत गहरा होता है, वो कब क्या सोच ले कुछ पता नहीं चलता है।
2: कहते हैं ना जो इंसान है वो जो सारे तत्व हैं पृथ्वी के उससे मिलकर बनाए, चाहे वो अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई हो जो उसके मन में छुपी होती हो।
1: बिल्कुल, है ना। तो इस पर बातें करेंगे और मुझे कुछ कहना है। हाँ। कि भाई इसमें आप बताएं कि कब किससे रूठे, ताजा रूठे कि दो महीने पहले एक हफ्ते पहले कि आज सुबह सुबह
2: आरती मंजरी से रूठ गई या मंजरी आरती से रूठ गई।
1: इस तरह के कुछ यादें ताजा करेंगे। और कहानी पद्मश्री की है तो उसमें बात करने

0: हम लोग करने वाले हैं हम लोग उषा बार्ले का, जो पंडवानी लोक गायिका है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल तो हम लोग जैसे मन की बात कर रहे थे कि मन गहरा होता है तो कभी कभी कोई मन को लूटने की भी बात करने लगता है
1: और ना? जब कोई गीत छिड़ जाता है ना तो मन खुश हो जाता है।
0: चलो तो गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा ये गीत था, है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग कहीं समुद्र की सैर के लिए जाते हैं या समुद्र के आसपास जाते हैं तो वहां की जो एक हवा आती है दूर से आती हुई, एक शीतल
1: ठंडी हवा
0: होती है, ठंडी हवा होती है, कुछ समुद्री हवा का अलग एक अलग सी एक सुगंध होती है, तो वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और पानी देखकर तो वैसे भी लगता है कि बस अपने पैर डाल लो उसमें, आगे लहरों के संग थोड़ा सा मस्ती कर लो, है ना। तो हमारे साथी ने एक संदेश में लिखकर भेजा है, तो पहले संदेश उनका ले लेते हैं। लिखते हैं कि लहरों का एक सुहाना संग, अतः नीला विशाल रूप, क्षितिज जहां आकर झुकता है, खिलती जहां सुनहरी धूप, रेत पर आकर रुक जाती है, गीत सुनाती चंचल धार, गहराई में छिपे रहस्य सिखाती समता और प्यार। बहुत सुंदर सी लाइनें आपने भी लिखकर भेजी हैं। और पता है दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जितना जानो उतने ही गहरे होते जाते हैं। और सच पूछो तो हमने

0: से अंतरिक्ष को खोजना उसे जाना शुरू किया, तब से या शायद उससे पहले भी हम जमीन पर सबसे बड़े रहस्य की खोज में लगे हुए हैं। वो रहस्य है अथाह समुद्र, जो आज भी एक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका आती।
1: बिल्कुल, और जो समुद्र हमें ऊपर से शांत और सुंदर दिखाई देता है, उसके नीचे एक पूरी की पूरी अद्भुत दुनिया बसी हुई है, क्योंकि नीचे बहुत कुछ है। नीचे पेड़ पौधे बड़े बड़े, वो अलग तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, सब कुछ है इसके नीचे। और हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, और इस विशाल जलराशि का बड़ा भाग महासागरों में है। यानी अगर धरती को एक बड़ा सा घर माने तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी का ही है।
0: बिल्कुल, और समुद्र के अंदर कितने सारे रत्न भी छुपे हुए हैं, तो वो सब चीजें भी हमें मिल जाती हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इंसान ने चांद तक पहुंचकर वहां कदम रख दिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में, जैसा तुमने पहले भी कहा था, आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं।
1: हाँ।
0: समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियों से लेकर विशाल काय व्हेल तक अनगिनत और लाखों तरह के जीव जंतु शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, जो ऐसे लगेंगे पेड़ पौधे हैं, लेकिन नहीं, जब उनके पास जाओगे तो वो ऐसे फैलते हैं और आपको पकड़ने कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसे समुद्री यात्रा ऐसी आसान नहीं है, बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: और यहाँ कोई अपने रंग बदलकर दुश्मन से बचता है, ऐसे जीव हैं जो, तो कोई अंधेरे में चमकता है, जेलीफिश वगैरह जो रहती है, और कोई इतनी गहराई में रहता है जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, और बहुत ज्यादा जो गहराई होती है वहां पे तो घना अंधेरा ही रहता है, रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। तो समुद्र के कुछ जीवों में बायोल्यूमिनेंसिस, यानी कि अपने शरीर से प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है, जो प्रकाश अपने आप अपना रोशनी कर देते हैं अपने चारों तरफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जरा सोच कर देखो ना आरती, कि चारों तरफ अंधेरा और अचानक कोई समुद्री जीव नीली हरी रोशनी से चमक उठे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे समुद्र के अंदर चारों तरफ मतलब ऐसा लगेगा समुद्र के अंदर आसमान और तारे वहां पर उतर आए, जैसे अंतरिक्ष का एक हिस्सा समुद्र की गहराई में भी बसा हो। इतना ही नहीं, जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने समुद्र के अंदर रंग बिरंगे जंगल की कल्पना की है? समुद्र में मौजूद प्रवाल भित्तियां यानी कोरल्स रीफ्स कुछ ऐसी ही दिखाई देती हैं।
1: बिल्कुल, और जो महत्वपूर्ण आवास है इनके, और लाल पीले नारंगी और कई दूसरे रंगों से सजे हुए ये क्षेत्र जो है वो अनेक समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास बने हुए हैं, और इनके आसपास छोटी बड़ी मछलियां तैरती दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि पानी के अंदर कोई रंगीन शहर बसा हुआ पूरा, जो सिर्फ पानी के जीव रहते हैं जहां पर। और समुद्र की गहराइयों में कोई बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, जिनमें से बहुतों को तो हमने खोज लिया, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी हैं जिनको हमने खोजा भी नहीं, अभी खोज भी नहीं पाए उनको।
0: और देखो, हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं संदेश में कि मैं देश विदेश के कई समुद्रों की सैर कर चुकी हूं, बोट क्रूज और स्टीमर आदि से कई जगह, गोवा, मद्रास, अमेरिका, इजिप्ट, थाईलैंड आदि जगह बहुत घूमी हो। इजिप्ट में तो एक सप्ताह तक स्टीमर पर ही रही, जहां स्टीमर रुकता था वहां की जगह पर उतरकर घूमती थी। कितनी सुंदर सी अपनी यादें इन्होंने ताजा करी हैं। और एक लिखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल के जलमंडल विषय बहुत रोचक है, उष्ण और शीतल सामुद्रिक धाराएं, महादेशीय छज्जा, अंतरीप खाड़ी, सागर, महासागर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वारभाटा आदि अनेक अनुसंधान के विषय बाकी हैं, इन्होंने लिखा। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है।
1: और हम बात कर रहे हैं तो समुद्र की जो गुफाएं हैं वो समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण ही बनती हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर ही विस्फोट होते हैं, अंदर भी होते रहते हैं। और समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें भी हैं, लेकिन ये खूबसूरत दुनिया आज समुद्री तापमान में बदलाव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से प्रभावित ही हो रही है। समुद्र केवल घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने की जगह नहीं है, समुद्र पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है पूरी तरीके से, और जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और समुद्री जीवों के साथ साथ इंसानों के जीवन से भी बहुत गहरा से जुड़ा हुआ है।
0: क्योंकि देखो ना, मौसम से लेकर खाना, व्यापार तक समुद्र का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जहाजों के बिना दुनिया में बहुत सी वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। जहाज तेल का हो, चाहे हो, चाहे गैस, गेहूं, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और कपड़े जैसे वस्तुओं का परिवहन करते हैं। इसीलिए समुद्र को साफ रखना केवल समुद्र की चिंता नहीं, बल्कि हमारे अपने भविष्य की चिंता भी। अगर समुद्र गंदा होता जाएगा तो जो जहाज चल रहे हैं उनके मार्ग में रुकावट आएगी।
1: बिल्कुल,
0: पहली बात तो।
1: सबसे बड़ी चीज है जो समुद्री जीव जंतु हैं, समुद्री जो प्रवाल हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर समुद्र के अंदर के जीव जंतु जब खत्म होने लगेंगे ना, तो पूरे जो पृथ्वी का जो चक्र चलता है ना, वो जीवन चक्र प्रभावित होगा पूरी तरीके से।
0: सही बात है, तो इसलिए उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और आज

0: समुद्र के सामने प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्र के बढ़ते तापमान और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी मौजूद हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। कचरा नदियों और समुद्रों में ना फेंकें। समुद्र तटों को गंदा ना करें और सबसे जरूरी, प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपना साथी समझना पड़ेगा। समुद्र हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक विशाल, जटिल और अद्भुत है।
1: बिल्कुल, और कभी शांत, कभी उग्र और कभी रहस्यमय समुद्र जो है वो प्रकृति के हर रूप को अपने भीतर समेटे हुए है। और यही कारण है कि समुद्र को देखते ही हमें केवल पानी का विस्तार नहीं दिखाई देता बल्कि प्रकृति की विराटता, जीवन की विविधता और उस अनदेखी दुनिया का एहसास भी होता है जिसे जानने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो यात्रा है, वो भी चल रही है।
0: तो चलो इसी के साथ एक गीत का भी आनंद ले लिया जाए।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: तो आरती हाँ। देखो हमारे साथी क्या लिखते बताओ।
2: हाँ, तो हमारे साथी जो लिखते हैं कि समुद्र जीवन पृथ्वी के महासागरों और खारे पानी में रहने वाले पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जो खाद्य जाल का आधार है, जेलीफिश हो गई, ऑक्टोपस है, केकड़ा है, प्रवाल है, बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने लिख के दिए। और साथ ही एक हमारे साथी जो कहते हैं कि समुद्र हमारे ग्रह का दिल है, पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें अधिकांश जो भाग है वो विशाल महासागरों का है। समुद्र केवल पानी का एक भंडार नहीं है बल्कि रहस्यमय जीवन तो अत्यंत आवश्यक दुनिया है। और आज हमने अपने विशाल महासागरों के बारे में जो तलाश किया है तो केवल 5-10% हिस्से को ही हम तलाश कर पाए हैं। और ये बताता है कि समुद्र की गहराई में न जाने कितने रहस्य आज भी दफन है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी ने और भी जानकारी दी है। लिखते हैं कि समुद्र में विशालकाय ब्लू व्हेल, जो इस धरती का सबसे बड़ा जीव है, से लेकर सूक्ष्म प्लैंकटन तक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मछलियां, जेलीफिश, ऑक्टोपस और शार्क जैसी प्रजातियां इसे एक काल्पनिक दुनिया जैसा रूप देती हैं।
2: और साथ ही लिखते हैं कि समुद्र के गहरे हिस्सों जैसे मारियाना ट्रेंच, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, वहां पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां का तापमान 0 के करीब होता है और पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। इसके बावजूद वहां ऐसे बायोल्यूमिनेंट जो जीव होते हैं वो रहते हैं, जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं। मतलब जहां पर पानी की सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच पाती, वहां पर वो जीव अपने आप जगमगाते हैं।
1: बिल्कुल, और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई समुद्र की भी एक रोचक दुनिया है जिसमें तमाम रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें बहुत सी बातें हम जानते हैं और बहुत सी बातों से अनजान भी हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र ही है, जिसमें तरह तरह के जीवों और वनस्पतियों का भंडार है। हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है, इसका 60-80% तक समुद्र ही देता है। समुद्र के अंदर भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसे मिड ओशियन रिट्स कहा जाता है, जो बाहर से नहीं दिखती। इसी तरह समुद्र की गहराई का रहस्य आज तक बना हुआ है। प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी, और समुद्र अद्भुत जीवों की शरण स्थली भी रहा है, जो इतने विशालकाय हैं बड़े बड़े जहाजों को भी रोक लेते हैं। समुद्र से हमें लाभ तो बहुत है, किंतु मानव सभ्यता की विकास यात्रा ने उसे कचरे का एक गोदाम बनाने की ठानी है। ये दुखद है, आने वाले दिनों में भारत समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक भरता हुआ समुद्र में, लिखा है इन्होंने कि भरता समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इससे समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और हमें भी ये एक दिन बर्बादी की गर्त में पहुंचा देगा, इन्होंने लिखा है ऐसा। तो ये चीज का ध्यान रखने वाला है कि हमें अपने समुद्र को साफ भी रखना है।
2: बिल्कुल, और एक साथी हैं जो लिखते हैं कि समुद्र जो कोरल रीफ है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि क्या है ये। तो इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जैसी जगह है जहां लाखों समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं और पानी के नीचे एक बेहद खूबसूरत और रंगीन इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। धरती के लिए महत्व इसका क्या है वो बताते हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है उसका 50% से अधिक हिस्सा समुद्र में रहने वाले पौधों जो वहां पे होते हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के वैश्विक तापमान और मौसम को नियंत्रित करने में भी मुख्य भूमिका को निभाता है जो समुद्र है। और समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो इतनी सुंदर है और रहस्यमयी है कि ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है हमें, तो हमें महासागरों का सम्मान करना होगा और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। समुद्र की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है।
1: बिल्कुल सही कहा। चलो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भुनसारे अपन नरब दस पड़ बेचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: दुबई बानी कुप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कुप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो देखो आरती, अब समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद, फिर हम लोग बातें करेंगे अपनी जो हमारी सखी विशेष हैं उनकी बातें करेंगे, और अंतराल के बाद मिलते हैं फिर।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है आरती, और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अब हम लोग बात करने वाले कहानी पद्मश्री उषा बारले जी के बारे में, जो पंडवानी लोक गायिका हैं। तो कहते हैं लोक कला केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वो तो किसी मिट्टी की अमिट याद होती है, किसी समाज की पहचान होती है, और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवित आवाज होती है। ऐसी ही कलाकार हैं उषा बारले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा पंडवानी गायकी को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों तक पहुंचाया।
1: और 2 मई 1968 में उषा बारले जी का जन्म भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। उनकी पिता का नाम खाम सिंह जांगड़े और माता का नाम धनमत बाई था। बचपन से ही लोक संगीत के प्रति उनका गहरा आकर्षण था। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पंडवानी सीखना शुरू कर दिया था।
0: और सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और खिलौनों की दुनिया में खोए रहते हैं आरती, उस उम्र में एक छोटी सी बच्ची महाभारत की कथाओं और लोक संगीत की दुनिया में अपना रास्ता खोज रही थी। उनकी यही बाल रुचि आगे चलकर उनके जीवन की पहचान बन गई।
1: बिल्कुल। अब जरूरी है ये भी बताना कि पंडवानी गायकी जो होती है वो आखिर है क्या। तो पंडवानी का अर्थ है पांडवों की वाणी या पांडवों की कथा। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें महाभारत की कथाओं को लोक भाषा, संगीत, अभिनय और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
0: और इसमें कलाकार केवल गाता नहीं है, बल्कि कथा के पात्रों और भावनाओं को अपनी आवाज और हाव भाव से जीवंत कर देता है। और इसी कला को उषा बारले ने अपनी आवाज से एक नई ऊर्जा और पहचान दे दी। जब किसी भी कलाकार की प्रशंसा होती है तो उसकी उस ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा में गुरु का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है।
1: बिल्कुल। और उषा बारले ने प्रारंभिक जो प्रशिक्षण था उसके बाद महान पंडवानी कलाकार तीजन बाई से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके मार्गदर्शन ने उषा बारले की कला को और निखारा। पंडवानी की साधना आसान नहीं थी, इसमें केवल सुर और ताल ही नहीं बल्कि उसमें कथा की समझ भी होनी चाहिए, अभिनय होना चाहिए, संवाद, भाव और मंच पर तत्काल प्रस्तुति की क्षमता भी बहुत आवश्यक होती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उषा बारले ने वर्षों की मेहनत से इन सभी पक्षों को अपनी कला का हिस्सा बनाया। उषा बारले के जीवन में कठिन दौर भी आए, जब गृहस्थी चलाने के लिए वो फल बेचा करती थी, लेकिन परिस्थितियां उनकी कला के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकी। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं, बल्कि समय के साथ वही कला उनकी पहचान बनती चली गई।
1: बिल्कुल। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विद्याओं में भी वो पारंगत हैं, और धीरे धीरे उषा बारले की आवाज बड़े मंचों तक पहुंचने लगी। उन्होंने भारत के कई शहरों में पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां दी। इतना ही नहीं, उनकी कला की गूंज विदेशों तक पहुंची, यानी जिस लोक कला की जड़ें छत्तीसगढ़ की मिट्टी में थी उसकी आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी थी।
0: उषा बारले की विशेषता केवल पंडवानी गायन तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश भी लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कई गंभीर बीमारियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में भी अपनी लोक कलाओं का इस्तेमाल किया।
1: बिल्कुल। उषा बारले आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रायपुर की ए ग्रेड कलाकार भी रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी की विभिन्न चैनल्स पर पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां भी दी हैं। वर्षों की साधना और लोक कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें कई सम्मान मिले, और वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया।
0: इतनी गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया।
1: बिल्कुल।
0: तो इस जब हम इनकी कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि हमारे अंदर जो भी कला है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा लें और बाकायदा गुरु के पास जाएं और सीखें। और मेहनत, अनुशासन बहुत जरूरी, लगन होना चाहिए, नियमित अभ्यास होना चाहिए। तो आप छोटे से ही बच्चा अगर शुरुआत कर दे, छोटे से ही बच्चे को आप सिखाना शुरू कर दे तो आगे चल करके बहुत अच्छा आगे जा सकता है।
1: बिल्कुल। आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको निखारेंगे तो आपको उसकी उसकी बारे उसकी उसकी फायदा भी उठाने को मिलेगा फिर।
0: तो चलो सुनते हैं एक गीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती भाई, ये याद रखना बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। बताओ तुम कब किससे रूठी? हमारे साथी ने भी बहुत सारे लिखे हैं संदेश, तुमने जवाब नहीं दिया, हंस के टाल दिया। चलो अच्छा, तुम्हारा बताने का मन नहीं है।
5: नहीं, बताने की नहीं है, मैं बस अपने साथियों के जो कमेंट उन्होंने भेजे ना, उसको पढ़ पढ़ के मैं मन ही मन हंस रही थी कि उन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी हुई है, ऐसे मन अनुभव लिखे हुए हैं।
4: तो हमारे साथी देखो, एक लिखते हैं कि रूठना भी रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन बात इतनी ना बढ़े कि अपनापन ही दूर हो जाए। कभी कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, छोटी सी बात दिल पर लग जाती है, लेकिन शायद रूठने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किससे रूठना है और कब मान जाना है। अपने वही तो होते हैं जिनसे हम नाराज भी हो सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हंसकर बात भी कर लेते हैं। रिश्तों में रूठना रहे, मगर इतना नहीं कि मन में दूरियां बस जाएं। कभी अपनी बात कह दीजिए, कभी सामने वाले की सुन लीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रूठने की क्या जरूरत है, रूठे हैं तो भी मना भी लीजिए।
5: बिल्कुल, क्योंकि ना ये रूठना मनाना तभी अच्छा लगता है, ये छोटी मोटी जब हंसी की नोकझोंक हो। जैसे कि एक हमारे साथी लिखते हैं कि धर्म पत्नी अगर ना रूठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझमें एक काबिलियत है कि मैं कोई ना कोई मनाने वाला फिल्मी गीत सुर में गाकर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी को मना ही लेता हूं, और वो मान जाने के बाद मुझे अदरक इलायची वाली चाय जरूर पिलाती हैं। मतलब ये चाय पीने के लिए गाने गाके
4: मना लेते हैं।
5: बिल्कुल, मना लेते हैं।
4: कितनी अच्छी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी। और एक लिखते हैं कि भाई कब किससे रूठे, ये बड़ा रोचक मुद्दा है। पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। तू गंगा सरी की पावन है।

0: जन जन की मन भावन है, तू हिंदी की आन बान शान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू देश प्रेमियों का सम्मान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू भारतेंद्र की पूजा है, तेरा जैसा नहीं दूजा है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, हम वेद भारती से रूठ जाते जब आप हमारे मनपसंद गाने नहीं चलाते हो, दादी नानी के जमाने के गाने बजाने बजाइए, हमारे गाने नहीं बजाते इसलिए हम वेद भारती से रूठ जाते हैं। भाई वेद भारती रूठने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सारे दिन भर प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें देखिए आप सुनेंगे तो तरह तरह के गाने बजते हैं,
1: नए भी बजते हैं, पुराने भी बजते हैं,
0: सब बजते हैं। हाँ। और आप उनको सुनिए, उनका आनंद लीजिए, अब ऐसे रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना आरती?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कभी कभी तो हम माँ से रूठ जाते हैं, तभी माँ कहती है ऐसे रूठने से काम नहीं होता, रूठने से तनाव आता है, हंसी ठिठोलियां करते रहना चाहिए। भाई बिल्कुल हंसी ठिठोली कीजिए, लेकिन हमारी वेद भारती से जुड़े रहिए और रूठिए मत, गाने आप आनंद लेते रहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना इंसानी फितरत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब हम किसी से रूठते हैं तो असल में हम उससे नफरत नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने हक और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी के इस सफर में ये समझना बेहद जरूरी है कि हम कब, किससे और कितना रूठना चाहिए। हमें गलत इंसान से या गलत वक्त पर रूठा जाए तो रिश्ते सुधरने की बजाय बिखर जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि हम हर राह चलते इंसान से नहीं रूठ सकते, रूठा सिर्फ उसी से जाता है जिससे हमें प्यार पाने की उम्मीद होती है। माता पिता और परिवार, इनसे रूठने में एक अलग ही सुकून है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो हमें मना ही लेंगे। यहाँ रूठना प्यार को बढ़ाता है और जीवनसाथी या पार्टनर प्रेम संबंधों में रूठना मनाना एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप उनके करीब हैं। सच्चा दोस्तों से रूठना केवल एक अधिकार है जो दोस्ती को और गहरा करता है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेज रहे हैं।
1: और साथ ही एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि रूठना रिश्तों की वो डोर है जिसे बहुत संभाल कर खींचना पड़ता है, ज्यादा ढील दी तो रिश्ता बेअसर हो जाएगा और ज्यादा जोर से खींचा तो डोर टूट जाएगी। इसलिए केवल उनसे रूठिए जो आपके मौन का दर्द समझते हों और आपकी खामोशी को पढ़ते ही आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
0: और एक साथी लिखते हैं कि भाई बचपन में मैं अपनी माँ से रूठ जाती थी तो माँ बड़े ही प्यार से मना लिया करती थी, और अब तो रूठना ही भूल गई हूँ, बस मनाने का काम ही कर रही हूँ बस। तो ऐसा रूठना तो चलता रहता है जिंदगी में, देखो हर दिन कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, कभी मतलब किसी का फोन नहीं आया तो रूठ गए, किसी हाँ। ने मैसेज नहीं किया तो रूठ गए,
1: किसी ने हमें कुछ मिठाई नहीं खिलाई तो हम रूठ गए, है ना। एक हमारे साथी हैं मंजरी जो लिखते हैं कि कब किससे रूठें, किसी से रूठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, मनाने के लिए गाना गाना चाहिए। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे हों सनम तो फिर क्या है, हमको मनाना आता है, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, यूं रूठो ना हसीना, इन्होंने सारे फिल्मों की रूठो वाली जो लाइन थी वो लिख के भेज दिए।
0: जब इन्होंने गाने भेज ही दिए हैं तो हम क्यों ना इनको एक गाना ही सुना
1: बिल्कुल सुनवा देते हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती हमारे साथी क्या लिखते हैं?
3: हाँ, हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि किससे रूठे, रिश्तों में नाराजगी की समझ होनी चाहिए और साथ ही रिश्तों में नाराजगी की समझ कि रूठना और मनाना मानवीय रिश्तों के सबसे खूबसूरत और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। नाराजगी इस बात का प्रमाण होती है कि हम उस रिश्ते में पूरी तरह से निवेशित हैं, यानी कि उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन के इस भागदौड़ में हमें कब किससे और कितना रूठना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या हर बात पर रूठना रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है, जबकि सही समय पर व्यक्त की गई नाराजगी रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। तो हम किससे रूठते हैं? हम कभी किसी अजनबी से नहीं रूठते। रूठने का अधिकार हम सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें हम अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जैसे वो माता पिता हैं, जीवन साथी है, भाई बहन है या कोई बेहद करीबी दोस्त। तो रूठने के पीछे एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें प्यार से मनाएगा और ये एक तरीके का मूक संवाद है। तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, तो ये एक समझ लीजिए उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है।
2: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, अपनों से तब रूठना चाहिए जब सामने वाला आपकी खामोशी या आपकी कीमत समझे, लेकिन बेवजह या छोटी छोटी सी बातों पर किसी से नहीं रूठना चाहिए। किसी अपने से अनबन होने पर उन्हें थोड़ा शांत होने का समय दें, गुस्सा कम होने पर प्यार से अपनी बात रखें, रिश्तों में अहंकार न आने दें, क्योंकि मनाना भी प्यार का एक हिस्सा है। और भी आजकल डिजिटल दुनिया में रूठना कोई मायने नहीं रखता है, लोगों से मिलना जुलना जो कम हो गया है तो क्या पता चलेगा।
3: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये सोचने से पहले कि किससे रूठें, ये जरूर सोच लीजिए कि कहीं हमारी नाराजगी के कारण कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। रिश्तों में जीत रूठने की नहीं बल्कि साथ निभाने की होती है। जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब याद बन जाए और कौन सा अपना कब दूर चला जाए। इसलिए जहां प्रेम है वहां अहंकार को थोड़ा पीछे रखिए, जहां अपनापन है वहां छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए।
2: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई विचार, जीवन, रिश्ते और हमारी भावनाओं की गहराइयों को छूता है। रूठना एक ऐसी भावना है जो केवल वहीं पैदा होती है जहां कोई गहरा रिश्ता या हक होता है। हम हर किसी से नहीं रूठते और ना ही कोई हमें मना सकता है। रूठने में एक मासूमियत और प्यार की मांग होती है। जब हमारा कोई बहुत करीबी हमारी बात नहीं समझ पाता या हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है तब रूठना स्वाभाविक है। रूठना प्रेम की एक अनकही भाषा है। ये तभी तक सुंदर है जब तक रिश्तों में दूरियां ना बढ़ाएं, बल्कि मनाने के बाद प्यार को और भी गहरा

0: तो अब हम आ जाते हैं कि फ्रिज में हम सामान कैसे रखें। तो मंजरी एक हमारे साथी जो लिख के भेज रही हैं कि मैंने तो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं और मिर्च अदरक जैसे सामान होते हैं उसमें ही स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। डाइनिंग टेबल का मैट जो पुराना हो जाता है उसे फ्रिज के रैक पर बिछा देती हूँ ताकि उसमें कुछ भी गिरे तो आसानी से साफ किया जा सके। वैसे बना बनाया खाना मैं फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। बाय चांस कभी रखना हो तो अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ और हर 2 से 3 दिन में चेक करती रहती हूँ कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल। और फ्रिज में सामान रखते समय बचा हुआ भोजन बंद डब्बों में रखना चाहिए, सब्जियों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए, दूध दही से ढककर रखना चाहिए, पनीर को खुले बर्तन में पानी में रखना चाहिए। हमारे साथी ने लिखती है इस तरह की बातें। और सब्जियों को भी अलग ड्रॉअर में रखें, फल पत्तेदार सब्जियां पेपर टॉवल में लपेटें, दूध और डेयरी प्रोडक्ट को मिडिल शेल्फ पर रखें और फ्रिज को ज्यादा नहीं भरना चाहिए, ऐसी बातें लिख रहे हैं हमारे साथी। और लिखते हैं कि भाई जो

0: भी बचा हुआ सब्जी, दूध, बचा हुआ खाना और कई तरह की चीजें रखते हैं, तो फ्रिज में सामान रखने का मकसद ही है कि खाने पीने को की चीजों को लंबे समय तक स्टोर करना। और गर्मी में चीजें बाहर रखने से खराब जाती, जबकि फ्रिज में कई दिनों तक चीजों को स्टोर किया जा सकता है। फल और सब्जियों को अलग अलग रखें। फ्रिज में फल और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी खराब जाते हैं, और कई फल जो है वो कई तरह की गैसेस छोड़ते हैं, तो सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं, इसलिए इनको अलग अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
1: ठीक है, तो एक हमारे साथी तो जो लिखती हैं कि फ्रिज में सामान कैसे रखें, ये बहुत संजीदा मुद्दा है। तो फ्रिज तो होना चाहिए, इसमें दूध दही रख सकते हैं, हमारी माँ तो उसमें सब्जियां ठूस ठूस कर रख देती हैं, कभी कभी मिठाई की पेटी भी उसमें रख देती हैं, नानी मौसी को कुछ निकालना हो तो फ्रिज से ही निकालना होता है, कभी कभी तो फ्रिज में से पानी बाहर निकल आता है, इससे मम्मी गुस्सा हो जाती है और बहन को डांटने लगती है। तो उस हिसाब से आप रखिए, एक एक सेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान रखिए और उसको चेक करते रहिए और सफाई करते रहिए।
0: जी।

0: तो देखो बात करते करते समय बिल्कुल समाप्त पर हो गया है,
1: दूर
0: तो,
1: पास हाँ, सारे श्रोता रहते ही हैं,
0: तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा और
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातें। देश के कोने कोने से हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं के कॉल्स आते हैं और इस तरह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनके बारे में, उनके इलाके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और विविध भारती के बारे में उनकी क्या राय है इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत सीताराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ सर।
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: सर मैं बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ सर।
0: बाबूलाल जी क्या करते हैं भोपाल में?
1: जी सैलून की दुकान है सर।
0: इस साल भोपाल में बारिश किस तरह की हुई है?
1: बारिश तो बहुत अच्छी हुई साहब, बढ़िया एकदम टनाटन और अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ना बाढ़ को प्रकोप हुआ ज्यादा, कुछ भी नहीं है, नाले तूफान ज्यादा उफान पे भी नहीं आया।
0: अच्छा, और भदभदा के गेट कितनी बार खुले इस बार?
1: 2-3 बार खुले सर।
0: मतलब बारिश बहुत अच्छी हुई?
1: जी जी, लेवल से पानी हुआ है, गेट तो अंदाज से खुले सर।
0: और आप कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने गए इस बारिश में?
1: इस बारिश में कहीं भी नहीं गए सर।
0: अच्छा, काम में बिजी रहे।
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मूवी है तुमसे अच्छा कौन है,
0: गाने की बोल।
1: आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी यूनुस खान जी, उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलजार साहब?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं यूनुस खान सर?
0: बस बढ़िया हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूंगा, मैं जैके पार फिल्म का आप आने के बोल रहे थे, कौन दिशा में लेके चला रहे बटुआ।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की। रविंद्र जैन का संगीत, उन्हीं का गाना है।
1: हाँ जी।
0: और ये फिल्म कितनी बार देखी है आपने?
1: ये फिल्म मैंने 10 बार देखी है।
0: अच्छा, और गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ जी, गुंजा का रोल बहुत अच्छा लगता है, गुंजा और चंदन का रोल। जब आखिरी माँ आ जाती है ना, आखिरी माँ का गुंजा का निकाह चंदन से हो जाता है, गुंजा की शादी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पर। आपको सुनवाती है नदिया की पार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं परमार जी?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी। पहली बार आपसे ही बात हुई थी, आज पीछे आपसे बात करने का मौका मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है सर जी।
0: अरे वाह, हमें भी अच्छा लग रहा है। कब हुई थी पिछली बार बात हमारी?
1: सर 1.5 साल करीब हो गए सर।
0: अरे बाप रे, इतना ज्यादा वक्त हो गया।
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, सीहोर की क्या हालचाल है, कितनी बारिश हो रही है?
1: जी सर, हमारे इधर तो अच्छी बारिश हो चुकी है, 33 इंच बारिश हुई है, परखे 41 हुई थी पिछले साल, और अभी मौसम धूप खिली हुई है सर। बरसात का मौसम होता है लेकिन बरसात अभी गिरी नहीं है सर हमारे इधर।
0: पूरे देश में सीहोर अपने शानदार गेहूं के लिए जाना जाता है, कौन कौन सी गेहूं की किस्में होती है वहाँ पर?
1: जी सर, हमारे इधर है ना 1544 लोकबन और 8713, और जो सरबती गेहूँ रहते हैं ना सर, उसमें पूरे भारत में सीहोर मंडी का गेहूँ और हमारे क्षेत्र का गेहूँ सर।
0: बहुत ज्यादा तादाद में उधर गेहूँ होता है?
1: जी हाँ सर, बहुत ज्यादा तादाद में गेहूँ होता है, और खाने की किस्म बहुत जोरदार रहती है हमारे क्षेत्र में सर।
0: अच्छा
1: जी,
0: मतलब जरा विस्तार से बताएं
1: सर। जो लोकबंद गेहूं है या 1544 है, इनकी रोटी बहुत अच्छी आती है सर, और जो सरबती गेहूं जिसमें पूरे भारत में हमारे क्षेत्र का नाम चलता है, उसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है सर, सुबह से शाम तक कड़क नहीं होती।
0: अच्छा क्या बात है, आपने देखिए कितने बारीकी से हमें ये फर्क बताया है। कितनी मेहनत गेहूं के खेतों में सीहोर वाले लोग करते हैं? बहुत ज्यादा मेहनत का काम है खेतों में काम करना, है ना?
1: जी हाँ सर, मेहनत का तो काम है, हम भी किसान है सर, किसानी करते हैं
0: जी। गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है आपके खेतों में?
1: जी सर, अभी हमने बरसात की फसल में मक्का और सोयाबीन लगाए हैं सर जी, और 1 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सर जी।
0: अच्छा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, क्या जमीन पर इसका कुछ असर पड़ता है सोयाबीन उगाने का?
1: नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जमीन में ज्यादा कमजोर जमीन नहीं होती सोयाबीन से सर। मक्का का ज्यादातर लगातार बोएंगे तो कमजोर जमीन होती, बाकी सोयाबीन से जमीन कमजोर नहीं होती सर।
0: तो आप अदला बदली करके फसलें उगाते रहते हैं?
1: जी हाँ सर, हम इधर से इधर पलटी कर देते हैं, तो फसल उसमें अच्छी भी आती है और पैदावार भी बढ़ती है सर।
0: और खाद का इस्तेमाल कितना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल?
1: जी सर, हमारे पास कुछ मवेशियाँ भी हैं सर, तो हम पहले तो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कम पड़ता है तो हम रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलता है सर।
0: और रेडियो आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर विविध भारती?
1: जी सर, विविध भारती तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ सर जी, मेरी 8 साल उम्र थी जब से मैं सुन रहा हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: सर आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है, और गाने के बोल हैं, मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, ये वाला किस सुनना है सर जी?
0: आपने कहा और हमने सुनाया आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, मैं सुशील कुमार बोल रहा सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव श्यामपुर, जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर।
0: अच्छा अच्छा, क्या हालचाल है आपके, बताइए।
1: ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। आज पहली बार मेरी कॉल लगी है सर।
0: अच्छा, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज पहली बार आपकी कॉल लगी है।
1: हाँ जी।
0: अब बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
0: अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरे को एक गीत की फरमाइश है जी, वो है जी एक प्यार का नगमा है जी।
0: क्या बात है, शोर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: यूनुस खान सर को प्यार भरी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, आपका पुराना श्रोता।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर, पहले भी आपसे काफी बार बात हुई है।
0: अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: सर गाना है आज नागिन फिल्म से।
0: कौन सी वाली नागिन?
1: ये सर सुनील दत्त वाली।
0: अच्छा,
1: उसमें सर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: क्या बात है, ये जो नागिन फिल्म है, इस फिल्म को देखने में लोग डरते थे और सीटों के नीचे नजर डाला करते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया।
1: हाँ जी सर, जब इसकी बीन वगैरह बजती थी ना इसमें,
0: हाँ,
1: तो डर जाते थे हम।
0: कौन सी टॉकीज में देखी थी ये फिल्म?
1: टॉकीज में तो सर मैंने टीवी में ही देखी है ये।
0: अच्छा अच्छा, विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती का सर एक तो 12 बजे आता है जिसमें आप गाने सुनाते हैं सदाबहार नगमे, और 1 बजे से आता है आपका, वो भी सुनता हूँ। और हेलो फरमाइश तो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था, बहुत समय बाद कॉल लगी है।
0: देखिए पूरे देश के श्रोता लगातार कॉल करते हैं तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से कॉल लगता है।
1: और सर आप तो हमारे फेवरेट आरजे हैं,
0: बहुत बहुत
1: बात करने के लिए तो बहुत दिन से कोशिश कर रहा था मैं। काफी समय पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे 2-3 बार हो चुकी है आपसे पहले, शायद आपको याद हो।
0: जी जी जी, तो बताइए कि इस समय विविध भारती के इन दिनों में सुने कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा यादगार लगे हैं?
1: एक तो आपका उजाले उनकी यादों के आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और सखी सहेली वगैरह ये भी सुनते हैं हम। और दोपहर में एक बजे से आता है जो आप शब्द नहीं देते हैं हमें, उसमें भी कई बार मैं भाग लेता हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपको सुनवाते हैं नागिन फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: हाँ जी, कैसे हैं हैदर जी आप?
1: बस बढ़िया है, खैरियत में है सर एकदम।
0: बिल्कुल दुआएं, बताइए।
1: फिल्म का नाम है धरती।
0: अच्छा,
1: ये रफी साहब की आवाज में गीत है। खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा।
0: बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है भाई आपने। जी बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है आपका शहर?
1: सर रतलाम से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और हम तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं सर।
0: जी जी।
1: तो अभी सोयाबीन की फसल मतलब लगभग कटने वाली है, जिसके बाद गेहूं और लहसुन वगैरह की खेती करेंगे सर, मटर वगैरह की।
0: जी जी जी।
1: और सर आकाशवाणी से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ।
0: बहुत खुशी की बात है। और लगातार विविध भारती सुनते हैं आप?
1: विविध भारती तो सर मतलब मेरे पास रेडियो है, दो रेडियो रहते हैं, मेरे खेत पे भी रहता है और घर पे भी चलता ही रहता है।
0: अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मुझे ये बताइए कि नए गानों की बजाय पुराने गाने लोगों को क्यों पसंद आते हैं?
1: सर नए गानों में जो म्यूजिक है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा अलग ढंग का है, और पहले के जो गीतकार थे, शायर थे, गायक कलाकार थे, उनका क्या कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए पूरी करते हैं इस बातचीत को और आपको सुनवाते हैं धरती फिल्म का ये गाना आपके लिए।

0: हेलो फरमाइश
1: यूनुस भाई, ठीक हो आप? सर
0: जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: बिलाल अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: बिलाल अहमद साहब, कश्मीर में कहाँ हैं आप?
1: हम डिस्ट्रिक्ट बड़गांव है, गांव है गोंडीपना।
0: अच्छा, उस इलाके की क्या खासियत है?
1: यहाँ सर ये सेबू की दरख्त है।
0: अच्छा,
1: बहुत हाँ।
0: और वादी कश्मीर में विविध भारती किस तरह सुनाई देती है और कितना ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं?
1: सर हम बहुत पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर से बाहर के लोग जब कश्मीर घूमने आते हैं तो वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पर जाते हैं। कश्मीर के लोग कहाँ घूमने जाते हैं?
1: कश्मीर के लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्री में बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: नहीं, मेरा मकसद था कश्मीर के लोग कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं?
1: यहाँ भी जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके गांव में किस तरह का मौसम है?
1: अभी तो मौसम अच्छा है, अभी मौसम सर्मा आने वाला है तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल होते हैं, तो अभी तो ठीक मौसम है अभी।
0: जी, वैसे इन दिनों में टूरिस्ट किस तरह से आ रहे हैं, कितनी तादाद है?
1: बहुत टूरिस्ट अभी भी आते हैं, दूध पथरी है यहाँ, हमारा वो इलाका है, वह हमें नजदीक है इस गांव से, बहुत टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं, अभी गुलमर्ग भी आते हैं, सोनमर्ग, वैरनाग।
0: जी, मौसम की पहली बर्फबारी हो गई हमने सुना है।
1: ना अभी बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा मौसम आलूदा रहते हैं लेकिन बहुत धूप है कल से।
0: जी जी जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम यूनुस भाई वो गाना है ना, दिल दिया है जान दिया ए वतन तेरे लिए,
0: कर्मा फिल्म का ये गाना है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, सुभाष घई की ये फिल्म थी। आपकी नजर वादी कश्मीर में ये गाना किया जा रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: गोपाल बोल रहा हूँ मैं, ग्राम ककवासा से।
0: अच्छा, ये ककवासा कहाँ पड़ा भाई?
1: ये ककवासा अपने जी है ना, ये भोपाल के पास में है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, कौन सी वाली रोड पर?
1: जी अपना है ना वो जामनेर वाली जी रोड गए, यहाँ पर ही है जी, पास में पड़ता है अपना गाँव।
0: अच्छा, तो बताइए आपके गाँव की क्या हालत है?
1: गाँव की हालत बढ़िया है, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन बाद, अभी तो क्योंकि फसल भी आने वाली है, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: तो बारिश तो 1 महीना लेट चल रही है, हमने सुनो।
1: हाँ लेट ही चल रही है अभी।
0: अच्छा, बाकी गांव के हालचाल कहाँ है?
1: गांव की हालचाल तो बढ़िया है जी, मान लीजिए अभी फसल कटेगी, नवरात्रि भी आने वाली है।
0: हाँ, तो तैयारियां चल रही?
1: तैयारी करेंगे, अभी तो नहीं चल रही है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा
1: सर जी, पहली बार बात हो रही है, यूनुस खान जी बोल रहे हैं ना?
0: हाँ, यूनुस खान बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा हमें भी। अच्छा बताइए, किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सिर्फ तुम फिल्म का सुनना है, वो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं जी वाला, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में।
0: क्या बात है, आपको तो सब याद है, बहुत रेडियो सुनते हैं आप।
1: हाँ सुनते हैं हम तो पूरे कार्यक्रम, जो बहुत सालों से सुनता, पहले आता था वो सुपर हिट आता था सदाबहार नगमे, मन चाहे गीत भी आते थे पहले 1:30 बजे से, वो बहुत सालों का रेडियो था तो वो रेडियो पे सुनते थे पहले तो।
0: और अभी?
1: अभी मोबाइल ऐप पे चल रहा है अभी जी, मान लीजिए।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप पे बहुत ही अच्छा रहता है, एक बटन दबाओ और रेडियो चालू हो गया।
1: जी सर जी, विविध भारती अवरा तो चलता ही रहता है जी, मान लीजिए सभी कार्यक्रम आपके चलते ही रहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हाजी बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: याराना फिल्म का गीत है सर, तेरे जैसा यार कहाँ, ये गीत सुना है सर आज।
0: अपने किस दोस्त की नजर कर रहे हैं?
1: मेरे तो दोस्त वैसे तो बहुत है, सब छोटा लोग मेरे दोस्ती है सर। किसका
0: अच्छा,
1: नाम ले?
0: ऐसा सबसे पुराना दोस्त कौन है आपका, बचपन का दोस्त?
1: बचपन का दोस्त तो अभी दवाखाने में एडमिट है सर, एक्सीडेंट हो गया उनका।
0: अरे अरे अरे, तो आपको तो बहुत फिक्र होगी उनकी।
1: सर अभी उनको ही फोन लगा रहा था, लेकिन हेलो फरमाइश में फोन लगा, बहुत सालों के बाद फोन लगा मेरा।
0: बहुत साल, मतलब कितने साल हो गए?
1: मैं कम से कम 1995 से रेडियो सुन रहा
0: जी,
1: तब से फोन लगा, लेकिन लगा भी नहीं, आज तक नहीं फोन लगा मुझे।
0: आज पहली बार फोन लगाई, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर।
1: हाँ सर, बहुत खुशी की बात, इतनी खुशी हो गई कि मैंने फिल्म का नाम भी नहीं बता सकता था, लेकिन वैसे भी याद आ गया इसलिए बोल दिया।
0: क्या बढ़िया बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो दोस्त बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनिए याराना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान की कृपा से, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा विजय पथ, तो उसमें गाना है राहों में उनसे मुलाकात।
0: वाह, ये तो अजय देवगन का गाना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और तब्बू का गाना है।
1: हाँ सर।
0: कुछ याद आता है ये फिल्म कब कहाँ देखी थी?
1: सर जी मैंने सबसे पहले फिल्म टॉकीज में देखी थी 2018 में।
0: अरे बाप रे, ये सब भी याद है आपको?
1: हाँ सर बिल्कुल। और एक साल से सर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सर आपसे मेरी बात हो, आज जाके मेरी उम्मीद पूरी हुई है सर।
0: बिल्कुल बात हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरी करते हैं बातचीत, आपको सुनवाते हैं विजय पथ फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश।
0: अच्छा, बताइए बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा सर, आपके प्रोग्राम से लगातार जुड़ाव रखते हैं, मन चाहे प्रोग्राम में इतनी शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियां देते हैं सर, बेहद ही लाजवाब प्रोग्राम होता है मन चाहे गीत और विविध भारती के कार्यक्रम जितने भी आते हैं सर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुतियों के साथ आपका प्रसारण आता है सर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरिया में किस चीज की खदानें हैं?
1: सर यहाँ पे कोयला खदाने हैं सर यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस समय, और कोयला की उत्खनन हमेशा यहाँ पे जारी रहती है सर।
0: अच्छा, वहाँ विविध भारती किस तरह सुनाई देता है?
1: डीटीएच के माध्यम से प्रसारण आता है, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण आता है, FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी शेड्यूल के माध्यम से प्रसारण आता है सर। बहुत ही अच्छी उन्नति तकनीकों के साथ आपका प्रसारण स्पष्ट रूप से पहुंच पाता है सर।
0: अच्छा, और बहुत ही प्यारा सुंदर प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इलाका है आपका?
1: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है सर, हरियालियाँ चारों तरफ है, और आपका प्रसारण बहुत ही सुमधुर आवाज के साथ पहुँचता है और पूरे परिवार का आनंद उठाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सेवा विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के माध्यम से।
0: वाह, आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज की टू मूवी का गाना है चाहूं मैं आना।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके। पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और आपको उमरिया में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे से। दो टेलीफोन नंबर है हमारे 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002462। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं उनसे हम विनम्र निवेदन ये करेंगे कि वो कृपया हमें आगामी 2 माह तक फोन न करें ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं, आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। आज की सभा में शेष मुखरी कार्यक्रम, उनका प्रसारण समय।

कुछ ही पलों में हमारे युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। प्रायोजक कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। किसान वाणी आप सुनेंगे जयपुर से 7 बजे।

ट्रेन की डेली हाइलाइट्स आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप रात्रि 10:20 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से 6:30 पर, जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम 7:30 पर।

एक नजर कल की प्रातःकालीन सभा की तरफ। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रातः 6 बजे, 6:05 पर चिंतन, इसी के पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे।

रामचरित मानस गान का समय रहेगा 6:30 पर। खेती में बात 6:45 पर। लोक भजन 6:50 पर।

वातायन आप सुनेंगे 7:20 पर। कार्यक्रम कुछ दिल से आप सुन पाएंगे 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत 8:45 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 9:30 पर। सुगम संगीत का आनंद आप लेंगे 9:10 पर। 11:00 भी आप सुन सकते हैं। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 11:30 पर। समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से प्रातः 8:00। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से 9:00।

विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे 7:30 पर प्रातः 10 बजे, दिन के 12 बजे के बाद भी आप विविध भारती सुन सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न किया।

का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में, जो है आस्था, संकल्प और एकता का पर्व। दोस्तों, भारत विभिन्न विविध परंपराओं और त्योहारों की भूमि है। इन्हीं पर्वों में से एक है अनंत चतुर्दशी, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का एक विशेष महत्व गणेश उत्सव से भी जुड़ा है। गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाले गणेश उत्सव का समापन इसी दिन गणपति विसर्जन के साथ होता है। ढोल, नगाड़ों और भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु गणपति बापा को विदाई देते हुए अगले वर्ष पुनः आने की कामना करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन आस्था, धैर्य और सकारात्मक सोच हमें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। आइए इस अनंत चतुर्दशी पर हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को विदा करें और प्रेम, सद्भावना तथा मानवता को अपने जीवन में स्थान दें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं गीत व संदेश।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और खास विषय पर, जो है विश्व पर्यटन दिवस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना नहीं है, बल्कि नई दुनिया को करीब से जानने का एक खूबसूरत माध्यम है। दोस्तों, हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पर्यटन के महत्व और समाज, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत की बात करें तो हमारा देश पर्यटन की दृष्टि से बेहद समृद्ध है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़े, समुद्र के खूबसूरत तट हैं, ऐतिहासिक किले और स्मारक हैं, वन्य जीव अभयारण्य और अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल हैं। राजस्थान की रंग बिरंगे संस्कृति हो, कश्मीर की वादियां, केरल की प्राकृतिक सुंदरता या उत्तर पूर्व की अनोखी परंपराएं, हर क्षेत्र अपनी एक अलग कहानी कहता है। पर्यटन हमें केवल खूबसूरत स्थानों से परिचित नहीं कराता, बल्कि अलग अलग भाषाओं, खानपान, परंपराओं और जीवन शैलियों को समझने का अवसर भी देता है। इससे हमारे भीतर विविधता के प्रति सम्मान और एकता की भावना मजबूत होती है। आज के समय में हमें पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ अपनाने की भी जरूरत है। यात्रा करते समय प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, ऐतिहासिक धरोहर को

0: सुरक्षित रखे और स्थानीय लोगों तथा उनकी संस्कृति का सम्मान करे। तो इस पर्यटन दिवस पर क्यों न हम यह संकल्प ले कि जब भी यात्रा करेंगे केवल यादें लेकर लौटेंगे, प्रकृति और संस्कृति को नुकसान पहुंचाकर नहीं। दोस्तों, इस प्यारे से विषय के साथ कार्यक्रम में आगे सुनते हैं गीत व संदेश।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, इस गीत के साथ हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में अगले विषय की। दोस्तों, अगला विषय है स्वस्थ जीवन के लिए स्क्रीन टाइम घटाएं और खेल बढ़ाएं। दोस्तों, आज मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक हम कई काम स्क्रीन के माध्यम से करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा स्क्रीन पर समय बिताने से हमारे दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों के लिए समय कम हो जाता है। पहले बच्चे और युवा खाली समय में मैदान में खेलते थे, साइकिल चलाते थे और दोस्तों के साथ समय बिताते थे। वहीं आज के समय में अक्सर मोबाइल की स्क्रीन पर बीत जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम तकनीकी का उपयोग करें, लेकिन उसका संतुलन बनाए रखें। हम अपने दिन में कुछ छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, जैसे बिना जरूरत बार बार

मोबाइल देखने से बचे, भोजन करते समय स्क्रीन से दूर रखे और मनोरंजन के लिए स्क्रीन के बजाय कुछ समय आउटडोर गतिविधियों में बिताएं। खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन खेल शरीर को सक्रिय रखने के साथ साथ अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और टीम बनाए या भी टीम भावना भी विकसित करते हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग या कोई भी पसंदीदा खेल खेला जा सकता है। टहलना और योगा जैसी गतिविधियां भी दिनचर्या में शामिल की जा सकती है। दोस्तों, आज से हम एक छोटा सा संकल्प लें, स्क्रीन का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करेंगे। हर दिन कुछ समय खेल या शारीरिक गतिविधियों में जरूर निकालेंगे, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए सिर्फ तकनीक से जुड़ना नहीं बल्कि अपने शरीर और प्रकृति से जुड़ना भी जरूरी है। याद रखिए, स्किन क्रम होगी, मैदान बढ़ेगा तो स्वास्थ्य भी खिलेगा और जीवन भी। इसी संदेश के साथ आप सभी स्वस्थ रहे, सक्रिय रहे और खुश रहे। और कार्यक्रम में सुनते हैं आगे गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो चला है कार्यक्रम युवाणी समाप्त करने का। इजाजत दीजिए आपके दोस्त शिफाली कलाल को कार्यक्रम युवाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया अपना देश फिल्म का गीत। तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने, रचनाकार हैं आनंद बख्शी।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: अकेले हम अकेले तुम। अब सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की, बोल मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत अनु मलिक का।

अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मचरू सुल्तानपुरी ने।

0: कैसे छोड़ दे
1: हम किसी से कम नहीं। अभी आपने इस फिल्म में किशोर कुमार और आशा भोसले को सुना।

अभी आपने इस फिल्म में एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आनंद मिलन ने। तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे 6:05 से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा, यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म, इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देशभर में आयोजित परीक्षा में कुल लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर

0: को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद ने स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट से 23,063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में जय कुमार, अंशा बाबू, मानू टीएस और रशदीप कौर की मिक्स टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में अभय सिंह और वीर चोटरानी पुरुष सिंगल्स, तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेबल टेनिस में मानुष शाह पुरुष सिंगल्स, श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास महिला सिंगल्स और दिया चिताले तथा यशस्विनी घोरपड़े महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और माहे और मराठवाड़ा में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए नुसरत फतेह अली खां के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत फिल्म है और प्यार हो गया।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।

0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
2: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। सनम तेरी कसम ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। संगीत आरडी बर्मन का, बोल गुलशन बावरा के।

अभी आपने किशोर कुमार को सनम तेरी कसम इस फिल्म में सुना। अजब प्रेम की गजब कहानी। लीजिए इस फिल्म में सुनिए आतिफ असलम और अलीशा चेनॉय को आशीष पंडित के लिखे इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भुनसारे अपन नरब दशा पड़ बेचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: दुबई वाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन मैं उस ग्वाला किस्म को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम के अंत में सुनिए सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में योगेश का लिखा गीत, आवाजें आशा भोसले और यशुदास की फिल्म का नाम छोटी सी बात।

0: छोटी सी बात। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। इसके साथ ही तराने नए पुराने ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। 6:30 होने को लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
2: समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को परम धर्म और कर्तव्य बताया। कहा, सेवा भावना ही देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन सकती है। राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों की आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया पूरी। आज वार्ड पंचों और सरपंचों की लॉटरी निकाली गई। RGHS में प्री ऑथोराइजेशन व्यवस्था लागू करने से क्लेम में 47% की कमी आई। और प्रदेश में मॉनसून की विदाई का दौर शुरू होने के साथ ही गर्मी के तेवर तीखे। कई स्थानों पर दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा है और हर व्यक्ति में सेवा भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेवा परम धर्म है, सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन सकती है।
3: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
2: श्री मोदी ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है

तो जनहितकारी योजनाएं सामने आती हैं और इन्हीं कल्याणकारी योजनाओं से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। प्रधानमंत्री ने यात्रा के प्रतिभागियों से विविधता में एकता के अनुभव को

जोड़ती है। प्रदेश में युवा, महिला, किसान और मजदूर सभी का सशक्तिकरण किया जा रहा है। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर आज वार्ड पंच और सरपंच की लॉटरी निकाली गई। उपखंड मुख्यालयों पर लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के साथ ही संभावित प्रत्याशी सक्रिय हो गए हैं और दावेदारी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। वहीं आरक्षण लॉटरी के अनुसार अब कई नए चेहरे भी चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। इस बीच जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में महापौर पद के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। सुकेत नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में उम्मीद जताई कि पंचायत चुनावों में भी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आज जयपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में पार्टी मजबूती से उतरने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। वे सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री नवीन दादिया गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे दादिया से ही पंचायत चुनाव अभियान के प्रचार रथों को रवाना करेंगे। उनका बिड़ला सभागार में युवाओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर कल से आंगन मिलन सेवा का आयोजन किया जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग की शासन सचिव श्रीमती पूनम ने बताया कि विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने बताया कि जनसेवा, सामाजिक सरोकार और पोषण स्वास्थ्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये आयोजन होगा। श्रीमती पूनम ने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संस्था प्रधानों से जनभागीदारी की अपील की है। इस बीच विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत आज विभिन्न स्थानों पर रंगोलियां सजाई गई। सेवा के रंग राष्ट्र के संग इस गतिविधि का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और RGHS में पारदर्शिता बढ़ाने और गैर जरूरी जांचों पर रोक लगाने के लिए लागू की गई प्री ऑथराइजेशन व्यवस्था से दावों में 47% की कमी दर्ज की गई है। 15 जुलाई से लागू इस सिस्टम के तहत 2000 से ज्यादा जांचों के लिए प्री ऑथराइजेशन अनिवार्य किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन, जांच और दावों से जुड़ी गतिविधियों की लगातार डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ियां सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोटा के 2 अस्पतालों का TMS ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा 3 डॉक्टरों की ID ब्लॉक की गई है। राजसमंद जिले के रेल मगरा इलाके में आज एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 11 व्यक्ति घायल हो गए। इन्हें जिला RK अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल मगरा थानाधिकारी प्रवीर सिंह जुगतावत ने बताया कि दुर्घटना ट्रैक्टर के पलटने से हुई। ट्रैक्टर सवार ये लोग तुर्किया खेड़ा गांव के रहने वाले थे और सांसेरा के माताजी तालाब से गणेश विसर्जन कर लौट रहे थे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ईश्वर से हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को शक्ति प्रदान करने की कामना की है, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की है।
गौरतलब है कि कल रात दिल्ली से महोबा जा रही एक निजी स्लीपर बस में यमुना एक्सप्रेसवे पर आग

0: लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से झुलस गए थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। उधर जोधपुर के बासनिक औद्योगिक क्षेत्र में कल एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद कई दमकलें मौके पर पहुंची। इस दौरान फैक्ट्री में रखे केमिकल के ड्रमों में विस्फोट होने से 13 दमकल कर्मी झुलस गए। इनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें जयपुर रेफर किया गया है। मोटे अनाज यानी शी अन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये मधुमेह और हृदय रोगों सहित कई बीमारियों में फायदेमंद साबित हो रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉ. पुनीत सक्सेना ने आकाशवाणी को बताया कि श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये ग्लूटेन फ्री हैं और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक हैं।
1: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की, कोटो है। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं और इनमें मिनरल्स की अधिकता की वजह से डायबिटीज, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, सीलिएक डिजीज जिसमें कि ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उनमें मिलेट्स बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: प्रदेश में मॉनसून की विदाई का दौर शुरू होने के साथ ही गर्मी के तेवर फिर तीखे हो गए हैं। कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में दिन का पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैसलमेर में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर और पिलानी में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्सों में मॉनसून की वापसी शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रदेश से मॉनसून की पूरी तरह विदाई नहीं हुई है। विभाग ने अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। इसके बाद 27 से 29 सितंबर के बीच भरतपुर और जयपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश में जीएसटी विभाग की ओर से कर चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 प्रतिष्ठानों पर सर्वे और जांच की कार्रवाई की गई। इसमें 22 करोड़ रुपए से अधिक की संभावित कर देयता सामने आई है। पिछले सप्ताह ये कार्रवाई भिवाड़ी, सरदारशहर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में की गई। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर ये नतीजे जारी किए। वर्ष 2026-27 के प्रवेश सत्र के विभिन्न एमडी, एमएस, डीएमबी, डॉक्टर एमबी और पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 अगस्त को देशभर में ये परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में कुल 2,65,960 उम्मीदवार शामिल हुए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को परम धर्म और कर्तव्य बताया। कहा, सेवा भावना ही देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन सकती है। राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों की आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया पूरी। आज वार्ड पंचों और सरपंचों की लॉटरी निकाली गई। आरजीएचएस में प्री ऑथराइजेशन व्यवस्था लागू करने से क्लेम में 47% की कमी आई और प्रदेश में मॉनसून की विदाई का दौर शुरू होने के साथ ही गर्मी के तेवर तीखे। कई स्थानों पर दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे लिखकर भेजा है रामेश्वर बेड़ा ने। जिले में नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। नगर निगम जोधपुर के 100 वार्डों के चुनाव में भाजपा को 45, कांग्रेस

0: 44 सीटें मिली, एक सीट पर आरएलपी और शेष पर निर्दलीय विजयी हुए। कल महापौर पद के लिए चुनाव होगा। भाजपा की ओर से प्रश्न चंद मेहता, जबकि कांग्रेस की ओर से राजेंद्र सोलंकी महापौर पद के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इसके अलावा जिले में पंचायत चुनाव की कवायद भी तेज हो गई है। कल और आज विभिन्न पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को साफ सफाई रखने का संदेश दिया जा रहा है। जोधपुर में स्वास्थ्य कर्मियों, रेल कर्मियों और शहरवासियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया, सामूहिक स्वच्छता प्रतिज्ञा ली, श्रमदान करने, गंदगी नहीं करने, दूसरों को गंदगी करने से रोकने और गीले सूखे कचरे के उचित निस्तारण का संकल्प लिया गया। वहीं स्वच्छता जागरूकता रैली भी निकाली गई। जोधपुर मंडल में स्वच्छ रेलगाड़ी अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलगाड़ियों और स्टेशन परिसरों की गहन सफाई की गई, साथ ही यात्रियों से कचरा डस्टबिन में डालने और परिसर को स्वच्छ रखने की अपील की गई। भारत और जापान की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास वीर गर्जन 2026 जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर हाल ही में आयोजित हुआ। 9 से 22 सितंबर तक चले इस युद्धाभ्यास में तेजस, सुखोई 30, एमकेआई, राफेल और जापान के F-2A विमान शामिल हुए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के जनरल ताकेहिरो मोरिता ने तेजस विमान में एक साथ उड़ान भरी। जनरल मोरिता ने इसे भारत की तकनीकी क्षमता और मेक इन इंडिया का प्रतीक कहा। आईआईटी जोधपुर कम संसाधनों में चलने वाला स्मार्ट हेल्थ असिस्टेंट विकसित कर रहा है। एआई आधारित सिस्टम मेडिकल रिकॉर्ड और सेंसर डेटा का विश्लेषण कर जटिल मेडिकल शब्दों और आंकड़ों को आसान भाषा में समझाएगा। लगातार सेंसर जानकारी से स्वास्थ्य स्थिति समझने में मदद मिलेगी। सीमित कंप्यूटिंग क्षमता वाले स्थानों पर भी इसका इस्तेमाल संभव होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बीते दिनों डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज सभागार में चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग, एंटीनेटल केयर और कंगारू केयर को मजबूत करने के निर्देश दिए। उम्मेद चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर प्रोटोकॉल, उपचार मॉनिटरिंग और मरीज सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही बिलाड़ा, भोपालगढ़, धवा, पीपाड़ शहर, ओसियां और बालेसर के सैटेलाइट अस्पतालों में मानव संसाधन मजबूत करने को कहा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जोधपुर गोरखपुर जोधपुर साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा शुरू होगी। ये रेलगाड़ी जोधपुर से 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक हर गुरुवार शाम 4:15 बजे रवाना होगी, जो अगले दिन रात 8:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन मेड़ता रोड, डिगाना, डीडवाना, चूरू, रेवाड़ी, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, गोंडा और बस्ती सहित निर्धारित स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें 20 डिब्बे होंगे। रायकाबाग जैसलमेर के 291 किलोमीटर रेल खंड की पटरी के नवीनीकरण का काम किया जाएगा। इस पर करीब 713 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे रेल पथ की मजबूती, विश्वसनीयता और परिचालन क्षमता बढ़ेगी। वहीं जोधपुर जयपुर दिल्ली के बीच चल रही मंडोर एक्सप्रेस का मौजूदा रैक अमृत भारत के नए रैक से बदला जाएगा। इस नए रैक में एसी, नॉन एसी कोच और आधुनिक सुविधाएं होंगी। नया रैक अगले महीने जोधपुर आने की संभावना है। जोधपुर में जल्द ही सड़क सुरक्षा के लिए एआई ट्रैफिक निगरानी प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। इस दौरान कैमरों और एएनपीआर तकनीक से यातायात का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को पकड़ा जाएगा, साथ ही ऑनलाइन चालान भेजा जाएगा। जिले में हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में जोधपुर रेल मंडल कार्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। इसमें रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा के तहत हिंदी को लेकर जिले भर में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसी के साथ जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा न सब मोटो धर्म और कर्तव्य बतायो, कहो सेवा भावनाई देश री बरकत रे सब मोटी प्रेरक ताकत बन सके है। राज्य में पंचायत चुनाव सारू आरक्षण लॉटरी रो काम पूरो।

0: थियो। आज वार्ड पंच और सरपंच ओहदा सारू लॉटरी निकाली ची। आरजीएचएस माय प्री ऑथोराइजेशन व्यवस्था लागू करणो दावा माय 47% री कमी आई और प्रदेश माय चौमासारी बिरखा करीब करीब बंद हुए वनसा गई। गर्मी रो असर बढ़ियो, कई थोड़ा दिन री बगत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि जिंदगी रो खास मकसद सेवा है और हर एक जना माए सेवा भावना भी होनी चाहिए। वे आज गुजरात रा बड़नगर वाराणसी ताई यात्रा कर रहा सेवा यात्रियां सागे वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए बातचीत कर रहा है। श्री मोदी कहो कि सेवा परम धर्म है, सब मोटो कर्तव्य है और आ भावना देश री बरकत री सीख देवन वाली सब मोटी ताकत बन सके है।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी कहो कि जब सेवारी भावना देश री नीतियां माय शामिल वे है तो जनता रा भलारी योजनावां सामी आवे है और आई कल्याणकारी योजनावां 25 करोड़ लोगां ने गरीबी रा कुचक्रों बाहर निकलबा माय मदद मिली है। सेवा यात्री प्रधानमंत्री सामी विचार बताता था का कहो कि इन तेत पौधा रोपी चिया और स्वच्छता अभियान चलाई चिया। प्रधानमंत्री यात्रा माए शामिल हुए मनवाणाओं विविधता में एकता रा अनुभव देश रा हर कोणा ताई पोगावन दे अरज कीनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई बीकानेरू इन कार्यक्रम माए वर्चुअल तरीका जुड़िया। वे कहो कि अनुशासन दया और सामाजिक जिम्मेदारी जनता ने जोड़े है। प्रदेश माए फेवनवाला पंचायत चुनाव सारू आज उपखंड मुख्यालय माथे वार्ड पंच और सरपंच ओहदा सारू लॉटरी निकाली ची। आरक्षण री स्थिति साफ फेवन सा गई, संभावित उम्मीदवारा री हलचल बध गई है और दावेदारा री नवी रणनीति बनाई जा रही है। इबीचे जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम माए महापौर ओहदारा चुनाव सारू काल वोट पड़ेला। सुकेत नगर पालिका रा अध्यक्ष ओहदा सारू काल वोट डालिया चावेला। वोट सवार 10 दोपहर 2 बजे ताई दिया जा सकेला। चुनाव अधिकारी आशीष कुमार बतायो कि वोट पड़बारो काम पूरो होया पछे तुरंत ही वोटा री गिनती करी जावेला। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आज जयपुर में खबर नवी संसा के बातचीत रे दौरान पंचायत चुनाव में आई पार्टी ने बहुमत मिलन री उम्मीद जताई। दूजिकानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासराई आज जयपुर में खबर नवी संसा के बातचीत करता था का कहो कि पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी मजबूती में उतरेला। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन रो काल जयपुर रा दौरा रो कार्यक्रम है। वह सेवा संकल्प अभियान रा तेत स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में शामिल भेला। श्री नबीन जयपुर के नरदादिया गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जयंती रे मौके रख्या जावन वाला जलसा में शामिल भेला। वह दादिया हुई पंचायत चुनाव सारू पार्टी रा अभियान री शुरुआत रा तौर प्रचार रथ रवाना करेला। श्री नबीन रा जयपुर रा बिड़ला सभागार माए नौजवाना सागे बातचीत रोई कार्यक्रम है। प्रदेश रा सगला आंगनबाड़ी केंद्र माए काल आंगन मिलन सेवा शुरू करी चावेला। महिला और बाल विकास विभाग रे शासन सचिव बतायो कि 3 दिन रा इन कार्यक्रम माए जन सेवा सामाजिक सरोकार पोषण और स्वास्थ्य जुड़ी योजनावां री जानकारी जनता ताई पोगावन री कोशिश करी जावेला। वे जनता मारा नुमाइंदा और संस्था प्रधानाओं ई कार्यक्रम माई भागीदारी करन री अरज कीनी। इबीचे विकसित भारत जन सेवा अभियान रा तेत आज न्यारी न्यारी थोड़ा रंगोलियां सजाई ची। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप माना एक्स हैंडल

0: AIR_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS रा काम माय साफ कोई बधावण और गैर जरूरी जांचा माथे रोक लगावण सारू लागू करी ची। प्री ऑथोराइजेशन व्यवस्थाओं दावा माय 47% री कमी दर्ज करी ची है। 15 जुलाई लागू करी ची ई व्यवस्था रा तहत 2032 जांचा सारू पहली मंजूरी लेवण जरूरी करी चियो है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव आ जानकारी तीनी वे बतायो कि डॉक्टर री पर्ची जांच और दावा माथे लगातार डिजिटल तरीका निगरानी रखी जा रही है। वे बतायो कि कोटा रा दो अस्पताल रो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम TMS ब्लॉक करी चियो है जबकि तीन डॉक्टर री ID ब्लॉक करती रिची है। राजसमंद जिला रा रेल मगरा हल्का माए आज ट्रैक्टर पलट जावणो 4 जना री मौत फेंकी और 11 जना जख्मी फेंकिया। जख्मी लोगां ने जिला अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। रेल मगरा रा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह जुगतावत बतायो कि ट्रैक्टर माए सवार ए लोग तुर्किया खेड़ा गांव रा रहवासी हा जो सांसेरा रा माताजी तलाव गणेश विसर्जन कर पाछा आ रहा हा। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ग्रेटर नोएडा माय एक बस माय लाए लाग जावन रवा के अमत है गहरो शोक जतायो है। वह हादसा माय जान गमावन वाला रा परिवारों ने ओ दुख सहन करन री ताकत और जख्मी लोगों रे बेगा ठीक वेवन री कामना कीनी। ध्यान जोग है कि काल रात दिल्ली महोबा जा रही एक गैर सरकारी स्लीपर बस माए यमुना एक्सप्रेस वे माथे लाई लाग जावणो 9 जना री मौत वे की ही और कई मुसाफिर जख्मी वे क्या हा। ई हादसा रे कारण मरण वाला रा परिवार वाला ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष हु 2-2 लाख रुपया और जख्मी लोगों ने 50,000 रुपया री मदद देवन रो ऐलान करी चियो है। दूजी कानी जोधपुर रा बासनी औद्योगिक हल्का माए काल एक केमिकल फैक्ट्री माए लागी लाई रे कारण वठे रखोड़ा केमिकल रा ड्रम माए धमाको वेवणो दमकल वाला 13 जना झुलस गया। घना जख्मी 6 जना ने जयपुर रेफर करी चिया है। मोटा अनाज यानी श्री अन्न पोषक सामग्री भरपूर वे है। शुगर और दिल री बीमारियां समेत भांत भांत री बीमारियां रा इलाज माए फायदेमंद साबित हुए है। जयपुर रा सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज रा वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना आकाशवाणी सागे बातचीत रे दौरान बतायो कि श्री अन्न माए फाइबर प्रोटीन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वे है।
1: मिलेट्स जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की, कोटो है। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं और इनमें मिनरल्स की अधिकता की वजह से डायबिटीज, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, सीलिएक डिजीज जिसमें कि ग्लूटेन से एलर्जी होती है उनमें मिलेट्स बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: अरब मौसम प्रदेश में चौमासारी बिरखा लगभग बंद हो जावन सा गई पारो उज चढ़वा लग्यो है। राज्य रा आतुनी हल्का माए दिन रे बगत तापमान सामान्य करीब 5 डिग्री सेल्सियस ऊंचो चाल रियो है। जैसलमेर माए पारो 42 डिग्री सेल्सियस न पार कर क्यो। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर और पिलानी माए अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊंचो ना पीछियो। मौसम विभाग रे मुजब आवता 3-4 दिन मौसम सूखो रेवन रा आसार है। ई पाछे 27-29 सितंबर बीच भरतपुर और जयपुर संभाग सागे शेखावाटी हल्का माए कठे कठे हल्की मझला दर्जारी बिरखा रा आसार है। नीट PG परीक्षा 2026 रा नतीजा रो राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड री आधिकारिक वेबसाइट मा था ऐलान करती उच्चियो है। साल 2026-27 रा प्रवेश सत्र माए MD, MS, DNB और PG मेडिकल डिप्लोमा कोर्स माए दाखिला सारू 30 अगस्त न देश भर माए आ परीक्षा लीरी ची ही जे माए 2,65,960 उम्मीदवार शामिल हुआ हा। प्रदेश में GST चोरी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान रहते 5

0: कारोबारी ठिकाना माथे सर्वे और जांच री कार्रवाई करी ची। इस दौरान 22 करोड़ रुपए बत्ती रकम रो संभावित टैक्स बनियो। आ कार्रवाई भिवाड़ी, सरदार शहर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिला में करी ची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला इन कार्यक्रम रे 138वीं कड़ी फैला। इन सारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे काल ताई राय दे सको हो। नंबर हो जो सुन ले रहा सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम के जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा ने सब मोटो धर्म और कर्तव्य बतायो। कहो सेवा भावना ही देश री बरकत री सब मोटी प्रेरक ताकत बन सके है। राज्य में पंचायत चुनाव सारू आरक्षण लॉटरी रो काम पूरो फियो। आज वार्ड पंच और सरपंच ओहदा सारू लॉटरी निकाली ची। RGHS माय प्री ऑथोराइजेशन व्यवस्था लागू करण दावा माय 47% री कमी आई। और प्रदेश माय चौमासारी बिरखा करीब करीब बंद है वंसा गई। गर्मी रो असर बढ़ियो। कई थोड़ा दिन री बगत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमी चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर नाथद्वारा करौली भरतपुर झुंझुनू अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। श्रोताओं शाम के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब भूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोताओं ने आशा धवाई का घना घना राम राम, और अनीता जी आपने भी मारा घना घना राम राम सा। आशा जी आपने भी घना घना राम राम, और श्रोता किसान वाणी सुन रहे थे वहाँ सभी ने अनीता को घनो घनो राम राम सा। रामा श्यामा के साथ ही देखो थोड़ी सी बात आज का किसान वाणी कार्यक्रम में आप यही करा ना कि आपनों यही उद्देश्य है कि आप जो भी बातचीत करा उनको सीधो सीधो फायदो अपना काश्तकार।

0: मिले। और अब आज समय की मांग यही कहवे छे कि आपने टाइम पर सारू काम करना चाहिए और ई हिसाब से योजना बनार करना चाहिए कि आपनी मेहनत भी कम लागे और आपने फायदो भी ज्यादा मिले। इके ताई जरूरी छे कि अपना काश्तकार भाया अपना किसान भाई कृषि में जो कृषि यंत्रों को महत्वपूर्ण योगदान हुए छे ना उनका बारे में भी जानकारी रखे उनका महत्व में भी समझे और या भी समझे कि की तरह से ये यंत्र आपका काम में सरल बना देवे छे मेहनत और लागत में कम कर देवे छे।
1: जी सा क्योंकि देखो सा आज बढ़ती कृषि लागत मजदूरों की कमी और टेम पर खेती का काम पूरा करबा की जरूरत में देखता हुआ कृषि यंत्र को महत्व लगातार बढ़तो जा रहे छे। नैरा नैरा कामा ने जो ये कृषि यंत्र छे वो बहुत आसान बनाओ छे यहाँ की मदद से जो भी खेती बाड़ी का काम छे जुताई बुआई निराई गुड़ाई खाद दवाई को छिड़कबो कटाई मंडाई जैसा सारा काम यहाँ से समय पर और कम टाइम में करा जा सके छे। कृषि यंत्र को सबसे बड़ो लाभ यो छे कि किसान टाइम वाले और कम मेहनत में दोनों की ही बचत कर सके छे।
0: बिल्कुल और एक मोटो फायदो या भी छे कि इके मायने लागत कम आवे छे और लंबा समय को जो काम छे वो कम मजदूरी कम खर्च में आसानी से करे जा सके छे। मौसम का अनुकूल रहता हुआ बुआई और कटाई आपा कर सका छे क्योंकि ई काम ने अगर आपा मजदूरा लगार हाथा से करा छा तो समय ज्यादा लागे छे और मौसम परिवर्तित हो जावे छे तो फिर फसल में नुकसान होबा की संभावना ज्यादा रहे छे। कई बार आपा अशा यंत्र को प्रयोगी कौन करा और खेत में अवशेष पड़ा रह जावे छे जिससे कि अपनी जमीन भी नुकसान पहुंचे छे। तो कुल मिलाकर बात यही छे कि समय ने बचावा के लिए श्रम ने कम करवा के लिए काश्तकार भया कृषि यंत्र का महत्व का बारे में जानकारी रखे टेक्नोलॉजी से कदम मिलावे और यंत्र का उपयोग में समझता हुआ आपने खेती बाड़ी में जरूर से जरूर काम में लेवे।
1: जी क्योंकि देखो सर समय पर बुआई और कटाई होबा से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े छे। इसलिए कृषि यंत्र केवल खेती ने आसान बनाबा को ही साधन को ने बल्कि समय की बचत लागत ने नियंत्रित करवा और जो कृषि का आधुनिक और दक्ष बनाबा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाव छे वहाँ के लिए ये यंत्र बहुत ही कारगर साबित हो सके छे।
0: अरे अनीता जी अब आपनी बाता ने देवा थोड़ो सो विराम और कार्यक्रम में सुनावा एक रेडियो रिपोर्ट केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर पर आधारित। रेडियो रिपोर्ट में भेंट करता राजेंद्र डारा प्रस्तुत करता बीएस यादव और संयोजक महेंद्र मीणा।
1: तो आओ सा सुनाया रेडियो रिपोर्ट।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज के समय में तकनीकी आधारित कृषि विधियां अपनाकर कैसे हम अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं यही जानने आकाशवाणी जयपुर की टीम पहुंची टोंक जिले के अविका नगर स्थित केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में। वहां पहुंचते ही हमने सबसे पहले बात की टेक्निकल असिस्टेंट व सेक्टर इंचार्ज श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत से जिन्होंने हमें दुम्बा प्रजाति की भेड़ के संदर्भ में जानकारी दी।
3: ये जो सेक्टर आप जो देख रहे हैं ये दुम्बा का है, ये मिडिल ईस्ट की जो है अफगानिस्तान लीबिया टर्की पाकिस्तान तक ये एनिमल मिलता है दुम्बा ब्रीड का जो ये देख रहे हैं आप जो। और इस एनिमल का क्या है कि हम 2013 से हमारे पास है जो फील्ड में कुछ फार्मर्स उनको भी दिया है और हमारे पास में भी अभी करीबन 150 करीब ये दुम्बा के जानवर है। अपने जो नॉर्मल ब्रीड वाले जो जानवर है उससे सेम मिलता जुलता है ये और इसका जो शारीरिक बार है वो अपने जो नॉर्मल जो भेड़े हैं जितनी भी ब्रीड की जैसे मगरा है पोंगल है नाली है सोनाड़ी है मालपुरा तो जो देसी ब्रीड की जो भेड़ है उससे दो गुना से ढाई गुना इसका वजन है। तो अगर जैसे मान लो आपको कम जगह में स्टॉल फीड पे जानवर को रखना है अगर ग्रेजिंग है तो ये देखो दोनों हर एक चीज का अलग अलग कंसेप्ट होता है। जो दुम्बा है इसको स्टॉल फीड पे रखोगे आप तो अच्छा इससे ग्रोथ और आपको पैसा मिलेगा और अगर जैसे अपने पास में चरागाह क्षेत्र है वैसी स्थिति में अगर अपन दुम्बा को इसको चढ़ने के लिए भेजोगे तो इसका क्या जो फेट है वो इतना जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा। ये स्टॉल फीड एनिमल है। और रही बात तो इनका जो मेजर वैक्सीनेशन वगैरह वो करते हैं उसके बाद में दुम्बा में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो अपने नॉर्मल जो भेड़े अपने राजस्थान में और आसपास के जो क्षेत्रों में जो भी पाई जाती है जैसे वो रेरी उस तरह से ये रहती है। जैसे एक जानवर है इसका जो वजन है 12 महीने के अंदर 80 किलो से लेकर के 98 किलो तक 100 किलो तक हो जाता है। अपने देसी भेड़ उसका जानवर का वजन होता है 25 किलो से लेकर के 40 किलो तक। अलग अलग ब्रीड का अलग जैसे मालपुरा है तो उसका 30 किलो 35 किलो के करीब एवरेज होता है। पाटनवाड़ी उसका भी 35 किलो के आसपास 12 महीने में एवरेज रहता है। तो इसका वजन ज्यादा गेन करती है तो एवरेज डेली गेन वो इसका ज्यादा रहता है। खाना

जो नॉर्मल वेट जो चारा है, जैसे अपने फसल जो है वो दलहनी फसलों का जो वेस्टेज होता है, जैसे चने का भूसा है, अपने मूंग का है और जिस गुहार का भूसा है, तो इस टाइप के जो है वो उसका आप दोगे प्लेस तो इसको खा लेगी। एक घास होती है तो वो आप जैसे बंजर जगह है या ऐसे जहाँ पे फसल नहीं हो रही है, समतल नहीं है, जहाँ एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे, उस जगह पे उस घास को लगा दो। उसका अंजन मतलब घास होती है, सेंक्रस इलेरिकस उसका बोटनिकल नेम है, तो वो घास उसको आप लगा सकते हो। तो उसका आप स्टोरेज करके रखो, जब हरा चारा सूखा चारा नहीं है तो उसकी कुट्टी करके वो आप इनको डाल सकते हो। यहाँ से ले जाए तो हमारा उपलब्ध कराने का, देखो ऐसा है कि एक हमारा फार्म टीओटी एंड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, उस एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में फार्मर को डायरेक्टर साहब के नाम से एप्लीकेशन देनी होती है, एक आधार कार्ड की कॉपी लगानी होती है और एक आपके वहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है उस जनप्रतिनिधि का सर्टिफिकेट देना होता है। तो उस सर्टिफिकेट में आपको लिखवाना है कि आपका नाम, पिताजी का नाम, वार्ड नंबर इसके रहने वाले पशुपालक है और मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मोस्टली क्या होता है कि जैसे कोई यूनिट वगैरह खोल रहा है तो उसको मेल और फीमेल जोड़ा ही देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया से डिमांड आती है। तो अभी हम 2024 तक के आसपास के जो फार्मर्स की एप्लीकेशन उनको जानवर दे चुके हैं, उसके बाद में जो एप्लीकेशन आई वो सब पेंडिंग पड़ी है, यानी कि लगभग 200 के आसपास एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग पड़ी है। तो हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, जैसे कोई आवेदन करेगा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में वहां जाएगी, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के जो हेड साहब वो उनको डायरी डिस्पेच रजिस्टर्ड करके, आपने बकरी मांगी है तो उसमें ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में भेजेंगे, दुम्बा मांगा तो फिजियोलॉजी में मार्क करेंगे उसको, और या डायरेक्टर साहब के पास मेल आया तो वो भी सेम कौन सी चीज मांगी वो एक्सटेंशन को भेज देंगे, फिर एक्सटेंशन वाले संबंधित डिपार्टमेंट को उस एप्लीकेशन को भेज दे। तो हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट उसके अंदर सबका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसने पहले आवेदन किया पहले उसको देते हैं, हमारे लिए सारे किसान बराबर होते हैं। प्रजनन इनका ये, इनकी जो गर्भावधि हो तो 5 महीने की होती है, इसकी मेच्योरिटी वो 12 महीने में आ जाती है, तो 12 महीने के बाद में ही ब्रीडिंग होती है। नॉर्मल जो भेड़ उसमें भी 12 महीने की मेच्योरिटी की जो है वो 8 महीने 9 महीने पे आ जाती है, लेकिन ब्रीडिंग का जो है वो 12 महीने पे करवाते हैं। मिनिमम बच्चे इसमें 5% के आसपास तो ट्विंस आता है और बाकी सिंगल आते हैं 95%। वूल का ये कि वूल का तो जो अपने जो साल में 2 क्लिप हम लेते हैं तो 6-6 महीने के अंतराल में लेते हैं, किसान क्या कि 3-4 बार लेता है, तो किसान वूल को अपने जानवर को जैसे अपन कटिंग करा करके अपन उस हिसाब से रखते हैं, तो किसान जानवर को क्योंकि उसकी तरफ से वूल का जो पैसा है उसको कम मिल पाता है, क्योंकि उसको इसका पता ही नहीं कि वूल से भी अपन को पैसा मिलेगा, इससे कोई अपन कुछ ऐसी चीज बनाए। तो हमारा जो एक डिपार्टमेंट है वूल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो वो इसके लिए कुछ महिलाओं को, किसानों को और उनको प्रशिक्षण देते हैं कि वो वूल से धागा बनाए, ये करे वो करे, तो वो वाला जो उनका पार्ट वो बताते हैं वूल टेक्नोलॉजी वाले। बाकी वूल जो है एक बार में क्लिप में 800 से 900 ग्राम वूल निकलती है, 2 क्लिप से 2 किलो वूल निकलती है और 200 रुपए किलो करीब वूल जाती है। 2 किलो वूल एक साल में मिली तो 400 रुपए की हो गई, ये तो हो गया जब आप मार्केट में सीधा बेच रहे हो। अब बाकी क्या करना है, अगर आपको स्मार्ट किसान बनना है तो क्या उसको आपको टेक्नोलॉजी के साथ में जाना है, उस वूल का आपको प्रोडक्ट बनाना, आप जो जब अगर आपके किसानों को अगर टाइम मिले तो आप एक बार हमारा जो वूल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट उसमें जाना, उसमें कुछ प्रोडक्ट है वूल से किस तरह से बनाते हैं, वो कुछ प्रशिक्षण है, वो 15 दिन का हफ्ते का वो चलता है, वो लेकर के वो उससे कुछ वो बना सकते हैं। तो वो आइटम है वो 400 रुपए की वूल के अंदर आप 2000 के आइटम बना के बेच दो। कोई किसान प्रशिक्षण लेने के लिए आएगा तो हमारा जो HRD डिपार्टमेंट है उससे आपको CSWRI की वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप देखो तो उसके ऊपर हमारा मानव संसाधन इकाई है, तो उसका आपको कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल वगैरह उसी पे डालते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, उससे आप देख करके पता लगा सकते हो कब कौन सा प्रशिक्षण चल रहा है। पालने के लिए तो ऐसा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में दुम्बा पाल रहे हैं, सब जगह पाल रहे हैं, गुजरात में भी गए हैं, बंगाल में भी गए हैं, हैदराबाद में गए हैं, दिल्ली में गए हैं, इंदौर वगैरह, नीमच, सब जगह जा रहे हैं, सब जगह पाल रहे हैं। जो भेड़ है वो देख कुछ जो एडोप्टेबिलिटी का वो होता है कि आप जिस क्लाइमेट में, जैसे अपन यहाँ है और अपन हिमाचल जाएंगे तो थोड़े दिन अपन को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। बाकी क्या कि वातावरण के प्रति एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो या कुछ भी हो तो उसमें एडॉप्शन आ जाता है, तो वो उसमें अनुकूलन हो जाता है शरीर। तो ये हमने जो देखा इस क्लाइमेट में फुल्ली एडोप्टेबल है, बस इसमें ये है कि जो एरिया जिसमें ज्यादा ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां पे क्या होता है कि ये फैटी एनिमल है तो इसमें थोड़ा मच्छर और मक्खी अगर ज्यादा हो रहे हैं और आर्द्रता ज्यादा रह रही है तो उस कंडीशन में थोड़े वुंड पड़ जाएंगे, तो जो फेट है इसकी जो पूंछ जो देख रहे हो आप, इस पूंछ पे अगर कीड़े वगैरह पड़ गए तो थोड़ा सा हीलिंग में टाइम लगेगा, बस और कुछ भी

0: फर्क नहीं है। बाकी नॉर्मल जो बेड है वैसे ही है। इसमें क्या होता है कि जब भी एनिमल है ना वो ब्रीडिंग में काम में आ रहा है, जो फीमेल है वो लैक्टेशन में रहती है। जैसे मान लीजिए कोई भेड़ है 12 महीने की है, जो 12 महीने तक तो ठीक है, 12 महीने के बाद में उसके आपने मेटिंग करा दी, तो वो क्या होगा, वो 5 महीने तक उसके फीटस अंदर रहता है। तो उसको पोषण एक तो खुद का करना है और एक बच्चे का करना। 5 महीने बाद में बच्चा दे दिया, उसकी उम्र होगी 18 महीने, फिर 3 महीने तक बच्चा दूध पिएगा। जब एनिमल दूध दे रहा है तो उस समय भी क्या उसको प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स ज्यादा आवश्यकता है। उतने अगर मिल रहे हैं और उससे ज्यादा मिल रहे हैं तब तो वो बराबर मेंटेन रहेगा। लेकिन क्या होगा, लैक्टेशन के अंदर जानवर आप कितना भी खिलाओ, आप गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, जब तक वो बच्चा दूध पी रहा है तो जानवर का वजन कम होगा। जैसे ही उसका बच्चा उससे अलग करोगे फिर जानवर का वजन बढ़ने लगेगा। यानी वो 2 महीने 3 महीने अगर आपने 6 महीने तक उसको खाली रख दिया तो उसका वजन उस टाइम अच्छा होगा। गाय भैंस के अंदर देखना आप, उसकी कोल्ले वगैरह वो ऐसे होकर के बिल्कुल यूं हो जाता है। तो सेम बेड में भी ये होता है। तो अब क्या हम इनको क्या 2 साल में 3 बच्चे लेते हैं, यानी कि हम इनको खाली नहीं छोड़ते। जैसे बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में 3 महीने तक बच्चा दूध पिएगा तो हम इसको 2.5 महीने पे बच्चे को अलग कर दिए। 2.5 महीने पे उसको मिल्क रिप्लेसर हमारे न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट वो बनाता है। तो इनके ये जो जितनी बेड है इनके जो बच्चे थे उनको हमने उनको मतलब उसको मिल्क रिप्लेसर पे ले लिया। उनके वो भी उनका भी क्या ग्रोथ प्रभावित नहीं हो तो वो भी किया। तो अब उसके बाद में इनकी मेटिंग करवा दी तो जानवर को फ्री टाइम मिला ही नहीं। तो कंटिन्यू दो डबल डबल पोषण दे रहा हो तो आपके ऊपर 2 जगह की जिम्मेदारी होगी, तो आदमी इधर भी दौड़ेगा उधर भी दौड़ेगा। तो फीमेल का वजन इसलिए हमेशा मेल की अपेक्षा कम रहता है, तो थोड़ा वो रहता है क्योंकि मेल का तो केवल ब्रीडिंग का जब काम है तो उसी टाइम काम में आना है। और फिर क्या है, ब्रीडर जब होता है तो उसको घर का जो मुखिया होता है उसको खाना दाना भी उसी हिसाब से मिलता है। तो ब्रीडिंग का अलग से, अभी हमने इनको गुड़ खरीद करके गुड़ भी खिलाया, तेल भी खिलाया, तो इनको एक्स्ट्रा केयर भी करते हैं हम। तो ब्रीडर थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपको अच्छी जर्म प्लाजम चाहिए, अच्छी प्रोजनी चाहिए, तो उसके लिए आपको ब्रीडर तो मस्त है कि वो सबसे अच्छा हो, हष्ट पुष्ट हो, तो उसकी थोड़ी सी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी।
1: किसान भाइयों, खेती और पशुपालन अगर तकनीकी आधारित विधियों को काम में लेकर किया जाए तो कृषि उत्पादन का बढ़ना और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाकर हम अपनी आय में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। इसी क्रम में भेड़ से प्राप्त ऊन के प्रसंस्करण विधियों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के वस्त्र विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने हमें बताया।
2: यहाँ पे मेरे सेक्शन में जो काम है कि भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है, ऊन को जब फैक्ट्री में जाकर कैसे प्रसंस्कृत करके उसमें कई सारे प्रोसेस हैं, जैसे ऊन की धुलाई करना, फिर उसे धागा बनाना और फिर उसके बाद उससे कंबल या कपड़ा बनाना, उसकी रंगाई करना, उसकी फिनिशिंग करना ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, और उसको प्रेस करके बेचने हेतु कैसे तैयार किया जाए, ये सारी चीजें हम जो है ना यहाँ पे विजिटर्स को भी बताते हैं और हम अपने संस्थान की ऊन को इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दिखाते भी हैं कि इस तरह से कोई अगर सीखना चाहे तो उसके जानकारी में रहे कि क्या क्या प्रोसेस कैसे होता है। अदरवाइज इस तरह का प्रोसेस देखने को नहीं मिलता। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वहां लोगों को कि उनके प्रोडक्शन में लॉस होता तो वो अंदर जाने नहीं देते। तो ये सरकारी संस्थान है तो यहाँ पे विजिटर्स भी आते हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, उनको हमें बताना होता है कि कपड़ा कैसे बनता है, ताकि उनको ये ध्यान में रहे कि कपड़ा पहनते तो हैं लेकिन बनता कैसे है, कहाँ से आता है और कहाँ से आने के बाद उसके साथ क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं ताकि वो हमारे पहनने लायक बने। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल विजिट के द्वारा वो ये सब चीजों का अवलोकन स्वयं अपनी आंखों से करते हैं तो उनकी स्मृति में बैठता है, वो ताज जिंदगी उनके साथ रहेगा, ऐसा ये प्रयास है। तो रिसर्च के साथ साथ हम ये जो है ना पब्लिक सर्विस के, ये पब्लिक के डोमेन में ये चीजें उपलब्ध कराते हैं जो कि इंडस्ट्री में नहीं हो पाती हैं। हम उनकी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर शोध कार्य करते हैं। मुख्यतः अभी पिछले 5-10 साल से ये पाया गया है कि मोटी ऊन जो है किसान की वो किसी उपयोग में नहीं आती, तो मोटी ऊन का कैसे सदुपयोग किया जाए, तो पिछले 10 वर्षों से हमने काफी शोध कार्य किए हैं और उनमें कई सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिनसे मोटी ऊन का उपयोग करके जो विक्रय हेतु उपयुक्त उत्पाद बनाए जा सकते हैं ताकि किसान के पैदा की हुई ऊन का उसको सही से मूल्य प्राप्त हो सके और वो अपनी आजीविका सुदृढ़ कर सके। साथ में ही इसके कंप्लीट वैल्यू चेन में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कपड़ा बनाने वाले या फिनिशिंग करने वाले या उसके उत्पाद को बना करके बेचने वाले, उनका जो लाभ का मार्जिन है वो कैसे बढ़ सके, प्रोडक्ट को इतना अट्रैक्टिव बनाए शुद्ध मटेरियल हो प्लस मार्केट में बिकने लायक हो।

0: जिसकी मार्केट में डिमांड हो, ऐसा प्रोडक्ट बना करके हम लोगों को दिखाते हैं। हमसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जुड़े हुए हैं जो हमारे द्वारा डेवलप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसको प्रोडक्शन यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपनी आजीविका या स्टार्टअप के थ्रू लोगों को रोजगारी प्रदान कर रहे हैं और आगे भी जो है ना उसको अपने काम को बढ़ा रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। इसमें
1: पशुपालन में खरगोश पालन के संदर्भ में उपयोगी जानकारी देते हुए संस्थान के खरगोश पालन इकाई में सेवा दे रहे वरिष्ठ तकनीशियन श्री कृष्णकांत मीणा।
2: देखिए यहाँ मतलब खरगोश के प्रबंधन मैनेजमेंट और खरगोश का मतलब आवास से संबंधित, चारे से संबंधित सारी व्यवस्था को हम देखते हैं। यहाँ पे खरगोशों का मतलब ब्रॉयलर रैबिट की 6 नस्ल है, सोवियत चिंचिला, ग्रे जायंट, व्हाइट जायंट, न्यूजीलैंड व्हाइट, ब्लैक ब्राउन और डच। इन 6 नस्लों को सुबह से लेके इनकी डेली दिनचर्या जैसे चारा खाना पीना इनका और इनको मेडिसिन देना या स्लाटर भेजना किसी जानवर को, किसानों को जानवर बेचना सेल, और कोई जानवर बीमारी से ग्रसित हो गया था उसका इलाज करना और मर गया हो तो उसको पीएम के लिए भेजना, ये सब चीजें चलता है। किसानों की रीच खूब है इसमें, किसान इसका मतलब बिजनेस करते हैं, जैसे भेड़ बकरियों का बिजनेस करते हैं वैसे खरगोशों का बिजनेस करते हैं। किसानों को हम 4 पे 1, 4 मादा और 1 मेल देते हैं, जो किसान अपना बिजनेस शुरुआत कर देता है वहाँ से। और जो बड़े बड़े फार्म हाउस वाले हैं वो किसानों से टच में रहते हैं तो उनके पास जो माल तैयार होता है तो उनके पास से उठा लेते हैं। खरगोश का मीट और स्किन दोनों यूज आता है, मीट तो खाने में और स्किन के भी प्रोडक्ट बनते हैं। लेने का प्रोसेस यही है, 3 महीने तक का जानवर हम सेल करते नहीं है और 3 महीने बाद में जैसे 3 से 6 महीने यानी 84 दिन से और 168 दिन तक का वो 500 रुपए का पर जानवर जोड़ा हो गया 1000 का, और 168 से अपर वो मतलब यानी 700 रुपए का पर जानवर यानी जोड़ा 1400 का हो गया। रैबिट का प्रोडक्शन देखिए ये 1 महीने में भी आ जाता है और 2 से लेकर 12-13 तक बच्चा दे देता है, और एक ही मादा 1 साल में 4 या 5 बार बच्चे दे देती है, तो यानी एक मादा से औसत 35-40 बच्चे अपन को आ जाते। ये एक मादा का प्रोडक्शन है 1 ईयर का, 3 महीने बाद उन बच्चों को अपन सेल आउट कर सकते हैं, 6 महीने बाद उनसे भी बच्चे ले सकते हैं, यानी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है इसका, क्योंकि भेड़ बकरियों से साल में 2 बार बच्चे ले सकते हैं या 4 या 5 बार बच्चे ले सकते हैं। 1 महीने मादा गर्भ में रखेगी, 1 महीने उनको दूध पिलाएगी और 2-4-5 दिन बाद में उसको वापस मिला देते हैं मादा को, तो 2.25 महीने में हमको 1 क्रॉप मिल जाती है, इसलिए 1 साल में 4 या 5 बार अपन को बच्चे मिल जाए। इसकी उम्र 4 से 5 साल होती है। जो हमारी जो ब्रॉयलर नस्ल है ये 6 की 6, ये राजस्थान में अच्छे से रह लेती हैं, सिर्फ मई और जून के महीने में 2 महीने परेशानी आती है थोड़ी, जब टेम्परेचर 40 से ऊपर पहुंचता है तो हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, उस समय थोड़ा यानी कूलर या फिर जैसे हम जो शेड के चारों तरफ ये जाली है इस पे जैसे पानी पूड़ा या फिर घास की टाटी टाइप में लगा देते हैं और ये नली लग रही है इस पे ड्रिपिंग चालू रहती है, तो यानी बाहर से आने वाली लू अंदर जाके ठंडी हो जाए और डक्ट कूलिंग चालू कर देते हैं। कई शेडों में हमने फोगर भी लगा रखे हैं और मौसम में कोई परेशानी नहीं है। वैसे हम तो किसानों को यही राय देना चाहेंगे वह अधिक से अधिक रैबिट पालो, क्योंकि एक मतलब सस्ता और सुलभ व्यवसाय है, मतलब व्यवसाय स्टार्ट करने से पहले ज्यादा खर्चे की भी आवश्यकता नहीं है, ज्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा और अच्छा बिजनेस है, क्योंकि भेड़ बकरियां इनके लिए ग्रेजिंग में भी जाना पड़ता है। कोई फार्मर ऐसा है यानी बुड्ढा है, मान लीजिए पेड़ों में नहीं चढ़ सकता ग्रेजिंग में या जंगल में नहीं ले जा सकता जानवरों को, तो इसको तो मतलब घर पे भी वो पाल सकता है, ज्यादा जगह की आवश्यकता घर के पिछवाड़े में या कहीं पे जो अपना स्पेस है वहाँ पे इसको रख सकता है।
1: केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से किसान स्वयं को कुशल एवं कृषि ज्ञान से परिपूर्ण करने हेतु निरंतर ट्रेनिंग में भाग लेने आते हैं। ऐसे ही एक युवा प्रगतिशील किसान से हमने उनके विचार जाने।
3: मैं धर्मराज मीणा, गांव बिड़ोली, तहसील नेवाई, NLM का प्रोजेक्ट लगाया था और 2024-25 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। आज 100+ जानवर है मेरे पास और अच्छा चल रहा है। आज तो किसानों के साथ में आया था मैं, तो 15 दिन का ट्रेनिंग ले रहा। ट्रेनिंग के बाद में काफी तकनीकों का पता चलता है, तो कौन सी दवाई, कौन सा टीका किस टाइम पे लगता है, वो चीजों का पता चलता। पहले तो जैसे साधारण तरीके से करते थे तो उसमें इतना एवज नहीं था, आज उससे कर रहे हैं तो वही चीज दुगने पे आ गया, मतलब आय दुगनी हो गई। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप भी इसमें आइए, मैं भी एक MBA आदमी हूँ, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, तो आप भी आके इसमें एक अच्छा व्यवसाय के रूप में काम कर सकते हो।
1: इस प्रकार हमने केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान से जुड़े विभिन्न हितधारकों से बात कर ये जाना कि किस प्रकार एक प्रगतिशील किसान तकनीकी और सही ज्ञान से पशुपालन को न केवल अपने अपितु अपने पूरे परिवार के लिए लाभ का धंधा बना सकता है और अपने उत्पादन के साथ साथ आय में भी बढ़ोतरी कर सकता है। किसान भाइयों, आपको बता दें हमारी इस OB यात्रा में शामिल थे महेंद्र कुमार मीणा, BS यादव और राजेंद्र सिंह दारा।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है?
1: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
0: सलाम बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
0: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। कृष्णा अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
0: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
0: सच है?
1: अरे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
0: ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: अभी आप सुना केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर पर रेडियो रिपोर्ट, और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ाऊंगा और सुना एक लोकगीत।

0: अनीता जी, उम्मीद छे गीत आपने भी पसंद आयो होलो, काश्तकार भाइयों ने भी पसंद आयो होलो। और अब ई गीत के साथ ही स्टूडियो की इशारो कर दी छे कि आज को जी को कार्यक्रम छे किसान वाणी, उनको टाइम पूरो होतो जा रहे छे। तो श्रोतावा दिराओ आज्ञा आशा ने
1: और अनीता ने चालार करा
0: राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।

0: भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:30 संध्याकाल का समय हुआ है। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन वाला सगड़ा किसान बहन बहन आशादा भाई का घना घना राम राम। और अनीता जी आपने भी हमारा घना घना राम राम सा।
1: आशा जी आपने भी घना घना राम राम। और सुनवा वाला सभी किसान बहन है अनीता की घनी घनी राम राम सा।
0: और रामा श्यामा के साथ ही आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में देखो गुरुवार छे, तो गुरुवार के दिन फोन इन कार्यक्रम हुए छे, जी का मायने काश्तकार भाई फोन करे छे, आपकी खेती बाड़ी से संबंधित जो भी समस्या छे, सवाल छे, विशेषज्ञ से सीधा स्वयं बात कर आपकी समस्या को समाधान पा सके छे। और जिया की चार फोन लाइन अपने स्टूडियो की आप के लिए खोल रखा छा, तो वहां का नंबर भी मैं बता दू छू। आपने स्टूडियो की जो लाइन है, पहली लाइन छे 2200600, दूसरो नंबर छे 2200700, तीसरो नंबर छे 2200800, और चौथो नंबर छे 2366477। जयपुर को एसटीडी कोड 0141 आपने जरूर सु लगानी छे, चाहे आप मोबाइल से फोन करो या लैंडलाइन से, ताकि आपको जो फोन छे वो सुविधा पूर्वक आसानी से लाग जावे और आपकी जो भी समस्या सवाल छे सीधा विशेषज्ञ से आप बात कर लो और आपकी समस्या को समाधान पा लो। स्टूडियो में समस्या को समाधान करवा के ताई, आपका सवाल को जवाब देवा के ताई विषय विशेषज्ञ पधार चुका छे। अनीता जी आपको ओरखाण भी करावेगा, पर उससे पहले जी की हमेशा ही आपसे कहवा चाह, आज भी यही कहवा चाहूंगा कि एक तो आप ये बात को ध्यान रखो सर कि जब भी फोन करो तो फोन पर सबसे पहले आपको नाम बताओ, आपका गांव को नाम, आपका क्षेत्र को नाम बताओ और फिर प्रश्न पूछो, और जब तक विशेषज्ञ आपका प्रश्न को जवाब देवे तो फोन लाइन पर बने रहो, ताकि कोई भी बात माने आपकी फसल से संबंधित या आपका सवाल से संबंधित पूछनी हो तो वे आपसे पूछ और संतोषजनक आपने जवाब दे सके। और दूसरों घोषणा को दोहराव ना करें, और यह भी ध्यान रखें कि जब बात करें तो थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर आ जावे, फिर बात करें और लाइन पे बना रहेगा, ताकि आपको जवाब आपने लाइन के द्वारा मिल सके, और फोन में थोड़ा सा रेडियो सेट से आप दूर आ बात करेला तो स्पष्ट सवाल समझ में आवेलो और आपने जवाब भी समझ में आवेलो
1: जी।

0: विशेषज्ञ छे ईश्वरलाल यादव जी, अतिरिक्त निदेशक कृषि सेवानिवृत्त। ईश्वर जी, आपको कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है। राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
2: अरे जब तक अपना भाई लोग फोन करे छे तो एक सवाल मारे मन में आ रहे छे भाई, ई टाइम देखो आपने जी की कपास की फसल छे ना, उनमें भी इनका जो काश्त कर रहे हैं वाले काई सावधानी बरता है कि वे सुरक्षित उत्पादन ले सके।
1: देखिए किसान भाइयों, कपास की फसल है, अभी उसमें टिंडे उंडे बन गए हैं और उनमें थोड़े से जो है ये जो सीजन है बारिश का था और उसमें मच्छर वगैरह एफिड्स वगैरह जो रस चूसने वाले हैं पत्तियों पे वो ज्यादा लगते हैं, तो जब पत्तियों का रस चूसेंगे वो तो उसमें क्या टिंडे की जो है वो जो बॉल है वो भी थोड़ा सा पूरी नहीं बन पाती,

0: पहले काली गाजर बोते थे और आजकल ये हाइब्रिड वाली लाल गाजर चल गई, एक तो ये पूछ रहा था, पहले तो ये बताइए कहाँ मिलेगा ये बीज?
1: देखिए ये हाइब्रिड का जमाना आ गया और जो हमारी ट्रेडिशनल थी, जैसे आप भिंडे जो कांटे वाली थी, वो सबसे मोटी बात तो ये आ गई कि जो उसका प्रोडक्शन है वो इतना कम मिल रहा था तो इकोनॉमी के लिए फिजिबल नहीं थी, लेकिन उसका जो टेस्ट और वो जो था वो है। अब एक्चुअल में ये जो बीज है वो करीब करीब मार्केट से तो आउट हो गया, या तो जो ट्रेडिशनली जो खेती करते आ रहे हैं वो उनके पास मिलेगा, या यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा सा इनका बीजों का, जो भी पुरानी इतनी वैरायटी थी, पांच यूनिवर्सिटी है, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, अजमेर हो, बीकानेर हो, इनमें सबने एक सेल बनाया हुआ है, तो जो पुराने जितने भी बीज थे उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनसे आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको बीज मिल सकता है। और वहां जो किसान इनकी परंपरागत खेती करते आए हैं और जिनको शौक है कि नहीं मैं ये पुरानी वैरायटी ग्रो करूंगा, और जो ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, जो जैविक खेती कर रहे हैं, उन किसानों के पास भी कईयों के पास में है। पहले हमने एक प्रयास किया था आरएसएससी के माध्यम से भी कि इस तरह के सीड प्रोडक्शन लें और वो करें, लेकिन वो ज्यादा डिमांड आई नहीं, इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। तो आप जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे संपर्क करें तो वो आपको सोर्स भी बता देंगे और उनके पास ये जर्म प्लाजिंग मिलेगा तो वहां से आपको ये मिल सकता है।
0: एक दूसरा सवाल और समय रहा कि जैसे अपने जो ऋतु के हिसाब से सब्जी आती है ना, जैसे टिंडा गर्मियों में आता है और करेला आता है, और मतलब ऐसे इन सब्जियों को, कौन कौन से सब्जियों को हमें प्रसंस्करण करके और रख सकते हैं बारह मास, जब कभी भी जरूरत पड़े तो उनको?
1: देखिए सब्जियों को प्रसंस्करण करके ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, जैसे जो फ्रोजन आइटम है ना, जो मटर वगैरह है उनको फ्रोजन है उनको तो कर सकते हैं, बाकी उसको प्रोसेसिंग को, जैसे टमाटर है, अब टमाटर को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, उसके दूसरे शेप है,
0: टमाटर नहीं, जैसे टिंडा है, करेला है, ये ऐसी
1: टिंडा करेला को भी आप ज्यादा समय तक नहीं कर सकते, जो 10-20 दिन का है वो उसमें ही कर सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: बाकी उसको जो थोड़ा सा ये जो फ्रीजिंग में है ना मटर वगैरह, इसका तो थोड़ा सा फ्रीज करके और उसको रख सकते हैं, बाकी फसलों को जो है ये जो आप बता रहे हैं सब्जियां, इनको प्रोसेसिंग करके जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें नहीं रख सकते,
0: धन्यवाद,
1: क्यों खराब हो जाएगी।
2: धन्यवाद साहब, फोन कर बताइए, आपको भी खूब खूब धन्यवाद। काश्तकार भाया फोन इन कार्यक्रम चल रहा है, स्टूडियो की चार लाइन आपके लिए है, 2200600, 2200700, 2200800 और 2366477 है। जी पाप फोन कर सको जो विषय विशेषज्ञ ईश्वर लाल यादव, अतिरिक्त कृषि निदेशक सेवानिवृत्त, आज अपने साथ स्टूडियो में है, आपका सवाल को जवाब दे रहे थे। और अब यादव साहब आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अब आर एकदम से जो मौसम में बदलाव हुए थे उन्हें ध्यान में रखता हुआ हम जो काश्तकार भैया है वे काई काम करे, पर उससे पहले एक श्रोता जुड़ गया, उनसे बात कर रहे हैं। हेलो, राम राम साहब।
0: हेलो
2: जी, राम राम साहब।
3: राम राम साहब
2: जी,
3: मैं तुम्हें यह पूछना चाह रहे हो कि गेहूं की और चना की सबसे ज्यादा पैदावार दे वाली किस्म कौन सी है, वो कौन टाइम में भी जाएगी?
1: देखिए गेहूं जो चना ये जो है इनका टाइम, गेहूं का तो थोड़ा सा अभी 15 अक्टूबर के बाद में स्टार्ट होगा, और आपका चना वगैरह है, चने को अभी ये लास्ट वीक है इससे आप बोल सकते हैं, तो उसमें अच्छी अच्छी वैरायटी है, जैसे चने की लोगे तो जीएनजी 1581 है गंगोर के नाम से है, आरएसजी 888 है, उसमें भी ट्रिपल पोर्ड आते हैं, आरएसजी 291 है, प्रताप है, ये चने की अच्छी वैरायटी है।
3: एक एकड़ में कितना उत्पादन होता है इनका?
1: एक एकड़ के अंदर है वो उसमें करीब 30 से 32 क्विंटल है वो हो जाता है।
2: धन्यवाद साहब, फोन कर बताइए, खूब खूब धन्यवाद। यार साहब जय की पूछ ही रही मैं आपसे, भाई ई टाइम को जो मौसम को बदलाव हुए चाहूंगा मैं आपका काश्तकार भाई का ध्यान रखें।
1: देखिए मौसम का बदलाव जो हुआ है उसमें सबसे मोटी बात तो ध्यान है कि जो हमारी पुरानी खरीफ वाली फसलें हैं उनमें अब जैसे पानी की आएगी, जैसे ग्वार बचा हुआ है, मूंगफली की तो खुदाई की स्टेज आ गई है, कपास है, इनमें जो भी खरीफ प्याज है तो इनके अंदर थोड़ा सा एक तो टाइमली एक लास्ट इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, एक लाइफ सेविंग इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो दाना बनता है वो थोड़ा डफ जो कठोर होता है तो उस वक्त पानी की जरूरत पड़ती है, तो उसको श्रृंखेज नहीं होगा, तो एक तो सबसे मोटी बात है कि उसमें जब जरूरत हो

0: पानी की आवश्यकता हो तो उसमें एक इरिगेशन दे। दूसरा
1: राम राम साहब।
2: राम जी
1: जी,
2: मैं पूछ रहा था सरसों की बिजाई का उचित समय कौन सा है।
0: देखिए सरसों का जो उपयुक्त समय है वो 15 अक्टूबर से लेके वो 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक का सही समय है। इस वक्त आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि यदि टेम्परेचर आपका 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो 35 डिग्री के आसपास, तो जब सरसों का जर्मिनेशन होगा उसमें स्प्राउट निकलेगा तो वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है। तो इसका टेम्परेचर का ध्यान रखें, टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा डाउन आ जाए 30 से नीचे उस वक्त सरसों की बुवाई करें। नहीं तो क्या, आप बुवाई तो करोगे लेकिन टेम्परेचर एकदम राइज हो जाएगा तो सरसों की जो जर्मिनेशन है वो हैम्पर होगा और जो आपको प्लांट पॉपुलेशन है ना जितनी जनसंख्या पौधों की होनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी संख्या, तो दिक्कत होगी।
2: मैं यही कहता हूँ तो अब 37 डिग्री जो है टेम्परेचर, 37 डिग्री है टेम्परेचर।
0: हाँ तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि टेम्परेचर 30 के आसपास आ जाए, उस वक्त उसकी बुवाई करें।
2: अच्छा अच्छा,
1: धन्यवाद सर फोन कर बताइए, खूब खूब धन्यवाद। अनीता जी जी, ईश्वर लाल यादव अतिरिक्त कृषि निदेशक कृषि सेवा निवृत्त अपनी साथ छे, श्रोता समस्याओं को समाधान कर रहे, अगले भी कार्यक्रम में अपने साथ बने रहे वाला पर छोटा सा अंतराल के बाद।
3: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इश्यूज, प्रायोजक है डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड टोंक फाटक गांधीनगर जयपुर।
4: हेलो,
1: खेती बाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है, कौन बोल रहे, नाम बताओ सर आपको।
4: डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं धर्मपाल शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से।
1: जी धर्मपाल जी, क्या पूछना चाह रहे थे आज?
4: मैं डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा था कि मेरे पास एक 15-20 साल पुराना आंवले का पेड़ है
1: जी,
4: तो उसमें आ जाते हैं बहुत से पेड़ों में तो फल आ गया लेकिन अब के इसमें आया नहीं, तो क्या कारण हो सकता है?
0: देखिए आंवले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आंवले में सबसे जब जो भी फलदार पौधे होते हैं उसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि साल में एक बार उसमें निराई गुड़ाई करके और खाद देने की जरूरत होती है। और अब आपने यदि फल तोड़ने के बाद में फरवरी मार्च में यदि उसमें खाद नहीं दिया है तो क्या एक वो 1-2-3-4 साल तक तो कुछ न कुछ देते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी जमीन में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है तो फिर वो फल देना बंद कर देते हैं। तो जो भी है उसमें अप्रैल मई के आसपास जो पतझड़ सा होता है ना, पत्ते गायब से दिखते हैं उस वक्त, तो उनके साथ साथ उसके फूल भी आते हैं, तो जो फरवरी मार्च है उसमें फरवरी मार्च में उनमें खाद दें और उसमें विशेष रूप से गोबर का खाद सड़ा हुआ या वर्मी कंपोस्ट दें और उसके साथ में थोड़ा सा फॉस्फोरस और जो नाइट्रोजन वाला है वो भी दें, क्योंकि उसके साथ जो नए पत्ते आते हैं नई ग्रोथ होती है उसके साथ ही वो फूल भी आते हैं, उस पर दिखता नहीं है ये जाके आपको अगस्त के आसपास मटर के दाने के आकार के दिखने लगते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लगा नहीं लेकिन अब जो अगस्त के बाद में है उसमें वो मटर के दाने से दिखने लग जाते हैं तो वो आंवला खूब लगता है, बस वो थोड़ा सा हमारे को एक मेंटेन करने वाली बात है कि उसमें खाद और थोड़ा सा वो उर्वरक दे।
4: नहीं डॉक्टर साहब अभी दे सकता हूँ खादिया?
0: नहीं नहीं, देखिए अब तो उसमें फ्लोरिंग टाइम जा चुका है, अब तो बड़ी साइज होके आंवले क्लियर हर पत्ती पे डाली पे दिखने लग जाते हैं।
4: बिल्कुल,
0: अब नहीं, अब तो जब उसके हार्वेस्ट हो जाएगा आपका दिसंबर तक जनवरी तक हार्वेस्ट हो जाता है, तो उसके हार्वेस्ट होने के बाद में फरवरी और मार्च में दें उसमें खाद तो ज्यादा बढ़िया होगा।
4: धन्यवाद
1: सर फोन कर बताइए, आपको भी खूब खूब धन्यवाद। यादव साहब, खेता में जहाँ किसान भाई की फसल तैयार खड़ी जाए तो वह किसान भाई अबार कटाई करते टाइम कैसी कैसी बातों को ध्यान रखनी चाहिए जी?
0: देखिए कटाई करते समय सबसे मोटी बात तो है कि जो जो पल्सेज हैं जितने भी हैं दाल वाली फसलें हैं उनको काट के और उनको इकट्ठा कर लें और थोड़ा सा सुखा के और फिर निकालें, क्योंकि आजकल क्या टाइम आ गया कि जैसे काटते हैं और थ्रेसर में गीले को ही निकाल लेते हैं, चाहे बाजरा हो चाहे दाल वाली जितनी भी फसलें हैं वो उनको हाथों हाथ निकाल लेते हैं। अब वो बीज क्या दाना है वो गीला रहता है और उसके बाद में जैसे ही वो गीले को

0: सुखाते नहीं प्रॉपर, स्टोर कर लेते हैं। अभी तो कुछ तो जो किसान थे वो ये बारिश का दौर चल रहा था कि बारिश आ गई तो हाथों हाथ जैसे ही बाजरे की कटाई की और उनको निकाल के थ्रेसर से और अपने मकान में ला के डाल लिया
1: जी।
0: अब उसमें फंगस भी डाल जाती है, कीड़े भी लग जाते हैं और वो जल्दी खराब हो जाता है। तो एक तो जल्दी नहीं करें, थोड़ा सा उनको कवर्ड कर लें। अब वैसे सीजन जा चुका है बारिश का तो अब वो भी दिक्कत नहीं है। तो एक तो उनको ढंग से कटाई करके उनकी पूरी सुखाई सूख जाए, उसके बाद में उसकी थ्रेसिंग करके फिर भी उसमें जो दाना है उसको सुखा के और फिर बाद में स्टोर करें तो ज्यादा उसकी जो एक वायबिलिटी है या ज्यादा समय तक उसको स्टोर कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि हाथों हाथ की जैसे हुआ कि ये खराब हो जाएगा, हाथों हाथ इसको बेचो और उसका जो मार्केट प्राइस है वो पूरा नहीं मिल पाता है।
1: तो यार साहब देखो जी, यहाँ की उत्पादन में सुरक्षित लेबा की साथ साथ ही विपणन व्यवस्था को पूरा ध्यान रखो, साथ ही भंडारण सुरक्षित करवो, यो भी एक टास्क हो जाए काश्तकार भाई के लिए। तो जी कि आप बता ही रहे हो तो थोड़ा सा यह भी बताओ सर कि जो काश्तकार भाई बाद में फसल ना बेच बचावे से कुछ समय के लिए सुरक्षित रखबो चाहे से तो वे कई सावधानियां बरतेगी जिससे सुरक्षित उत्पादन में सुरक्षित रखकर चोखा दामों का बाद में ले सके।
0: देखिए ये किसान भाइयों सब मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है। यदि आपको लगता है कि बाजार भाव अच्छा है तो आप निकालते ही बेच दें तो ज्यादा है, उसका आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही सीजन आता है और एक जो प्रोडक्शन का गल्ट आता है तो उसमें क्या भाव डाउन हो जाते हैं, सारे वो होते हैं कि काफी आ गया तो भाव डाउन कर देते हैं और बाद में बढ़ जाता है। तो उसके लिए ये है कि जो हमारा जो भी ग्रेन है, जो भी फसल है, उसको निकाल के अच्छी तरह सुखा के और जो भी जूट के बोरे हैं या हमारा स्टोर है उसमें उनको प्रॉपर पैकिंग करके और उसमें स्टोर करें। वो ध्यान रखें कि उसमें जो स्टोर करते हैं उसमें पहले से जो स्टोरेज के इंसेक्ट पेस्ट हैं या बोरे वोरे हैं उनको भी थोड़ा सा फ्यूमिगेशन कर लें, धूप में सुखा लिए। नहीं तो क्या होता है कि जैसे पहले आपने कोई खाली किया जिस बोरे में और उसमें वापस डाल दिया तो उसमें जो कीड़े हैं वो उनमें लग जाएंगे, वो कहेंगे तो एक महीने में खराब हो गया। या हमारा जो भी स्टोर में जो कमरा है या स्टोर बना रखा है उसमें हम उसको स्टोरेज करते हैं तो वहां पर भी दिक्कत आती है, तो वो थोड़ा सा सावधानी बरते।
1: राम राम साहब, राम राम साहब, खेती बाड़ी में फोन लागू छे।
2: हाँ खेती बाड़ी में राम राम साहब
1: जी। राम राम साहब कौन बोल रहे छो?
2: पिंकी राम रेगर बोल रहा हूँ, लाडनो से, तहसील लाडनो जिला नागौर
1: जी। बताओ सर कहीं समस्या से?
2: मेरी समस्या ये कि मेरे 15-20 पेड़ है ये पपीते के लगे हुए हैं
1: जी। काय हुआ पपीता
2: ये नीचे की ओर मुड़ रहे हैं इनके पत्ते?
0: देखिए पपीता में एक मेजर प्रॉब्लम है इसमें, यदि शुरू से आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो इसमें वायरस आता है और वायरस में जो आता है पत्तियां मुड़के और बिल्कुल माथाबंदी, जिसको माथाबंदी कहते हैं, माथा बन जाता है और उसकी बाद में ग्रोथ जो है बढ़ावार बिल्कुल चेक हो जाती है। अब ये सबसे मोटी ध्यान देने वाली बात है कि ये होता किससे है, एक जो सफेद मक्खी आती है आपने कभी देखा होगा तो वो उड़ती रहती है और वो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह जाती है, क्योंकि वायरस है वो एक तरह से पड़ा रहता है, वो दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। तो वाहक का काम क्या करता है, सफेद मक्खी काम करती है, जैसे वो पत्तों पे जाती है और उस पर वो छोड़ देती है, अब वो वायरस उसको करके धीरे धीरे उसको पत्तियों को मुड़ने लग जाते हैं उसमें। तो वो जो वायरल है उसको सबसे मोटा है कि जैसे आपको थोड़ा सा प्रकोप दिखे कि पत्ती मुड़ने लगी तो आप जो भी इंसेक्टिसाइड है, चाहे वो साइपरमेथ्रीन है, फेनोग्रेट है, इस तरह की जो भी इंसेक्टिसाइड है उनका 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी का लेके और उस पर स्प्रे कर दें। तो जब स्प्रे कर देंगे तो वो जो सफेद मक्खी आएगी वो मर जाएगी, तो वायरस का ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाएगा, तो वायरस का ट्रांसमिशन चेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा सावधानी कि जब पत्ते सारे खराब हो गए उसके बाद में करें तो इसका इलाज नहीं है, ये पहले से थोड़ा सा सतर्क रहने की, जैसे ही आपको इसके लक्षण दिखे तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दें ताकि उसका निवारण हो सके।
1: यार साहब अपना जो काश्तकार भैंस है जो आवारा टाइम में रबी की फसल लेवला गेहूं जो चना सरसों, तो आपसे जानना चाहे ना कि जो रबी की फसल को चुनाव करे वो बीज के लिए काई ध्यान रखे, कौन सी उन्नत किस्म को चुनाव करे? जी मान लो गेहूं की फसल लेनी चाहे चना की लेनी चाहे तो उन्नत बीज कशा चाहे और किस्म कसी चाहे और कई बातों को विशेष कर ध्यान रखे ताकि शुरुआत में सावचेती बरते तो अंत तक वर्ण फिर कोई नुकसान नहीं उठानी पड़े।
0: देखिए किसान भाई जो रबी का सीजन आ गया और

0: वो आ गया तो सबसे पहले तो एक अपना जो खेत की तैयारी करते हैं वो है उसको एक खेत ढंग से जुताई उताई होके और वो हो जाता है, तो वो से विशेष ध्यान देने वाली बात है कि उसमें तीन चार जुताई ढंग से करके और वो हो जाती है तो वो है। दूसरा उसमें जो बीज का चुनाव है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आधा यदि बीज का सिलेक्शन प्रॉपर हो गया तो हम आधी लड़ाई जीत गए, और यदि बीज ही कम का नहीं है तो कितनी जो खाद दे दो कितना ही वस्तु तैयारी कर लो जब पौधा ही ढंग का नहीं होगा। तो बीज का सिलेक्शन करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि जो उन्नत वैरायटी है उन्नत किस्में हैं वो लें। अब उसमें आप उन्नत किस्म के लिए जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है वहां पे आप कर सकते हैं, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन है उससे ले सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज अपना सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम लेती है वहां से ले सकते हैं। अब जो भी जिस भी डीलर से या जो वेंडर है जो खाद बीज की दुकान है उसमें प्राइवेट संस्था वाले भी खूब आते हैं, और आजकल हाइब्रिड का जमाना काफी आ गया
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो क्लेम भी खूब करते हैं लेकिन उसका पास तो वो देखें कि क्योंकि उसमें जो रिलीज वैरायटी होती है सर्टिफाइड सीड होता है उसकी तो एक गारंटी होती है कि इतना प्रोडक्शन ये देगा इसके लिए एक, लेकिन ये जो प्राइवेट वाले आ रहे हैं वो बहुत अच्छे भी निकलते हैं, नो डाउट F1 जो आता है वो बहुत अच्छा भी आता है, लेकिन कई बार क्या होता है इसके पेरेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता, देख नहीं पाते तो उसमें धोखा भी खा जाते हैं। तो थोड़ा सा उसमें जो प्राइवेट वाला भी लेते हैं तो उसमें देख लें कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि हर साल वो नए नए F1 लाते हैं, रेस चेंज करते रहते हैं ताकि वो उसको एक दूसरे को कोई वो नहीं ले पाए। लेकिन जहां तक है आप जो सर्टिफाइड सीड है उस सर्टिफाइड सीड को लेंगे तो एक आपको अश्योरेंस मिलेगा, तो वो है इसके लिए जितने भी जो जैसे गेहूं के लिए है RAJ 4083 है, RAJ 4120 है, RAJ 4079 है, RAJ 3238 है, तो ये यहाँ राजस्थान की डेवलप की हुई है। ऐसे ही जो के लिए RD 2552 है, RD 2660 है, RD 2715 है, RD 2859 है, चने की है GNG 158 है, RSC 888 है, CSG 6 है, सरसों की है जैसे यहाँ पे NCR से जो भरपूर है सेवर से वहां पे NCR DC 2 है, पूसा जय किसान है, लक्ष्मी है, इस तरह की काफी वैरायटी यहाँ की जो लोकल है वो लोकल वैरायटी, तो क्या दूसरे स्टेट की कई बार लाके बीज वाले दे देते हैं तो यहाँ के हमारे जो क्लाइमेट है उसमें सूट नहीं कर पाती
1: जी। हेलो
2: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्कार, खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहा है, नाम बताओ आपको।
2: मैं जावेद गांव बाड़िया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुतामन सर्ज कर रहा हूँ
1: जी। जावेद जी कहीं पूछ पूछा रहे आज
2: आजकल क्या है कि खेजड़ी है वो खेजड़ी के लते ज्यादा लग रही है, खेजड़ियाँ सूख रही है,
1: थोड़ा सा रेडी सेट से दूर आ जाओ साहब।
2: हाँ खेजड़ी है ना तो खेजड़ी सूख रही है अंदर है, यानी बड़ी बड़ी लते निकलती हैं, यानी करीब लगभग दो दो इंच लंबी और यानी अपने पैर के अंगूठे की जितनी मोटी।
0: देखिए
2: इसका कोई उपचार हो आपके ध्यान में तो बताओ सर।
0: देखिए खेजड़ी में और कईयों में आजकल ये जो फली छेदक बहुत आता है उसका छेदक है वो कैटरपिलर होता है और बड़ा सा कीड़ा होता है, अब वो छेद करके उसको जो खाद्य सामग्री ऊपर जाने वाली है उसको चेक कर लेता है। अब उसका है कि जैसे ही आपको कीड़ा उड़ा दिखे तो जो आप वहां पे देखेंगे पेड़ के अंदर या टहनी के अंदर उसमें एक होल सा होगा, छेद होगा, उस छेद में आप केरोसिन डाल सकते हैं, एक नोवाक्रोन आती है एक दवा वो डाल के और उसको बंद कर दें, चाहे मिट्टी से बंद करें चाहे किसी से भी करें, तो उसका जो फ्यूमिगेशन वो निकलेगी गैस, उस गैस से मर जाएगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आजकल बरसात कम हो रही है और खेजड़ी में पानी की कमी से वो भी सूख रही है, लेकिन यदि लट है तो लट के लिए आप यही करें कि जो उसको जो भी जितने छेद हैं टहनियों में उनको आइडेंटिफाई करें और उनमें केरोसिन डालें या एक नियोक्रॉन है वो डालें और उसमें बंद कर दें उसको।
1: राम राम साह, राम राम साह, खेती बाड़ी में फोन लागो छे, कौन कोई जुड़ रहा छे, बोलो सर। यादव साहब थोड़ा सा अभी यह जानना चाहना भाई, जो किसान भाई चना की फसल

0: बचाव छे तो उनकी बुआई को उपयुक्त समय काई छे और काई किसान भाई उन्हें सावधान रखे।
1: देखिए चने की फसल है, चने की फसल को 15 सितंबर से लेके और 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर ले सबसे उपयुक्त समय और इस वक्त सही समय है। इसके लिए बहुत ज्यादा यदि आप वो करें कि कल्चर प्रैक्टिसेज है जुताई उताई की, यदि आप खेत खाली हो गए हैं और एक दो जुताई करके भी डाल देते हैं तो चना अच्छा हो जाता है। अब सबसे मोटी जो चने की बात है उस चने में वो होता है कि एक तो बीज का उपचार प्रॉपर करें
0: जी।
1: अब बीज का उपचार भी एक कंसेप्ट है FIR का
0: जी।
1: उसमें पहले फंजीसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से और फिर कल्चर से करें। यदि हम कल्चर से उसको ट्रीट कर लेते हैं तो हमारी पैदावार को 10 से 20 पर 15% तो वो कल्चर ही है और नाइट्रोजन की भी बचत हो जाती है। तो यदि ये लेते हैं तो एक बेटर वे में हम उसको वो कर पाते हैं। तो एक पहले जो भी बीज है उसको फंजीसाइड से, फिर एक इंसेक्टिसाइड से और फिर वो करके, और फिर जो कल्चर का पैकेट आता है उस कल्चर के पैकेट से उसको ट्रीट करके और सुखा के उसको बुआई करेंगे तो हमारे को ज्यादा पैदावार मिलेगी
0: जी। यार साहब समय अपने पास कमी छे, अब चलता चलता आपसे यही जानना चाहूंगा कि अब बरसात तो देखो एक तरह से चली गई छे, आने वाले समय के लिए जो काश्तकार भाई फसल ले वाला वहां के पास अगर सिंचाई का संसाधन सीमित छे तो वे काई योजना बना रहे आपकी जो फसल छे वाने बुआई जुताई करे।
1: देखिए सबसे मोटी बात आती है कि आपके पास पानी का क्या सोर्स है, लगातार आप पानी दे सकते हैं या आपके पास एक या दो पानी का ही सोर्स है, हो सकता है कोई फार्म पोंड है, फार्म पोंड में तो आपके पास कितनी कैपेसिटी का है, डिग्गी है डिग्गी में कितना पानी है या ट्यूबवेल का आप रेगुलर पानी दे सकते हैं, कितनी सिंचाई दे सकते हैं उसके अनुसार है। तो यदि आपको लगता है कि पानी हमारे पास सफिशियंट है
0: जी
1: तो आप गेहूं जो इन पे जा सकते हैं, और यदि आपके पास पानी की कमी है तो तारामीरा है, सरसों है, चना है, इन पे जाएं। क्योंकि सरसों है, सरसों में 2 से 3 पानी में हो जाती है
0: जी।
1: अब चना गेहूं है, गेहूं में 7 से 8 सिंचाई चाहिए, यदि थोड़ा कम पानी है तो आप जो पे जा सकते हैं। चना है, चने पे भी 2-3 पानी से हो जाता है सिंचाई से। तो ये सिलेक्शन करते हुए हमेशा यही ध्यान रखें कि हमारे पास पानी का कितना है, तो उससे बेटर हम उसकी प्लानिंग करें क्योंकि आपके पास क्लियर है कि हमारा ट्यूबवेल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो यहाँ फार्म पोंड में कितना पानी है।
0: अनीता जी जी, ईश्वरलाल यादव अतिरिक्त निदेशक कृषि सेवा निवृत्त आज अपने साथ कार्यक्रम में बने रही है, काश्तकार भाई की समस्याओं को तो बेहतर तरीके से समाधान करे इतना ही आपको खूब खूब धन्यवाद। और अब स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि आज को जी को कार्यक्रम जो खेती बाड़ियों को टाइम पूरा होते जा रहे तो श्रोताओं दिराव आगे आशा ने और अनीता ने चालार करा राम राम सा।

ग्रामीण भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। इसका प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूं कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
1: 9414066730।
0: जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए,
1: 9414

0: चार शून्य छ छ सात तीन शून्य।
1: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।

0: श्रोताओं, भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों में विवाह संस्कार का विशेष महत्व है। वैदिक काल में यह संस्कार पवित्र भावनाओं का परिचालक था, परंतु इस काल में अनेक बुराइयां एवं कुप्रथाएं समाविष्ट हो गई हैं। इन्हीं विकृतियों के फलस्वरूप हमारे देश में बाल विवाह का प्रचलन हुआ, जो कि हमारे समाज एवं सांस्कृतिक जीवन के लिए घोर अभिशाप है। बाल विवाह यानी कि कम उम्र में बच्चों की शादी कर देना। बाल विवाह करने से उनके स्वास्थ्य और मानसिक विकास के साथ साथ खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है। कम उम्र में शादी करने से पूरे समाज में पिछड़ापन आ जाता है। इसलिए हमारे देश के कानून में लड़के और लड़कियों की शादी के लिए एक निश्चित उम्र तय कर दी गई है। बाल विवाह की बुराइयों को देखकर समय समय पर समाज सुधारकों ने जन जागरण के उपाय किए और उसके साथ साथ भारत सरकार ने इस संबंध में कठोर कानून बनाए हैं और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम तथा लड़कों की उम्र 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करना कानूनी निषेध कर रखा है। फिर भी बाल विवाह निरंतर हो ही रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार अब विवाह का पंजीकरण कराना कानूनी अनिवार्य हो गया है। बाल विवाह प्रथा अधिनियम शारदा एक्ट 1929 में 1 अप्रैल 1930 को बाल विवाह प्रथा को पहली बार समाप्त किया गया था, जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी। लेकिन संशोधन 1978 एक्ट में लड़की की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 की गई। इतने कड़े और सख्त नियम निकालने के बावजूद भी आज भी समाज में आंखों में पट्टी बांधकर इस काम को धड़ल्ले से किया जाता है, जिसके कारण हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए बहुत बड़ा अभिप्राय है। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
1: रिया बेटी, जरा दाल में छौंक लगा दे, तब तक मैं आटा गूंद देती हूँ। तेरे पापा आते ही होंगे, ठीक है माँ?
2: रिया
1: आई पापा।
2: शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश।
1: अच्छा जी, मुझे कोई शाबाशी नहीं, मैं भी तो रसोई में काम कर रही हूँ।
2: अरे नहीं रिया की माँ, मैं तो इसे शाबाशी किसी और काम के लिए दे रहा हूँ।
1: किसी और काम के लिए?
2: हाँ ये लो।
1: इतने सारे पैसे?
2: हाँ रिया की माँ, पूरे 1500 रुपए हैं और ये सब अपनी रिया की वजह से हैं।
1: मैं समझी नहीं।
2: अरे भाई, इस हफ्ते का पूरा हिसाब किताब रिया ने ही तैयार किया था और लाला जी भी हैरान थे, कह रहे थे अरे रिया के पापा, तुम्हारी बेटी बड़ी समझदार है।
1: पापा, और ये गुड़िया?
2: गुड़िया ये तुम्हारे लिए, और ये कमीज सोनू के लिए। अरे भाई, सोनू कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है।
1: सोनू सो गया है। चलिए आप हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आ गया बेटा, देखो ना दादी, मेरी गुड़िया बिल्कुल दुल्हन लग रही है।
3: हाँ हाँ देखी है, तू भी अपनी शादी में बिल्कुल ऐसी ही लगेगी, एक दो साल में एक अच्छा लड़का ढूंढ के।
2: अरे माँ, मुझे जेल नहीं जाना है।
3: अरे जेल जाए तुम्हारे दुश्मन, ऐसा क्यों बोल रहा है?
2: माँ, 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी करना कानूनी अपराध माना जाता है।
1: हाँ माँ, और 21 साल से पहले लड़के की शादी करना भी गैर कानूनी है।
3: अरे हमारे जमाने में तो लड़की की शादी 10-12 साल की उम्र में कर देते थे और 14-15 साल की उम्र में तो उसकी गोद भर जाती थी।
1: माँ, ऐसी छोटी सी उम्र में तो लड़की खुद बच्ची होती है, वो भला क्या बच्चा पैदा करेगी। 18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ ना शरीर से शादी के लायक होती हैं और ना ही समझ से।
3: कह तो तू भी ठीक रही है बहू। अच्छा भाई, मैं तो चली सोने।
1: ठीक है माँ।
2: अरे मजा आ गया, आज खाना बहुत स्वाद बना है।
1: पापा।
2: हाँ बेटा।
1: पापा, क्या यह सच है कि लड़की की शादी 18 साल से पहले करने पर

0: उसके माता पिता को जेल हो सकती है?
1: हाँ बेटा, सच है। और हारिया की माँ, आज मुझे भोला भी मिला था।
0: अच्छा, वो भोला जिससे कुछ सालों पहले जेल हुई थी?
1: अरे, उसे किसी झूठे आरोप में पकड़वा दिया था।
0: तो क्या कह रहा था भोला?
1: अपनी बेटी सीमा की शादी का न्योता दे रहा था और कह रहा था कि पास ही के गांव का कोई लड़का है 20 साल का।
0: पापा, इसका मतलब भोला चाचा को फिर से जेल जाना पड़ेगा?
1: क्यों?
0: अभी अभी तो आपने दादी से कहा था कि 18 साल से पहले शादी की तो, लेकिन सीमा दीदी तो अभी 15 साल की भी नहीं हुई। तुम्हें ये सब कैसे पता रिया? क्या सीमा तुम्हारे स्कूल में पढ़ती है क्या?
2: नहीं माँ, सीमा दीदी तो आज तक स्कूल ही नहीं गई।
1: हैं?
2: रामू की बहन और सीमा दीदी का जन्म एक ही दिन हुआ था। रामू ने ही पूरी क्लास को यह बात बताई थी कि अगले महीने वो 15 साल की ही होगी, तो उस हिसाब से सीमा दीदी भी अगले महीने 15 साल की पूरी होगी। तो अभी उसकी उम्र 15 साल से कम हुई ना?
1: हाँ, इसका मतलब भोला मुश्किल में पड़ सकता है। चलो भाई, मैं तो चला सोने।
0: बेटा रिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगी।
2: हाँ माँ, मैं तैयार हो गई।
0: अरे पिंकी, आज स्कूल में कितना मजा आया था ना?
2: अरे सीमा दीदी, आप?
3: अरे रिया, स्कूल से आ रही हूँ।
2: हाँ दीदी,
3: स्कूल में मजा आता होगा ना? कितना कुछ सीखने को मिलता होगा।
2: हाँ दीदी। दीदी, एक बात पूछो।
3: हाँ हाँ रिया, पूछो।
2: दीदी, आप भोला चाचा जी से कितना प्यार करती हैं?
3: तुमने ऐसा क्यों पूछा रिया?
2: दीदी, अगर भोला चाचा फिर से जेल चले गए तो?
3: रिया, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो?
2: मैं सच कह रही हूँ दीदी, मुझे कल मेरे पापा ने सब बताया है कि लड़की की शादी 18 और लड़के की शादी 21 से पहले करने पर उसके माता पिता को जेल जाना पड़ सकता है।
3: ओहो, ऐसा भी होता है क्या?
2: हाँ दीदी, मैंने स्कूल में अपनी मैम से भी पूछा, उन्होंने भी यही कहा। सच में दीदी?
1: अरे भाई, सीमा तो चुपचाप अपने घर की तरफ चली गई और रिया भी उसके पीछे पीछे चली गई।
4: अरे आ गई बेटा सीमा।
3: बाबा, मैं ये शादी नहीं करूँगी।
5: क्या, शादी नहीं करेगी?
3: हाँ माँ। बाबा, मैं नहीं चाहती कि आपको फिर से जेल जाना पड़े।
4: जेल? ये क्या कह रही है तुम?
2: चाचा, सीमा दीदी ठीक कह रही है।
5: रिया, ये क्या कह रही हो तुम?
2: हाँ चाची, मेरे स्कूल में मैम ने बताया कि लड़की की शादी 18 और लड़के की शादी 21 साल से पहले करने पर उनके माता पिता को जेल जाना पड़ सकता है।
4: भोला, ओ भोला।
6: हे भगवान, ये तो रामलाल जी की आवाज है।
4: अरे भोला, कहाँ हो? अरे समधी जी, आप सब ठीक तो है?
7: अरे भाई, ठीक तो तब होगा ना जब तू हमें 50,000 रुपए देगा।
4: 50,000? लेकिन बात तो 20,000 की हुई थी।
7: हाँ हाँ, बात तो 20,000 की हुई थी, लेकिन हमें 50,000 रुपए चाहिए, साथ में गहने और गाड़ी भी चाहिए।
0: अरे सीमा दीदी, ये तो दहेज मांग रहे हैं।
7: अरे भाई, ये किसकी लड़की है? बड़ी बदतमीज है।
4: अरे बदतमीज नहीं, रिया बिटिया तो सही कह रही है।
7: अजी, कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हो आप?
4: एकदम सही बात कर रहा हूँ रामलाल जी। जाओ, मुझे भी करनी है अपनी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे लालची आदमी के बेटे के साथ।
7: अच्छा, ठहर जाओ, मैं अभी पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट लिखाता हूँ और शादी तोड़ता हूँ।
4: अरे जाओ, लिखवा दो रिपोर्ट, तुम्हें भी जेल में डाल देगी पुलिस। 21 साल से पहले लड़के की शादी करना भी कानूनी अपराध है, समझे?
7: अरे अरे, तुम्हें ये बातें कैसे पता? ना तो तू पढ़ा लिखा है, ना तेरी सीमा पढ़ी लिखी है, फिर भी तुझे कैसे पता?
4: मेरी सीमा नहीं लिखी पढ़ी, लेकिन रिया तो पढ़ी लिखी है। बोलो रामलाल, अब क्या करना है? बुलाऊं पुलिस?
7: ना बाबा ना।
4: भाग गया लालची। रिया बेटी, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी है।
5: अरे, अब तो हम अपनी सीमा बिटिया की शादी उसके 18 साल पूरे होने के बाद ही करेंगे।
8: बिल्कुल सही कहा आपने, भोला भैया और कांता दीदी, जरा सीमा की तरफ से देखिए, अभी तो उसका बचपन भी नहीं गया और अभी इसका शरीर और इसका मन दोनों शादी के लिए तैयार नहीं है।
4: जी मैडम जी, और ऐसा करना कानूनी जुर्म भी है।
8: हाँ ठीक कहा आपने, और अब तो स्कूल जाना और पढ़ना लिखना हर बच्चे का अधिकार भी है।
3: हमें माफ कर दीजिए मैडम जी।
5: धन्यवाद मैडम जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी।
8: धन्यवाद मेरा नहीं, कांता बहन रिया का की।

0: कीजिए। उसी ने मुझे बताया कि सीमा इतनी परेशान क्यों थी।
1: बहुत समझदार है अपनी रिया। भाई वाह, मान गए अपनी रिया को।
0: किसी ने खूब ही कहा है, लाड प्यार से पली हूँ मैं तो, नन्ही सी एक कली हूँ मैं तो। मुझे डाल से अभी न तोड़ो, मुझे डाल से अभी न तोड़ो, मेरा रिश्ता अभी न जोड़ो।

तो श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आज के नाटक के द्वारा हमारे समाज में होने वाली बाल विवाह कुप्रथा के कारण आज हमारे आंतरिक जीवन की आंखों को खोल दिया है और इस नाटक के माध्यम से हमने सीखा है कि किस प्रकार से रिया के सूझबूझ और शिक्षित होने से उसने सिर्फ अपने पड़ोसी सीमा को ही जागरूक नहीं बल्कि उसके माता पिता के आंखों में पड़े हुए पर्दे को हटा दिया और सीमा का बाल विवाह होने से बचाया। और श्रोताओं, इतना ही नहीं बल्कि साथ ही दहेज के लोभियों को भी सबक सिखाया। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि बाल विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों के क्षति नहीं बल्कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम 2006 को 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया। इस बाल विवाह को करना या करवाना संशय और गैर जमानती अपराध है। जो माता पिता अपने पुत्र या पुत्रियों का बाल विवाह कराते हैं तो उन्हें 2 वर्ष का कारावास व 1,00,000 रुपए दंड देने का प्रावधान है। इसलिए आइए और अपने समाज में होने वाली कुप्रथाओं का घोर विरोध करके उन्हें जागरूक करें और अपने समाज को अच्छा समाज बनाएं। और इस विषय में आपके क्या विचार हैं हमें अवश्य बताएं।

0: श्रोताओं, आपको हमारा ये नाटक कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 9414066730। जी हाँ श्रोता, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए
1: 9414066730।
0: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता, कार्यक्रम हमारी देरियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी देरियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

सबसे पहले हमने एक गीत लिया है आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज में, शादी से पहले इस फिल्म का। गौहर कानपुरी के गीत सपना, सपन जगमोहन का संगीत।

आशा भोसले मोहम्मद रफी के युगल सुर में अभी आपने सुना फिल्म शादी से पहले। इस फिल्म का एक गीत गौहर कानपुरी की गीत थी, सपन जगमोहन का संगीत। श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके रेडियो दोस्त शंकर पारिक के साथ। बने रहिए आकाशवाणी के जयपुर अजमेर चैनल से।

फिल्म दिल ने पुकारा के मुकेश की आवाज में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से किया गया। कुछ ही पलों में 8:30 पर दिल्ली केंद्र से होगा स्पोर्ट्स के, तत्पश्चात 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ 8 और साथ ही 9:15 पर उर्दू में समाचार।

0: नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं प्रशांत कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विशेष शुक्ला।
1: नमस्कार प्रशांत, और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर ताजा खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल, वो भी सब कुछ अधिक विस्तार के साथ।
0: तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का ये अंक। सबसे पहले हेडलाइंस। एशियाई खेलों के वुशु में रोशिबीना देवी ने देश को दिलाया रजत पदक।
1: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में जीता कांस्य पदक।
0: सतनाम सलमान की जोड़ी ने डबल स्कल्स में जीता कांस्य पदक, बलराज सिंह गर्ल्स में चौथे स्थान पर।
1: निशानेबाजी में परिनाज अनंतजीत ने स्कीट मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: और भारतीय महिला और पुरुष कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन चल ही रहा है खिलाड़ियों का रोशिबीना देवी से, जिन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया है। जापान एशियन गेम्स में आज रोशिबीना देवी ने वुशु में भारत को रजत पदक दिलाया। रोशिबीना ने महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में ये पदक जीता। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक रिपोर्ट।
1: रोशिबीना ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया था। फाइनल में उन्हें चीन की झांग शिया ओयू से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। झांग ने दोनों राउंड में जीत दर्ज करते हुए 10-0 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। रोशिबीना का एशियन गेम्स में यह तीसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने 17 साल की आयु में 2018 जकार्ता पालिम्बांग गेम्स में कांस्य और हांगझोऊ एशियन गेम्स 2023 में रजत पदक जीता था। रोशिबीना ने पदक जीतने के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स में मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल्ड लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
1: 25 वर्षीय मणिपुर की एथलीट ने पहले क्वार्टर फाइनल में मकाओ की चू मान सिंह को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया था। वुशु की सांडा श्रेणी में सेमीफाइनलिस्ट का कांस्य पदक सुनिश्चित हो जाता है। रोशिबीना 2022 में अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहती थी। उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंगत्यास को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन आखिर में स्वर्ण पदक के मुकाबले में चीन की झांग शिया ओयू से हार गई। रोशिबीना का इरादा इस बार अपने पदक का रंग बदलना था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं रही। हालांकि लगातार दूसरे एशियन गेम्स में रजत पदक जीतना उनकी क्षमता को दर्शाता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स के।
0: विशेष रोशिबीना का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। कल भी उन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी। उम्मीद की जा रही थी कि वो स्वर्ण पदक देश के लिए लाएंगे, लेकिन ये प्रदर्शन भी दर्शाता है उनके दृढ़ संकल्प को। और विशेष लगातार अच्छा प्रदर्शन है, आज भी भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक देश के नाम किए। क्या स्थिति है भारत की
3: प्रशांत? अभी भारत पदक तालिका में 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ 15वें स्थान पर मौजूद है।
0: जी विशेष, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
3: उधर भारतीय एथलीट सीमा कुमारी ने भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया है। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करते हुए भारत का 16 साल का इंतजार खत्म किया है।
4: सीमा एशियन गेम्स में 10,000 मीटर दौड़ में मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला एथलीट बन गई। इससे पहले साल 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि उसी इवेंट में कविता राउत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। सीमा शुरुआती 2000 मीटर में सबसे आगे रही, लेकिन अंत तक आते आते वे तीसरे स्थान पर आ गई और भारत के लिए कांस्य पदक पक्का किया। बहरीन की विनफ्रेड यावी ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं जापान की नोजोमी तनाका ने रजत पदक अपने नाम किया। सीमा ने हांगकांग में 2024 एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में सीनियर महिला रेस में और 2026 में 63वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़

0: 2026 में 63वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैंप।
1: विशेष एथलेटिक्स में ही एक अच्छी खबर आ रही है। एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। आज का ये दूसरा रजत पदक है और विशेष हम जानना चाहेंगे किन खिलाड़ियों ने ये पदक देश को दिलाया है।
2: प्रशांत, किरण, मनु, जय कुमार, पुवामा, विशाल और विथिया की टीम ने भारत को पदक दिलाकर देश का मान और गौरव दोनों बढ़ाया है।
1: बेहतरीन प्रदर्शन रहा है खिलाड़ी का। श्रोताओं, आपको बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह भी उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, कल वो खेलते नजर आएंगे।
2: वहीं भारतीय रोवर सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों की डबल्स स्कल्स में कांस्य पदक जीत लिया है, जबकि बलराज पवार पुरुषों की सिंगल्स स्कल्स के फाइनल में पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
0: सतनाम और सलमान ने 6 मिनट और 13.25 सेकंड के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। चीन के जुडी ई और ईदे नी ने स्वर्ण, जबकि उज्बेकिस्तान के पावेल सोरीन और मेखरोज बेक ममाद कुलोव ने रजत पदक अपने नाम किया। यह एशियन गेम्स में सतनाम का दूसरा मेडल है। 2023 में हांगझोउ एशियन गेम्स में पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स क्रू का हिस्सा रहते हुए उन्होंने कांस्य पदक जीता था। इससे पहले बलराज पवार पुरुषों के सिंगल स्कल्स फाइनल में चौथे स्थान पर रहे और पदक जीतने का मौका चूक गए। चीन के झिवेई डैंग ने स्वर्ण, उज्बेकिस्तान के खोलमूर जाएव ने रजत और जापान के तात्सुया सकुरामा ने कांस्य पदक जीता। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैंप।
1: और अब बात निशानेबाजी पर। भारतीय निशानेबाजी टीम ने भारत को एक और मेडल दिलाया है। परिनाज धालीवाल और अनंत जीत सिंह की जोड़ी ने स्कीट मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। हालांकि भारत की इस जोड़ी से गोल्ड मेडल की उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन उन्हें ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। उन्होंने फाइनल में 44 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। चीन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि साउथ कोरिया ने सिल्वर मेडल जीता। अनंत और परिनाज का ये इस एशियन गेम्स का दूसरा मेडल है।
2: और प्रशांत, इससे पहले अनंत ने पुरुष स्की टीम और परिनाज ने महिला टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का 15वां मेडल है। अनंत और परिनाज ने 138 का स्कोर करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। स्कीट स्पर्धा में भारत ने यह कुल तीसरा पदक जीता है। इससे पहले भारत की पुरुष स्कीट टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। भवतेक सिंह गिल, अनंजिंग सिंह नारुका और महराज अहमद खान की तिकड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में 346 का स्कोर बनाकर ब्रॉन्ज जीता था। हालांकि 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद मानी जा रही मनु भाकर फाइनल में 5वें स्थान पर रही थी और मेडल लाने से चूक गई थी। इस स्पर्धा के टीम फाइनल में ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि इंदर सिंह की भारतीय तिकड़ी के लिए भी निराशाजनक अंत हुआ था।
1: जी बिल्कुल, मनु भाकर से सबकी उम्मीदें थी। हालांकि जो भी प्रतियोगिता में मनु भाकर होती है वो पदक जरूर भारत के नाम करती, लेकिन इस प्रतियोगिता में भारत को पदक दिलाने में असफल रही। और अब बात कबड्डी पर। एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जापान पर 50-25 से शानदार जीत दर्ज की। इसी के साथ भारत ने ग्रुप ए के तीनों मुकाबलों को अपने नाम कर लिया है। गत विजेता भारत पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर चुकी है। भारत का मुकाबला कल नेपाल से होगा। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश पर 42-21 की जीत के साथ की थी, जिसके बाद ईरान को 37-23 से हराया था। वहीं आज भारत ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए हाफ टाइम तक 32-13 की बढ़त बना ली थी और दूसरे हाफ में भारत ने 18 जबकि और बांग्लादेश ने 12 पॉइंट जोड़े।
2: दूसरी ओर भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में चीनी ताइपे को 37-21 से हराकर अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा। चीनी ताइपे के खिलाफ भारत ने 3 बोनस पॉइंट्स और 6 ऑलआउट पॉइंट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदियों ने 9 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल दर्ज किए। भारतीय पुरुष टीम ने कल बांग्लादेश को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली थी। इस नतीजे से टीम का मेडल भी सुनिश्चित हो गया था। भारतीय पुरुष टीम कल अपना सेमीफाइनल मैच थाईलैंड से खेलेगी।
1: और अब बात कर लेते हैं मुक्केबाजी पर। एशियाई खेलों में भारतीय मुक्केबाज परवीन ने राउंड ऑफ 16 में तजाकिस्तान की मलिका नुजीमोवा से वॉकओवर मिलने के बाद

0: महिलाओं के 65 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। परवीन अब मेडल सुनिश्चित करने से बस एक कदम दूर है। वहीं अलग अलग स्पर्धाओं में कई भारतीय मुक्केबाजों ने स्पर्धा किया, लेकिन आज की क्या तस्वीर रही विशेष?
1: प्रशांत, अगर आज की बात करें तो साक्षी चौधरी को महिलाओं के 51 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए क्वार्टर फाइनल में परवीन का मुकाबला उज्बेकिस्तान की मौजूदा वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट नवाबखोर खमीदोवा से होगा।
0: और अब बात स्क्वाश पर भी कर लेते हैं। एशियाई खेलों में आज स्क्वाश में भारत का दिन शानदार रहा, जिसमें 6 खिलाड़ी सिंगल्स और मिक्स डबल्स मुकाबलों में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रहे। आइए जानते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
2: महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और तन्वी खन्ना ने अंतिम आठ में अपनी जगह पक्की की। ये दोनों खिलाड़ी अब क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगी। वर्ल्ड कप विजेता और तीसरी वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने सिंगापुर की ओ योंग वायलिन को सिर्फ 19 मिनट तक चले मुकाबले में 3-0 से हराया। इस युवा खिलाड़ी ने शुरू से ही मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा और अपनी प्रतिद्वंदी को जमने का मौका नहीं दिया। वहीं तन्वी को सिंगापुर की ओ योंग वायलिन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पहला गेम 5-11 से हारने के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की और अगले तीन गेम 11-4, 11-5, 13-11 से जीतकर 3-1 से जीत हासिल की। वहीं भारत के दो खिलाड़ियों ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बना ली है। अभय सिंह ने श्रीलंका के रविंदु लग्जरी के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए 25 मिनट में 3-0 से जीत दर्ज की। उन्होंने ये मुकाबला 11-5, 11-6, 11-0 से जीता और अब उनका सामना जापान के यूनो सुगुए से होगा। दूसरी ओर वीर चोटरानी ने मलेशिया के संजय जीवा को 1 घंटे 9 मिनट तक चले मुकाबले में 11-9, 8-11, 11-6, 15-17, 11-6 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। मिक्स्ड डबल्स ड्रॉ में अनुभवी जोड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार ने अपने ही देश के सूरज चंद और शमीना रियाज को 2-0 से हराया। एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय जोड़ी कल क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पेलिनो और जैमिका अरिबाडो का सामना करेगी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैंप।
1: स्क्वाश में शानदार प्रदर्शन रहा प्रशांत, जहां सभी 4 भारतीय सिंगल्स खिलाड़ियों और मिक्स डबल जोड़ी के अंतिम 8 में पहुंचने के साथ भारत ने आईची नागोया में अपने स्क्वैश अभियान की मजबूत शुरुआत की है।
0: बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा और कल भी या आने वाले दिनों में उम्मीद होगी कि स्क्वाश खिलाड़ी जो है भारत को कई पदक दिलाएं। और अब बात हॉकी पर भी कर लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आज एक तरफा मुकाबले में साउथ कोरिया को 8-2 से शिकस्त दी। ये भारत की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है। टीम ने टूर्नामेंट का आगाज इंडोनेशिया के खिलाफ 13-1 की धमाकेदार जीत के साथ किया है। इसके बाद दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए श्रीलंका को 16-1 से रौंदा था। साउथ कोरिया के खिलाफ भारतीय टीम ने मैच का अपना पहला गोल 4वें मिनट में दागा। सिलानंद लाकरा ने भारत के लिए पहला गोल किया। भारतीय टीम का मुकाबला 26 सितम्बर को जापान से होगा।
1: और अब चलते चलते बात करते हैं क्रिकेट की प्रशांत, जहां एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष टीम अपना अभियान 28 सितंबर को शुरू करेगी। वो क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम पहले ही अपनी जगह बना चुकी है रैंकिंग के आधार पर। कैसे देखते हैं भारतीय टीम, कैसा प्रदर्शन रहेगा और किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी?
0: देखिए विशेष, जो टीम का कॉम्बिनेशन है बहुत ही सशक्त है। इसी टीम ने T20 वर्ल्ड कप भी भारत को दिलाया। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो टीम में संजू सैमसन है, ईशान किशन जैसे बल्लेबाज हैं जो कि नंबर 3 पे आते हैं, अभिषेक शर्मा है, उसके अलावा वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी हैं, कप्तान श्रेयस अय्यर का भी लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी हैं, शिवम दुबे। तो लगातार जो बैटिंग स्ट्रेंथ है टीम का, मिडिल ऑर्डर, वो भी बहुत ही सशक्त नजर आ रहा है विशेष।
1: जी बिल्कुल प्रशांत, और गेंदबाजी में भी भारतीय टीम ने इस बार जो टीम चुनी है वो बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन रहा है। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती की जगह विप्रज निगम को टीम में शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी जो है भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे, और भारतीय टीम पहले से ही गोल्ड मेडल जीत चुकी है एशियन गेम्स में, तो ये अनुभव जो फाइनल खेलने का रहेगा ये भी उनके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। महिला टीम ने अपने मेडल को अभी जो है डिफेंड किया,
0: और विशेष इस पे ये भी कह सकते हैं कि बैक टू बैक चैंपियंस रही है। भारत वर्ल्ड कप जीता है लगातार और स्वर्ण पदक जीता है और डिफेंडिंग चैंपियन भी है एशियन गेम्स में, तो यही उम्मीद की जाए कि इस वर्ष भी भारत को पुरुष टीम भी पदक दिलाए, वो भी स्वर्ण पदक।
1: बिल्कुल प्रशांत।
0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात।

0: बात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.ear@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशू में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
3: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ 70 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों

0: जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
1: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
2: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना, और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
0: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए आईबोर्ड प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
5: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
3: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
6: The character of war,
7: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
6: With the changing character of war,
3: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार

0: किसान समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे एसआईआर आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस की टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
3: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
0: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
4: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशविना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
5: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
4: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स

0: दौड़ और वुशु में रोशि मीना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपके लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए जमीन आसमान फिल्म से। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: जहरीला इंसान। अब सुनिए इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: अभी आपने लता मंगेशकर का गाया अनामिका फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे बजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आरटी बर्मन।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ।

जब सुने किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया शर्मीली फिल्म का गीत, नीरज के लिखे इस गीत की धुन बनाई है एस डी बर्मन ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने भी फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैं उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1949 में हुआ है, आज के शहर बेंगलुरु में। उनका परिवार अफगानिस्तान के गजनी शहर से आके हिंदुस्तान में बसा हुआ है। ये परिवार पठान वंश से ताल्लुक रखता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में हुई और वो जब मुंबई घूमने आए तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से काफी मुतासर हुए और उन्हें भाग्यवश फिल्म दीदी में सेकंड लीड रोल करने का मौका मिला। फिरोज खान ने शुरुआत में कई छोटी मोटी फिल्मों में कर

किरदार किए। एक अंग्रेजी फिल्म टार्जन कम्स टू इंडिया, इसमें भी उन्होंने काम किया था, जिसमें उनकी नायिका थी सिमी ग्रेवाल। 1965 में उन्हें फणी मजूमदार साहब ने ऊंचे लोग इस फिल्म में हीरो का रोल दिया। इस फिल्म में दादा मुनी और जानी राजकुमार थे। इनके होते हुए भी फिरोज खान ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। ये फिल्म

दोस्तों, इस फिल्म के हिट होने के बाद भी फिरोज खान ने छोटे बजट की फिल्मों में काम करना जारी रखा। सैमसन, चार दरवेश, एक सपेरा एक लुटेरा ऐसी ही कुछ फिल्में थीं।

1965 में रामानंद सागर की सागर आर्ट के बैनर तले फिल्म आई आरजू। इसमें भी फिरोज खान ने सेकंड लीड रोल किया था और इस फिल्म ने भी सफलता के झंडे गाड़े और फिर एक बार फिरोज खान ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया था। 1969 में बीआर फिल्म्स का बड़ा शाहकार पर्दे पर आया आदमी और इंसान। सायरा बानो, धर्मेंद्र, मुमताज और फिरोज खान की इसमें मुख्य भूमिकाएं थी।

0: आदमी और इंसान फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए फिरोज खान को अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। फिरोज खान ने अपना फिल्मी करियर 1960 से शुरू किया फिल्म दीदी के साथ। 1975 तक कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, नाम किया। मैं शादी करने चला ये फिल्म आई थी 1962 में। इसी साल यानी 1962 में आई थी रिपोर्टर राजू।
1: रात झूमती, रात झूमती।

1966 में आई थी फिल्म मैं वही हूँ। इस फिल्म का जो रफी साहब का गाया हुआ गाना है, जो फिरोज खान पर फिल्माया गया है, बड़ा ही हसीन बन पड़ा है।

फिल्म सफर का निर्माण किया था मुशीर रियाज ने। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। फिरोज खान ने भी इस फिल्म में शेखर का बड़ा ही अहम रोल किया था। उन पर फिल्म आ गया ये गाना भी आज तक सुनने वालों की पसंद में शामिल है। उनके साथ पर्दे पर थी शर्मिला टैगोर। गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और आवाज मुकेश की।

सन 1971 में आई थी फिल्म उपासना। संजय खान अर्थात अब्बास अली खान जो कि उनके भाई हैं और मुमताज की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी। इस फिल्म का मुकेश का गाया उन्हीं पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक उतना

0: दोस्तों, फिल्मी दुनिया का एक अलिखित नियम है, जिस रोल में शुरुआती फिल्म में आप नजर आते हैं वैसे ही रोल आपको मिलते चले जाते हैं। फिरोज खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर फिरोज खान ने अपने को लीड रोल में लाने के लिए कड़ी मशक्कत मेहनत की और एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाई। सफर, शंकर शंभू, प्यासी शाम, गीता मेरा नाम और खूटे सिक्के जैसी छोटी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के रंग भरे और अपनी किस्मत का सिक्का चमकाया। इस दौरान अपने छोटे भाई संजय खान के साथ भी उन्होंने तीन फिल्में की, उपासना, मेला और नागिन। 1972 में फिरोज खान ने अपना एक बैनर बनवाया, FK इंटरनेशनल। इसी के बैनर तले फिल्म बनाई अपराध। अपनी मन मर्जी से इस फिल्म की कहानी, लोकेशन का चुनाव उन्होंने किया और बड़ी ही उम्दा फिल्म बनाई जिसके गाने आज भी हिट।
1: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने।

दोस्ती और वफा देखी न दोनों एक जगह, हाँ देखी न दोनों एक जगह।

0: पागल चालाक मगर
1: औरत का दिल जाने नहीं आप हमें पहचाने नहीं
0: छोड़ो छोड़ो हम भी सयाने हैं हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने।
2: इस दौरान वो और बैनरों में भी नजर आए। रविकांत नगाइश द्वारा निर्देशित फिल्म काला सोना में भी उन्होंने बड़ा ही उम्दा रोल निभाया है। 1975 में फिरोज खान ने एक जबरदस्त शाहकार दिया धर्मात्मा। ये पहली ऐसी फिल्म है जो अफगानिस्तान में शूट हुई। इस शानदार फिल्म ने उन्हें बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अदाकार जबरदस्त सफलता दिलाई।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के स्टाइलिश अभिनेता फिरोज खान पर। आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ झूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: ऐसी बेमिसाल
1: कहानी एफ एम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 10 बजने को ही हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स।
2: The motto for the Indian contingent at the 2026 Asian Games has been dedication, determination and discipline. And today we saw all these qualities on display in Aichi Nagoya. Hello and welcome to our special daily Asian Games recap show on Akashwani. My name is Abhinav Punchi. Let's jump straight into the headlines. The Indian athletes have added 5 medals.

0: to the Asian Games tally on Thursday to take the overall total to 17 medals. The Indian team bagged silver in the 4x400m mixed relay with an outstanding performance from the athletes. Before that silver, a superb 10,000m run from Seema Kumari ensured a bronze for India after 16 years in this event. The day started with rowers Satnam Singh and Salman Khan claiming a bronze medal in the men's double sculls event. A.S. Naruka and Parinas Dhaliwal added a skeet shooting bronze medal in the afternoon, while Roshabina Devi claimed a silver in Wushu after losing the final to Zhang Xiao of China in the women's 60kg Sanda event. Let's now take a detailed look at athletics, where India got two medals today. Prerna Sharma has more.
1: Bharatiya athletes dikhane lage rang, ek ke baad ek medal, aur ab athletics mein gold ka intezar. Indian athletics ka medal account ab khul chuka hai, aur track and field se lagatar achhi khabre samne aa rahi hain. Silver aur bronze dono medal Bharat ki jholi mein aa chuke hain. Ab intezar hai us sunhere pal ka, jab podium par gold ke saath Bharatiya tiranga sabse upar lehraye. Shuruaat karte hain mixed 4x400 मीटर रिले से, जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. पूर्वमा राजू, विशाल थेनारसु, विद्या रामराज और मनु टीएस के क्वार्टरेट ने 3:14.46 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया. इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में, जहां विद्या रामराज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया. बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने हांगझाओ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा. अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला. महिलाओं की 10,000m रेस में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. उन्होंने 32:50.05 का समय दर्ज किया. यह एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है. साथ ही महिलाओं की 10,000m में यह 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है. 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था. 16 साल बाद इस इवेंट में एक बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है. अब रुख करते हैं मेंस 100m की ओर, जहां भारत के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 सेकंड्स का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया. उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे. तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया. वहीं हीट 4 में गुरविंदर सिंह ने 10.38 सेकंड्स का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. यानी अब मेंस 100m में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंटर्स पर टिकी हैं. अब बात करेंगे ट्रिपल जंप की, जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए पूरा जोर लगाया. अपने सिक्स और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59m की जंप लगाई और फोर्थ पोजीशन पर कंपटीशन खत्म किया. यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया. इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका वशिष्ठ ने हिस्सा लिया और वो 10th पोजीशन पर रहीं. अब रुख करते हैं हेप्टाथलॉन का, जहां भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं. आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की. अनामिका ने 100m बाधा दौड़ 14.80 सेकंड में पूरी कर 868 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.74m की कूद लगाकर 903 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.15m के थ्रो के साथ 605 पॉइंट्स और 200m दौड़ 25.96 सेकंड में पूरी कर 801 पॉइंट्स हासिल किए. इन चारों इवेंट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3,177 पॉइंट्स बना, जिसके बाद वे 7वें स्थान पर रहीं. वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100m बाधा दौड़ 14.61 सेकंड में पूरी कर 894 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.71m की छलांग लगाकर 867 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.44m थ्रो के साथ 624 पॉइंट्स और 200m दौड़ 26.27 सेकंड में पूरी कर 774 पॉइंट्स हासिल किए. पूजा का कुल जोड़ 3,159 पॉइंट्स रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं. लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है. कल दूसरे दिन बाकी 3 आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800m दौड़. इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश तय होगा. भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी. तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है. सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं.

0: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
1: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का 8वां पदक दिलाया। ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता। वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का 8वां मेडल है। इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 580 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
0: It was a good day for Indian rowing, where history was made. Here's more. Indian double sculls rowers Satnam Singh and Salman Khan won the bronze medal at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 on Thursday. In the first 1000 meter, India was seen trying to catch up to Uzbekistan and China in the lead. With 500 meters to go in the race, the pair momentarily went past the Uzbeks, but it was not to be. Satnam and Salman could eventually register a finish time of 6:13 and 25 seconds. China won gold and Uzbekistan ended up with silver. Earlier, Balraj Pawar missed out on a bronze medal in the men's singles sculls final. In the 2000 meter race, Balraj held on to second place with 500 meters to go before being overtaken. Balraj finished fourth with a timing of 6:54 and 80 seconds. Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh and Jaakar Khan finished fifth in the men's quadruple sculls final, while Ujjwal Kumar Singh and Rohit finished fourth in the lightweight men's double sculls final. And despite striving hard, there was disappointment for Gurbani Kaur, Alina Anto, Tendeliti Habujam and Poonam finished last in the women's four final. There was an outstanding performance from the Wushu Arena today, and Sakshi Manwal has more.
2: Wushu icon Rushabana Devi added another historic chapter to her Asian Games journey, taking home the silver medal in the women's Sanda 60kg category after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. Rushabana gave it her all in the summit clash, but the Chinese contender edged ahead to claim the gold. With this effort, Rushabana Devi has become a three-time Asian Games medalist, adding to her 2018 bronze and 2022 silver, and continues her reign as India's most decorated wushu athlete on the continental stage.
0: India had their first test in hockey today when they faced South Korea. Let's find out what happened. India completed its third consecutive win in the group stages of the Asian Games 2026 men's hockey tournament with an 8-2 win over South Korea. Dilpreet Singh and Abhishek completed a brace each as India extended its lead atop the Group A standings. Sukhjeet Singh, Harmanpreet Singh, Rajinder Singh and Shilanan Lakra were the other scorers for Craig Fulton's side. Kim Jao and Kim Yong-Buk found the back of the net for the South Koreans. Our boxers were in action at Aichi Nagoya. Shabab Anwar has more.
1: मुक्केबाजी में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा और कुछ हद तक दिल तोड़ने वाला भी। साक्षी चौधरी मुक्केबाजी की महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हारकर बाहर हो गई हैं। उन्हें कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ बाली कोबोकुवा ने 3-2 से हरा दिया। साक्षी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आयरा वेलेगोस को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उधर एक और महिला भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला खेले बगैर जीत गई। कजाकिस्तान की मलिका नाजिमोवा ने उन्हें वॉकओवर दे दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की नबखोर खामिदोवा से होगा। मुक्केबाजी के पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में आज दिल तोड़ने वाला एक ऐसा पल भी देखने को मिला, जब भारत का एक मुक्केबाज सुमित कुंडू को जीत के करीब होने के बावजूद मुकाबला छोड़ना पड़ा। सुमित मुकाबले में पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे, तभी उनके घुटने में चोट लग गई। इसके बाद वो रिंग पर गिर पड़े। सुमित के लिए आगे खेलना संभव नहीं था और चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा। और इराक के अली कासिम को वॉकओवर के द्वारा अगले दौर यानी कि क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई।
0: They were successful for India in squash as well. Sakshi Manwal tells us why.
2: In men's single round of 16, Abhay Singh defeated Ravindu Luxury of Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-6, thereby sealing the match in his name in clean games, making it 3-0 to secure a victory for himself. Veer Chautrani faced a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiwa. The final score of the match was 3-2 in favour of India's Veer Chautrani, the scoreline being

0: 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. Anahat Singh began her women's singles campaign with a convincing 3-0 win over Singapore's Au Yuang Wai Yin. She took the game 11-4, 11-5, 11-7 in her favour to advance to the quarterfinals. Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Au Yuang Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. The Indian held her nerves in a tense fourth game to book her place in the quarterfinals. Tanvi Khanna will now face Anahat Singh in the quarterfinals. Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. The final scoreline stood like 11-7, 11-10. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favour.
1: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
2: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है. चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी चार मुकाबले जीतकर ग्रुप स्टेज का समापन किया. यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ दो मुकाबले और हैं. अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा. दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की. आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया. इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा.
1: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
0: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Godpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shrija Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdine Buttbook and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shen. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
1: It was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna Sharma has the details.
2: महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग स्पर्धा में भारत की सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता ने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया. दोनों खिलाड़ियों ने पूल स्टेज से नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मिली हार के साथ इस स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया. भारत की पहली ओलंपिक फेंसर सीए भवानी देवी ने पूल 4 में 5 मुकाबले खेले. 2 जीत के साथ वह पूल 4 में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची. इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई. राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं. राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की. इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ. दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल 2 में तीसरा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया. पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते, जबकि 2 में उन्हें हार मिली. तीसरे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा. राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हायंग से हुआ. पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.
1: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
0: India's Benedictine Veniston finished 5th in the Heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4 into 100-meter freestyle relay heats, Benedictine Veniston, Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their six-team race. They recorded a time of 3 minutes, 23.51 seconds, leaving them 12th overall.

0: overall out of 13 teams.
1: It was a tough day for India in canoe. Sakshi Manwal has more.
0: India faced a disappointing day in canoe sprint with all four entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500 meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. India's men kayak four finished 7th in the 500 meter finals with the quartet of Niyocha Singh, Lighton Jim, Varinder Singh, Oinam Arun Singh and Harshvardhan Singh Shaktawat clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500 meter game, Sonia Devi and Parvati Geeta failed to make the final after finishing last in their semi final in 2 minutes 1.020 seconds. Megha Pradeep also missed out in the women's canoe single 200 meter final after finishing 4th in her 5 boat semi final in 51.093 seconds. Megha finished 1.666 seconds behind the winner.
1: Let's now hear from the latest from what happened in the esports arena with Prerna Sharma.
2: Esports एक ऐसा खेल जो मैदान पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है भारत के लिए esports से अच्छी खबर आई है भारत के डेब्यूटेंट परितोष ने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है अब परितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे उन्होंने esports में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है
1: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medals tally.
2: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है जहां एथलेटिक्स वुशू शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 गोल्ड 30 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीतकर पहले स्थान पर है जापान 20 गोल्ड 34 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल 91 मेडल लेकर दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया 10 गोल्ड 12 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 50 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर है वहीं भारत 1 गोल्ड 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 14 मेडल के साथ 15वें स्थान पर बना हुआ है
1: सो अ गुड डे फॉर इंडिया टुडे बट दे विल बी होपिंग फॉर अ लॉट मोर ऑन सितंबर 25th फ्राइडे India's host will be on shooting when the men's 50-meter rifle 3 positions individual and team final with APS Tomar, Rudraksh Patil and Neeraj Kumar holding India's hopes. Kamaljeet and Suruchi Inder Singh will also be representing India in the shooting 10-meter air pistol and hoping to make it to the final. It's a crucial day for Kabaddi. It's semi-finals time for both men's and women's as India faces Nepal in the women's Kabaddi and India then face Thailand in the men's Kabaddi semi-final. 2 medals came for India in athletics today. Will the athletes tomorrow do well. Well, Manpreet Kaur and Krishna Jaimenon are in action in the women's short put final. While the women's pole vault final sees Sindhushree Ganeshan and Baranika Elangaval in action. We had success in the women's 10,000 meter. Well, Gulveer Singh do well for India in the men's 10,000 meter final tomorrow. And then Meet Singh and Praveen Kumar are in action in the men's hammer throw final. Apart from the gold medal events, India are also in action in hockey where the women's team takes on Japan. Sachin and Preeti are in action in boxing while Animesh and Gurvinder will try to make it to the finals in the 100 meter athletics. India will also be seen in the action in surfing, fencing, badminton, canoe, swimming and esports. So here's hoping for a great day from the Indian contingent. So that's all from the special Asian Games report on Akashwani. From producer Shehnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinapunchi, we bid you farewell and hoping that India have a glorious Friday and do well in the Asian Games. Thank you for listening.
3: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया
4: ये आकाशवाणी बांसवा का माही चैनल है एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10:20 हुए हैं आप सुनेंगे फिल्म संगीत का आगाज हम कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म है समाधि बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं संगीत राहुल देव बर्मन का

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने एक गीत सुना, अगला गीत भी आप लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में सुनेंगे। शैलेंद्र के बोल है संगीत शंकर जय किशन का, फिल्म है मैं नशे में हूं।

अभी आपने जानी दुश्मन फिल्म से एक गीत सुना, मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाज थी। आनंद बख्शी के बोल थे, वर्मा मलिक के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म है जब जब फूल खिले।

0: जानवर फिल्म से ये गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।
1: मेरी मोहब्बत जवान।

असली नकली फिल्मों से भी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म है अवतार।

संगीतकार लगीताव मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज में सुनेंगे हम आया सावन झूम के फिल्म से

सावन झुमके फिल्म से अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज में। ये इसके साथ फिल्म संगीत का सफर यही थमता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत

0: भारत की निर्माता भी हैं और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि यह सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत के रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें पीएएफआई वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी एमडीआर कोई उपकर या अधिभार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि एमडीआर का एक भी रुपया सरकार के पास नहीं जाता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम परिनाश धालीवाल, अनंतजीत सिंह नरुका और सीमा को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.3 MHz पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यही समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन 5:53 पर फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।